102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 58 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा

0: कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जब सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केबल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहां या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत।
4: ये है विविध भारती,
5: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। विश्व को महान बनाने का एकमात्र मार्ग है अपने चरित्र को महान बनाना। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे लंका कांड आज भाग 320। संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं आज भाग 8 प्रसारित होगा। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुबह 7 बजे 7:30 पर सुनिएगा हम है राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा। आलेख एवं स्वर राजेश झा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और इस कार्यक्रम को आप पुनः सुन पाएंगे दोपहर 2 बजे।

सुबह 8:30 पर नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का। पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की बातचीत। प्रस्तुति शकुंतला पंडित। सुबह 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। 12 बजे हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम और 1 बजे सुरीला सफर। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली दिन में 3 बजे आप सुनते हैं और आज सखी सहेली में आप सुनेंगे इन विषयों पर बातचीत। विलुप्त होती लोरियां, पारंपरिक गीत, शब्द हमारा, विचार आपके, आशा, साड़ियों का संसार, बाघ प्रिंट साड़ी जो कि मध्य प्रदेश की प्रचलित है, और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर बातचीत। व्यंजन लोकी के व्यंजनों के बारे में चर्चा की जाएगी। संवादक सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में संगीतकार, संगीत संयोजक अप्पा वड़ावकर से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। संपादन सहयोग काजल भदरगे का है, प्रस्तुति जुबेर खान की। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम। 6 बजे हिंदी में समाचार और समाचारों के बाद 6:05 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने जारी रहेगा। शाम 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा आज राग अनुराग, और 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका जमीन के लोग, लेखन वीएम आनंद और निर्देशन दीनानाथ का है। कार्यक्रम चित्रलोक 8:15 पर। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए, और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री तनुजा पर। आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा। आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये था आज के कार्यक्रमों का झरोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का आज का अंक 320।

लंका में भीषण युद्ध छिड़ा है। वानर सेना ने रावण की प्रायः आधी सेना का संहार कर दिया है। रात्रि का आगमन होने पर दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में जय पराजय तथा रणनीतियों की समीक्षा करते हैं। आधा सैन्य बल खोकर रावण चिंतित है। मंत्रणा के समय माल्यवंत रावण को फिर सीख देता है कि वेद पुराणों ने जिन प्रभु का गुण गाया है उनसे विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सका। माल्यवंत उसे स्मरण दिलाता है कि जब से वो सीता को हर लाया है तब से ही भांति भांति के अपशकुन हो रहे हैं, किंतु रावण को अपने वृद्ध नाना की ये सीख नहीं सुहाती। अपमानित कर वो माल्यवंत को सभा से निकाल देता है। रावण पुत्र मेघनाद ने पिता को अपनी दृढ़ता से उत्साहित किया। कल प्रातः देखना मैं क्या करता हूं, अभी से क्या कहूं। इस प्रकार पिता पुत्र में मंत्रणा होते रात बीत गई। सवेरा हुआ, वानर सेना ने एक बार फिर दुर्गम गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंड तथा अन्य अस्त्र बरसाने लगे। घोर गर्जन तर्जन और वज्र जैसे अस्त्रों से प्रलय मच गई। वानर सेना प्रहार से घायल होती है किंतु मैदान नहीं छोड़ती। मेघनाद ने जब वानर और रीछ सेना द्वारा दुर्ग के घेर लिए जाने का समाचार सुना तो युद्ध घोष करता, डंका बजाता, किले से उतरकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ।

ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस संबंध में सौदाहरण जानकारी पर आधारित श्रृंखला इन दिनों संगीत सरिता में प्रसारित की जा रही है। प्रस्तुत करता है जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज।

संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। अब राग यमन कल्याण में अपनी ही बनाई बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं। यह बंदिश परमात्म परक है, जिसमें गायकी के अहम अंगों का प्रयोग हुआ है, बल, पेंच, छूट, जरब, गमक की तानों के साथ अवरोही की गमक की तानों का इसमें आप अंदाज देखिए। तो सुनिए राग यमन में बंदिश।

राग यमन कल्याण की बंदिश के बाद मैं राग मालकौंस की विलंबित ख्याल की बंदिश जो उस्ताद अमीर खान साहब ने जुत ख्याल करके गाई है, यह बंदिश बहुत मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ही मधुर और श्रवणीय है। इसमें भी उन सभी अंगों का प्रयोग हुआ है जैसे गमक तान, अवरोही की तान, मेरुखंड, मेरुखंड की सरगम और गमक के साथ कड़क तान। तो सुनिए मालकौंस की बंदिश जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

0: प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता में सुन रहे थे। हारमोनियम पर संगति पुरुषोत्तम वालावलकर की और तबले पर साथ ओमकार गुलवाड़ी का था। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सभी श्रोताओं को जय श्री महाकाल। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल वंदन।

भक्तिमय महाकाल नगरी की भक्तिमय सुबह के बीच आइए इस भक्ति भाव से भरे भजन के साथ भोर का स्वागत करते हैं।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 सुनिए उज्जैन दर्शन। 10:30 पर महिला सभा कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

ग्यारह बजे आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम, यादों की महफिल आप सुनेंगे 12:05 पर, कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन पाएंगे 1:00, फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2:00, 2:30 पर सदाबहार नगमे सुने जा सकेंगे।

3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम सुना जा सकेगा। शाम 4 बजे सुनिए आज के मेहमान। आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में सुनिए शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का अपनी पसंद का प्रोग्राम

अपने केंद्र से आपको चौपाल पर ले चलेंगे शाम 7:21 पर। कार्यक्रम होगा माटीरी बात, जिसमें मालवी समाचारों के साथ आनंद लीजिए मालवी गीतों का। रात 8 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। 8:35 पर फिल्म संगीत सुना जा सकेगा।

रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम चर्चा का विषय है। 10 बजे सुनिएगा एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल। 10:20 पर सुनिएगा आपकी फरमाइश के नगमे। 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकेगा। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए, सिनेमा को बताया विविधता का सेतु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किए भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में कल आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। पुरस्कारों में अभिनेत्री यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। वहीं अभिनेता कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अपनी कलात्मक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।

0: वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा को उनकी पहली निर्देशित फिल्म वीर सावरकर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर और सशस्त्र क्रांति की कहानी को पर्दे पर लाना उनके लिए विशेष महत्व रखता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मेरा पहला अवार्ड है और मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे मिला है, तो मुझे बेहद खुशी है, न सिर्फ मेरे लिए बाकी बल्कि मेरी पूरी टीम, प्रोड्यूसर्स और सब। तो इस मूवी के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता था कि सशस्त्र क्रांति भी एक हमारे देश की आज़ादी के संग्राम के लिए बहुत बड़ी चीज थी, सावरकर जी उस संग्राम के इन्फ्लुएंसर थे।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश आधुनिक तकनीकी और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने ये बात कल बेंगलुरु में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित इन्वेस्टर्स राउंड टेबल बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में ग्वालियर TMZ के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले दिल्ली और मुंबई में आयोजित बैठकों में करीब 5,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।
2: दिल्ली और मुंबई के बाद हमने अपने राउंड टेबल के माध्यम से बेंगलुरु में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारत सरकार के मंत्री और हमने मिलकर ज्वाइंट एक प्रोजेक्ट खड़ा किया था, जिसमें टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन पूरा ग्वालियर के अंदर हम बनाने वाले हैं, जिसमें बीते दो राउंड में हमने लगभग 5,000 करोड़ का निवेश पाया था। यहाँ सफलता के साथ लगभग 1,200 करोड़ के से ज्यादा के निवेशकों के प्रस्ताव हमको मिले हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता कि जितनी लैंड हमारे पास है, करीब करीब पूरी लैंड हमारी उसमें समाहित हो जाती है।
0: इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। श्री सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि जोन में टेलीकॉम क्षेत्र के 7 प्रमुख वर्टिकल्स को एकीकृत किया जाएगा। बैठक में निवेशकों ने प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 25 से अधिक टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आयुष विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में होगा। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र की उन्नति से जुड़ी विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर विभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप भी मौजूद रहेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि विस्तार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नीमच की जावद नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197 करोड़ रुपये से अधिक तथा राजगढ़ की सुठालिया और पार्वती रिंसी परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसरों के निर्माण और संचालन के लिए 962,50,00,000 रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 27 सितंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री स्टार्टअप संवाद में प्रदेश के युवा स्टार्टअप संचालकों से रूबरू होंगे। RCVP नरहुना अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले इस संवाद में प्रदेश के करीब 200 स्टार्टअप संचालक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमियों के नवाचार, अनुभव, चुनौतियों और नए आइडिया पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज भोपाल में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत एवं ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के मिंटो हॉल में आयोजित इस समारोह में मानसरोवर डेंटल कॉलेज, मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर पद्मश्री अनूप जलोटा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रजत पाटीदार को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहेंगे। सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही जनसेवा यात्रा आज प्रदेश के आगरमालवा जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा ग्राम बरगड़ी से जिले में प्रवेश कर सुबह 11 बजे बड़ौत पहुंचेगी, जहां स्वच्छता कार्यक्रम और पौधरोपण होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे यात्रा जिला मुख्यालय आगरमालवा पहुंचेगी। वहीं सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिसके तहत डिंडोरी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरगहना में पौधरोपण के साथ रंगोली, चित्रकला और सुपोषण जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। वहीं धार के ITI में सेवा संकल्प अभियान के तहत करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जबकि बैतूल के प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्र बोरगांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए लाइव सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर सेवा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग के अनुसार यह सुविधा संवाद की बाधाओं को दूर करने में सहायक होगी। इसके माध्यम से वीडियो इंटरप्रेटर से जुड़ा जा सकता है। इसके लिए www.signable.live वेबसाइट पर सेवा उपलब्ध है। विभाग ने नागरिकों से इस सुविधा की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रदेश सरकार को अनुमति दी है। बीते कल मंगलवार को रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों और सीलिंग से जुड़े मामले की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवासीय उपयोग की जमीन पर नियमों के विपरीत चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग और आवश्यक होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने सील की गई दुकानों के दोबारा खुलने की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए अपने निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। सरकार को अंतिम प्रकाशन से पहले मास्टर प्लान की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला 6 अक्टूबर से शुरू होगी। पहला मुकाबला लखनऊ, वहीं तीसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत की टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। इंदौर में होने वाले मुकाबले के लिए सामान्य टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 25 सितंबर सुबह 6 बजे से शुरू होगी। होलकर स्टेडियम में यह 5वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल पुलिस ने ट्रैफिक एसीपी के घर चोरी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 लाख का माल बरामद किया है। पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत भोपाल में 18वें शक्ति कैफे का कल शुभारंभ किया। खंडवा के नीलकंठेश्वर कॉलेज में NSS कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं सूरजकंड स्कूल में महिला पुलिस ने छात्राओं को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। उज्जैन में डोल 11 के अवसर पर बैरवा समाज ने 35 झांकियों के साथ भव्य डोल फूल चल समारोह निकाला। वहीं श्योपुर और मंडला के मंदिरों से भी गाजे बाजे के साथ देव विमान निकालकर भगवान को जल विहार कराया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आगरमालवा और छिंदवाड़ा में आयुष विभाग द्वारा आज स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ से 150 चयनित तीर्थयात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत द्वारका सोमनाथ की यात्रा के लिए कल रवाना हुए। इंदौर के नंदानगर ITI में 29 सितंबर को एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी जिले ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की अगस्त 2026 की मासिक रैंकिंग के ग्रुप बी में दूसरा स्थान हासिल किया है और अलीराजपुर कलेक्टर ने रबी सीजन की समीक्षा बैठक में खाद बीज के अग्रिम भंडारण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। सिनेमा को बताया विविधता का सेतु। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और मैं गोपाल गर्वित लेकर आया हूँ सुबह की ताजगी, शहर की महक और कुछ ऐसी बातें जो आपको इस उज्ज्वल प्रभात से और भी गहराई से जोड़ देंगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षिप्रा की लहरों पर सुनहरी रेखा खींचती है, उज्जैन जाग उठता है। घंटों की मधुर ध्वनि के साथ, बाबा महाकाल की भस्म आरती की ऊर्जा के साथ और इस शहर की उन अनगिनत कहानियों के साथ जो हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं आप सभी का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

श्रोताओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी और समीक्षा पर जोर दे रहा है। उज्जैन में जिला स्तरीय मातृ एवं शिशु मृत्यु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गर्भवती महिलाओं को 100% ANC पंजीयन कराने और प्रसव पूर्व चारों जांचें समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनकी निरंतर निगरानी और उचित प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। ताजपुर, नागदा, खाचरोद और घटिया विकासखंड में हुई मातृ मृत्यु की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि जिले में मातृ या शिशु मृत्यु होने पर 24 घंटे के भीतर वरिष्ठ स्तर पर रिपोर्ट की जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर माह 9 और 25 तारीख को आयोजित शिविरों में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात जांच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु ही स्वस्थ समाज की मजबूत नींव है। इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं आज के सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का पहला गीत।

0: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
1: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
2: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
1: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
2: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
1: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
1: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
2: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
1: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
2: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
1: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
2: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
1: थोड़ी सी सावधानी
2: दूर करे सभी परेशानी।
0: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे बम बम बम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम।
3: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन से अब प्रस्तुत है आज के स्थानीय समाचार। मुख्य समाचार। सिंहस्थ क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई जाएगी। आज शरद संपात के कारण दिन और रात की अवधि रहेगी लगभग 12 घंटे। डोल 11 पर भादो माह में काल भैरव की भव्य सवारी निकली। महाकाल मंदिर में 800 सुरक्षा कर्मियों की भीड़ और कतार प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिंहस्थ निर्माण कार्यों से जुड़े इंजीनियर्स को निर्माण सुरक्षा का प्रशिक्षण दे रहे आईआईटी मुंबई के विशेषज्ञ। श्रीनगर में होने वाली फेडरेशन कप साइकिल पोलो स्पर्धा के लिए मध्य प्रदेश की पुरुष और महिला टीम घोषित। 205 दिव्यांग श्रद्धालुओं का दल 8 दिवसीय निःशुल्क तीर्थ यात्रा के बाद 24 सितंबर को उज्जैन लौटेगा। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए किसानों का पंजीयन 10 अक्टूबर तक। अब समाचार विस्तार से। सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी अधोसंरचना विकास के तहत 600 करोड़ रुपए की लागत से करीब 50 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 3 पैकेज में काम शुरू कर दिया है। सड़कों की चौड़ाई 24 मीटर रहेगी और निर्माण कार्य जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल कई क्षेत्रों में फसल खड़ी होने के कारण पूरे क्षेत्र में एक साथ काम शुरू नहीं हो सका है। बंसल कंस्ट्रक्शन और पीडी अग्रवाल कंपनियों ने करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में ग्रेडिंग और लेवलिंग का काम शुरू कर दिया है। यूडीए ने करीब 9 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित करते हुए 20 किसानों से जमीन की रजिस्ट्री भी कराई है। शेष जमीन लेने की प्रक्रिया जारी है। सिंहस्थ क्षेत्र में सड़क, सीवरेज और पेयजल जैसी सुविधाओं पर करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। यूडीए द्वारा सड़कों के निर्माण पर करीब 550 से 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खगोलीय घटनाक्रम के चलते आज 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि करीब 12-12 घंटे रहेगी। जीवाजी वेधशाला में इस घटना को देखा जा सकेगा। वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। इस घटना को शरद संपात कहा जाता है। सूर्य के विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण दिन और रात की अवधि लगभग बराबर रहती है। इसके साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे छोटे और रातें बड़ी होने लगेंगी। ये क्रम 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। वेधशाला में इस खगोलीय

घटना को शंकु यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से देखा जा सकेगा। महाकाल के सेनापति काल भैरव ने भादो माह की डोल 11 पर मंगलवार को पालकी में सवार होकर भैरवगढ़ क्षेत्र में नगर भ्रमण किया। वर्ष में काल भैरव की दो सवारियां निकलती है, पहली भादो माह में डोल 11 पर और दूसरी मार्गशीर्ष माह में भैरवष्टमी पर। शाम 4 बजे मंदिर के गर्भगृह में पूजन अर्चन के बाद काल भैरव के स्वरूप को चांदी की पालकी में विराजित किया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पूजन किया। सवारी केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंची, जहां जेल प्रशासन और बंदियों ने विशेष पूजन आरती की। इसके बाद सवारी भैरवगढ़ के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिद्धवट घाट पहुंची, जहां रजत मुखारविंद का अभिषेक, पूजन और आरती की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 800 कर्मचारियों को भीड़ प्रबंधन, कतार प्रबंधन और श्रद्धालुओं से सकारात्मक संवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। अवंतिका यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रशिक्षण में सुरक्षा कर्मियों को सॉफ्ट स्किल, संयमित और सहयोगात्मक व्यवहार तथा दर्शन व्यवस्था की जानकारी सहजता से देने के तरीके बताए जा रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 100 सुरक्षा कर्मियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 8 दिनों में 800 सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। श्रीनगर में 26 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाली 20वीं पुरुष और 16वीं महिला साइकिल पोलो फेडरेशन कप स्पर्धा के लिए मध्य प्रदेश की पुरुष और महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। पुरुष टीम के कप्तान भीम सिंह खराड़ी होंगे, कोच राजीव उपाध्याय और मैनेजर MS परस्ते होंगे। महिला टीम की कप्तानी निकिता शर्मा करेंगी। समर्थ सेवा संस्था की ओर से 8 दिवसीय निशुल्क तीर्थ यात्रा पर 205 दिव्यांग श्रद्धालु और सहयोगी हरिद्वार पहुंचे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बाबा रामदेव से मुलाकात भी हुई। उन्होंने श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष की माला भेंट कर आशीर्वाद दिया। दल ने बद्री विशाल धाम के दर्शन किए तथा हरिद्वार और ऋषिकेश का भ्रमण भी किया। संस्था अध्यक्ष श्याम माहेश्वरी के नेतृत्व में रवाना हुआ दल उज्जैनी एक्सप्रेस से 24 सितंबर को उज्जैन लौटेगा। महाकाल परिसर में नागर ब्राह्मण समाज की ओर से 3 दिवसीय संगीतमय भागवत त्रिवेणी कथा का आयोजन किया जा रहा है। जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विश्व शंकर मेहता के कथा से पहले महाभारत की व्याख्या करते हुए कहा कि महाभारत केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन शैली को समझने का माध्यम है। आखिरी खबर किसानों के लिए। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। किसान इन फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। आइए अब सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम के अगले गीत की ओर चलते हैं।

श्रोताओं, स्वास्थ्य केवल बीमारी से दूर रहने का नाम नहीं बल्कि शरीर, मन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। इसी सोच के साथ आज भारत सहित अनेक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद में संतुलन को विशेष महत्व दिया गया है और इस वर्ष के अभियान में भी अभिव्यक्ति स्वास्थ्य के साथ समग्र कल्याण और स्वस्थ भविष्य पर जोर दिया जा रहा है। अभियान के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद में साक्ष्य आधारित अनुसंधान एवं नवाचार तथा सामुदायिक कल्याण और टिकाऊ जीवन के लिए आयुर्वेद, उचित आहार, संतुलित दिनचर्या, मानसिक संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन को स्वस्थ भविष्य की आधारशिला माना गया है। आयुर्वेद दिवस के माध्यम से आयुर्वेद के संदेश को घरों, स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण एवं शहरी समुदायों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वस्थ जीवन की इसी सकारात्मक सोच के साथ आइए सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

0: चुची चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: श्रोताओं, समाज में अपने कर्म और समर्पण से सकारात्मक बदलाव लाने वाली विभूतियों का सम्मान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है। उज्जैन में वरिष्ठ गांधीवादी, समाज सेवी और आदर्श शिक्षा के प्रचारक रहे स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की जयंती के अवसर पर 26 सितंबर को कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ स्मृति सम्मान 2026 आयोजित किया जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ माधवनगर में शाम 5 बजे होने वाले समारोह में शिक्षा, प्रशासन, न्याय और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र, प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, न्याय के क्षेत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल वर्मा और कला के क्षेत्र में वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सतीश दवे को कर्मयोगी सम्मान प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संत बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज रहेंगे। इसी अवसर पर 26 से 28 सितंबर तक भारतीय ज्ञानपीठ में 3 दिवसीय खादी प्रदर्शनी एवं विशेष बिक्री भी आयोजित होगी, जिसमें खादी उत्पादों पर छूट भी मिलेगी। कर्म, सेवा और समाज के प्रति समर्पण की इसी प्रेरणा के साथ आइए सुनते हैं सुप्रभात उज्जैन का अगला गीत।

श्रोताओं, मौसम और पानी की उपलब्धता को देखते हुए खेती की योजना बनाना आज के समय की बड़ी ज़रूरत है। उज्जैन के तराना विकास खंड के ग्राम रामपुरा में कृषक संगोष्ठी आयोजित कर किसानों को आगामी रबी मौसम की तैयारियों और फसल चयन के संबंध में तकनीकी जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने वर्तमान में कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए रबी में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। किसानों को उपलब्ध जल संसाधनों के अनुसार फसल योजना बनाने और फसल विविधीकरण अपनाकर खेती में जोखिम कम करने की जानकारी दी गई। संगोष्ठी में ई टोकन के माध्यम से उर्वरक प्राप्त करने की प्रक्रिया भी और फार्मर आईडी की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। कृषि अधिकारियों ने प्राकृतिक खेती, मिश्रित खेती और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप फसल चयन और फसल विविधीकरण से खेतों में जोखिम कम करने तथा उत्पादन और आय को अधिक स्थिरता प्रदान करने में मदद मिलती है। बदलते मौसम और खेती की नई तकनीकों से जुड़ी इस उपयोगी जानकारी के साथ आइए अब सुनते हैं सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रवाह, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया

0: पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वत से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
5: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
6: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
7: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
6: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
8: मैंने पास PGVCL का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
6: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन

0: भारत को भारत के पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम हैं। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉयस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges. Also stresses for stronger ties with Latin American, Caribbean states as trade crosses $50 billion. US President Donald Trump backs India, Middle East, Europe economic corridor. Stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has called for greater cooperation among Global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of Global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. Dr. Jayashankar said the global situation was marked by increasing conflicts, pressure on supply chains and trade, fragmented investment flows, growing debt vulnerabilities and inadequate development finance. He said Global South countries should work together to address key challenges including supply chain, finance and connectivity bottlenecks.
3: We can see that in conflicts and geopolitical tensions, in the disruption of supply chains, in increasing trade barriers, fragmented investment flows, climate shocks, and the fact that international law and rules are under great pressure.
2: Dr. Jayashankar also met Italy's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Antonio Tajani on the sidelines of the United Nations General Assembly. In a social media post, the minister said their discussions focused on the Gulf situation, the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, and the Ukraine conflict. He said the two countries aim to expand collaboration and increase trade ties. Addressing the India-CELAC Foreign Ministers meeting during the UN High-Level Week 2026 in New York, the External Affairs Minister called for stronger economic and development partnership between India and the community of

दोस्तों, हम अक्सर संवाद का मतलब बोलना और सुनना समझ लेते हैं, लेकिन जरा किसी माँ को अपने छोटे बच्चे को देखते हुए देखिए। बच्चा कुछ नहीं बोलता, फिर भी माँ समझ जाती है कि वो भूखा है, परेशान है या खुश है। यानी भावनाओं की अपनी भाषा होती है। सांकेतिक भाषा भी इसी खूबसूरत विचार को सामने रखती है। हाथों की गति, चेहरे के भाव और आंखों की अभिव्यक्ति मिलकर ऐसी भाषा बनाते हैं जिसके जरिए विचार और भावनाएं व्यक्त की जाती है। आज का दिन हमें ये समझने का अवसर देता है कि संवाद का अधिकार केवल बोल पाने वालों तक सीमित नहीं होता और ना ही होना चाहिए। किसी व्यक्ति की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उसकी भावनाएं अलग नहीं होती। तो आइए इस खूबसूरत विचार के साथ सुनते हैं उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का पहला गीत।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में। उसके आसपास बच्चे हंस रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, दोस्त बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसकी दुनिया तक पहुंचने का माध्यम बाकी बच्चों से अलग है। ऐसे बच्चे के लिए सांकेतिक भाषा केवल कुछ इशारे नहीं हैं, ये उसकी पढ़ाई की भाषा हो सकती है, सवाल पूछने की भाषा हो सकती है, दोस्त बनाने की भाषा हो सकती है और अपने सपने बताने की भाषा भी हो सकती है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल में प्रवेश मिल जाना नहीं, असली शिक्षा तब है जब बच्चा शिक्षक को समझ सके और शिक्षक बच्चे को समझ सके, हर बच्चे की अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिले। यही तो समावेशी समाज की पहचान है। इसी उम्मीद के साथ और बच्चों के सपनों के नाम सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, परिवार दुनिया की पहली पाठशाला होता है। बच्चा सबसे पहले माँ पिता से संवाद करना सीखता है। किसी बच्चे के लिए ये संवाद आवाज से शुरू होता है तो किसी के लिए सांकेतिक भाषा से। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा घर लौटकर पूरे उत्साह से अपने दिन के बारे में बताना चाहता है तो उसकी सबसे पहली ज़रूरत क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी बातें समझे, उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो। सांकेतिक भाषा परिवार को बधिर बच्चे के साथ सहज संवाद का अवसर देती है। ये बच्चे को ये एहसास दिलाती है।

है कि वो अलग अलग नहीं है, उसकी बात महत्वपूर्ण है और उसके भावों को समझने वाला कोई उसके पास है। कभी कभी किसी बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बस इतना जानने की कि कोई उसे समझता है। इसी अपनत्व को महसूस करते हुए चलिए सुनते हैं अगला गीत।

घर में समझ और अपनापन हो तो मुश्किल रास्ते भी थोड़े आसान लगने लगते हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जहां सपने आकार लेते हैं, शिक्षा और रोजगार की। हर युवा के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार और कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। बधिर युवा भी सपने देखते हैं, फर्क केवल इतना है कि उनके सपनों तक पहुंचने के रास्ते में कई बार संवाद और पहुंच से जुड़ी अतिरिक्त बाधाएं आती है। समान अवसर का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति की क्षमता को उसकी भाषा या सुनने की क्षमता के आधार पर सीमित कर दिया जाए। यदि शिक्षा सुलभ हो, कार्यस्थल पर संवाद की व्यवस्था हो और समाज अवसर देने के लिए तैयार हो तो प्रतिभा अपना रास्ता खुद बना सकती है। किसी युवा की पहचान उसकी कमी से नहीं, उसकी क्षमता और उसके काम से होनी चाहिए। तो सपनों और हौसलों के नाम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर सवाल पूछता है, लेकिन मरीज अपनी बात उस तरीके से नहीं बता पाता जिसे डॉक्टर आसानी से समझ सके। स्वास्थ्य सेवाओं में संवाद की सुविधा केवल सुविधा नहीं, जरूरत है। बीमारी, दर्द, दवा, एलर्जी या किसी परेशानी के बारे में सही जानकारी डॉक्टर तक पहुँचाना ज़रूरी है। इसी तरह डॉक्टर की सलाह भी मरीज तक सही तरीके से पहुँचनी चाहिए। बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा में संवाद की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और सम्मानजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि अस्पताल हो, स्कूल हो या सरकारी कार्यालय, किसी भी ज़रूरी सेवा तक पहुंच भाषा की वजह से बाधित नहीं होनी चाहिए। इसी संवेदनशील विचार के साथ सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, लोकतांत्रिक और समावेशी समाज की खूबसूरती इसी में है कि उससे जुड़े फैसलों में संबंधित लोगों की भागीदारी हो। बधिर समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार, तकनीक, सार्वजनिक सुविधाओं या अन्य नीतियों की बात हो तो उनके अनुभवों और सुझावों को सुनना जरूरी है, क्योंकि किसी समस्या को बाहर से देखने और उसे खुद अनुभव करने में फर्क होता है। इसलिए मानवाधिकारों की चर्चा केवल अधिकार देने की नहीं बल्कि लोगों को अपनी बात रखने का अवसर देने की भी है। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद बोलता है, अपनी ज़रूरत खुद बताता है और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होता है तो वो केवल लाभार्थी नहीं रहता, वो समाज का सक्रिय भागीदार बनता है। इसी भागीदारी और आत्मविश्वास के नाम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आज हमारा बहुत सा जीवन मोबाइल और इंटरनेट के आसपास घूमता है, पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक और सरकारी जानकारी से लेकर सोशल मीडिया तक। डिजिटल दुनिया हमारे रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में डिजिटल सामग्री भी ऐसी होनी चाहिए जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से समझ सके और साथ ही इस्तेमाल कर सकें। कैप्शन, सांकेतिक भाषा में सामग्री और अन्य सुलभ तकनीकी सुविधाएं बधिर लोगों के लिए डिजिटल दुनिया का सबसे उपयोगी बना सकती है। लेकिन श्रोताओं, तकनीक तभी वास्तव में आधुनिक कहलाएगी जब वो केवल तेज नहीं बल्कि समावेशी भी हो। भविष्य की दुनिया वही होगी जहां तकनीक इंसान को पीछे छोड़ने के बजाय उसके साथ चलेगी। इसी नई दुनिया, नई उम्मीद और नई संभावनाओं के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, केवल जागरूकों की नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी होती है कि वो आसपास दिखने वाले सभी बधिर लोगों की सहायता करे। जरा स्कूल के दिनों को याद कीजिए, दोस्ती कैसे हुई थी। ज़रूरी नहीं कि पहली मुलाकात में लंबी बातचीत हुई हो, कभी साथ बैठना, साथ खेलना, एक दूसरे की मदद करना और मुस्कुरा देना ही काफ़ी होता है। बधिर बच्चों के लिए भी दोस्ती उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि स्कूल और समाज में बच्चे सांकेतिक भाषा के सामान्य संकेत सीखें तो उनके बीच संवाद की दूरी कम हो सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति की भाषा सीखना सिर्फ उसके साथ बात करना नहीं है, ये उसे ये बताना भी है कि तुम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। एक छोटा सा संकेत कभी कभी बड़ी दोस्ती की शुरुआत बन सकता है। तो आज की इस खूबसूरत भावना के साथ उसी दोस्ती के नाम ये अगला गीत।

0: श्रोताओं, भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, भाषा के साथ संस्कृति जुड़ती है, अनुभव जुड़ते हैं और पहचान जुड़ती है। इसलिए सांकेतिक भाषाओं को केवल किसी शारीरिक स्थिति से जुड़ी सुविधा के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं है। वे बधिर समुदाय के लिए संवाद और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। दुनिया में भाषाओं की जितनी विविधता है, उतनी ही विविधता मनुष्य की अभिव्यक्ति में भी है। उतनी ही विविधता मनुष्य की अभिव्यक्ति के साथ साथ कोई हिंदी में अपने भाव व्यक्त करता है, कोई मराठी में, कोई उर्दू में और कोई सांकेतिक भाषा में। भाषा का सम्मान दरअसल व्यक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर यही संदेश है कि विविधता को बाधा नहीं, समाज, मानव समाज की खूबसूरती के रूप में देखा जाए। इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: चिक बम बम बम चिक चिक।

तो श्रोताओं, आज पूरे कार्यक्रम में हमने अलग अलग बातें की, बच्चों की, परिवार की, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, तकनीक की, दोस्ती की और पहचान की। इन सभी बातों को जोड़ने वाली एक ही कड़ी है, सम्मान और समान अधिकार। 2026 का अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें याद दिलाता है कि बधिर लोगों के अधिकारों को केवल विशेष सुविधा के रूप में नहीं बल्कि मानवाधिकारों के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। विश्व बधिर संघ की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी और वर्ष 2026 में उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय अपनाया, जिसमें सांकेतिक भाषाओं को बोली जाने वाली भाषाओं के समान मान्यता देने का प्रावधान है। आज जरूरत सिर्फ सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में संवाद और सम्मान के रास्ते खोलने की है। और इसी विचार के साथ चलिए सुनते हैं उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसी के साथ आज का उज्जैनी आरजे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी पर सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं और अब समय है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें औपचारिकताओं की कोई जगह नहीं होती। एक दूसरे की मौजूदगी ही सुकून देती है और साथ होने का एहसास अपने आप में खास बन जाता है। जब किसी रिश्ते में अपनापन इतना गहरा हो जाए कि अपनी खुशी से पहले सामने वाले की खुशी दिखाई देने लगे, तो वो रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का ये गीत इसी अपनेपन और ख़ास रिश्ते की गर्माहट को सामने लाता है। विशाल मिश्रा की आवाज़ में सजा ये गीत रिश्तों की मिठास और भावनात्मक जुड़ाव को सहज अंदाज में पेश करता है। तो आइए, इस खूबसूरत अपनत्व के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: किसी की तरफ आकर्षित होना और फिर धीरे धीरे उसी के ख्यालों में खो जाना, प्रेम की शुरुआत अक्सर कुछ ऐसी ही होती है। फिल्म रेड 2 का ये गीत इसी चंचल और भावुक रंग को लेकर आता है। सचेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाज़ों में सजा ये गीत रोमांस के साथ एक सहज सी मस्ती भी लेकर चलता है। सचेत परंपरा का संगीत गीत के भाव को आधुनिक अंदाज देता है और इसकी धुन सुनते ही माहौल में एक खूबसूरत रोमांटिक रंग घुल जाता है। तो आइए दिल की इसी बेफिक्र अंदाज के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कुछ रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि हिम्मत, भरोसे और संघर्ष से भी बनते हैं। जब रास्ते आसान न हों, परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हों और फिर भी किसी अपने के लिए मन मजबूती से खड़ा रहे, तो प्रेम का अर्थ और गहरा हो जाता है। फिल्म पुष्पा 2 द रूल का ये गीत भावनाओं और संघर्ष की इसी मेल को अपने संगीत में समेटता है। श्रेया घोषाल की आवाज़ गीत को कोमलता देती है, वहीं देवी श्री प्रसाद का संगीत इसमें गहराई और प्रभाव पैदा करता है। तो आप सुनते हैं भावनाओं और दृढ़ता से भरा ये सुंदर सा गीत।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी सफलता के जरिए, कभी मुश्किलों के जरिए, और कभी ऐसे अनुभवों के माध्यम से जो हमें खुद को पहले से बेहतर समझने का मौका देते हैं। कई बार हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन असल में ज़रूरत होती है उसे एक नए नज़रिए से देखने की। फिल्म श्रीकांत का ये गीत इसी सकारात्मक सोच और जीवन को पूरी संवेदना के साथ स्वीकार करने की भावना को सामने लाता है। अरिजीत सिंह की आवाज में इस गीत की भावनाएं बहुत सहजता से श्रोताओं तक पहुंचती है। तो आइए कुछ पल जिंदगी के नाम करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगी।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं और धीरे धीरे हमारी रोज़मर्रा की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उनकी बातें, उनकी आदतें और उनकी मौजूदगी अनजाने में हमारे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का ये गीत इसी बदलते हुए एहसास की कहानी कहता है। राघव, असीस कौर और सचिन जिगर की आवाज़ों में सजा ये गीत प्रेम की सहजता और आधुनिक रिश्तों की मिठास को सामने लाता है। राघव, तनिष्क बागची और सचिन जिगर का संगीत इसे एक हल्का, सुरीला और रोमांटिक अंदाज देता है। तो अब बारी है उस एहसास की जब किसी एक शख्स से जुड़कर सब कुछ थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। और आकाशवाणी के उज्जैन के इस विशेष कार्यक्रम उज्जैन दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम हमने संजोया है पवित्र मास पितृपक्ष पर, जिसके बारे में अनेक जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देंगे और साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ सुंदर से भजन। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। श्रोताओं, पितृपक्ष हमें अपनी उन जड़ों से जोड़ता है जिनसे हमारा जीवन, संस्कार और पारिवारिक परंपराएं आगे बढ़ी है। पितृ यानी हमारे वे पूर्वज जो आज हमारे बीच भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके संस्कार और उनका दिया हुआ जीवन दर्शन हमारे साथ है। पितृपक्ष में हम उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, तर्पण करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध एवं दान पुण्य करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन कर्मों के माध्यम से हम पितरों के प्रति अपने ऋण और कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। इस वर्ष 26 सितंबर से पूर्णिमा श्राद्ध के साथ पितृपक्ष का आरंभ होगा और 10 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ इसका समापन होगा। आइए इस पावन अवसर पर अपने पूर्वजों का स्मरण करें और मन में श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव लेकर सुने ये सुंदर सा भजन।

श्रोताओं, पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय ही नहीं बल्कि अपने परिवार और पूर्वजों को याद करने का अवसर भी है। धर्म परंपरा में पितरों की संतुष्टि के लिए श्रद्धापूर्वक किया गया तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और दान आदि श्राद्ध कहलाते हैं। जिस तिथि को हमारे पूर्वज ने शरीर छोड़ा, पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करने की परंपरा है। पिंडदान में अन्न को पिंड के रूप में बनाकर श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाता है। इन सभी कर्मों के पीछे मूल भावना श्रद्धा और स्मरण की है। पितृपक्ष हमें ये भी सिखाता है कि वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त जीवन संस्कार और पारिवारिक परंपराओं के प्रति कृतज्ञ रहे। ये समय अपने भीतर झांकने और ये अनुभव करने का है कि हमारे जीवन के पीछे अनेक पीढ़ियों का योगदान है। इसी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना के साथ अब सुनते हैं एक भक्तिमय भजन।

नमस्कार श्रोताओं, पितृपक्ष का संबंध हमारी धार्मिक परंपराओं के साथ साथ वैदिक ज्योतिष की मान्यताओं से भी जुड़ा होता है। वैदिक परंपरा में सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के समय आने वाले इस पक्ष को पितरों के स्मरण और तर्पण के लिए विशेष माना गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं में सूर्य, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति को पितृ संबंधों और कर्मों से जोड़ा जाता है। पितृ दोष की अवधारणा भी इसी ज्योतिषीय परंपरा का हिस्सा है, जिसमें पूर्वजों से जुड़े अधूरे कर्म या ऋण की मान्यता व्यक्त की जाती है। इन बातों को धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के रूप में समझा जाना चाहिए। पितृपक्ष का मूल संदेश यही है कि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्मों का संकल्प लें। कर्म, संस्कार और स्मृतियों की इसी भावभूमि पर आधारित ये सुंदर भजन आपके लिए।

श्रोताओं, धार्मिक विश्वासों में पितरों के आशीर्वाद को परिवार के सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य दीर्घायु और वंश वृद्धि से जुड़ा गया है। श्राद्ध का वास्तविक भाव केवल विधि विधान में नहीं बल्कि श्रद्धा में है। यही कारण है कि श्राद्ध शब्द को श्रद्धा से जोड़ा जाता है। शास्त्रीय परंपरा में श्राद्ध कर्म के लिए अपराह्न काल को विशेष माना गया है। पितृपक्ष हमें अपने पूर्वजों को याद करने के साथ साथ जीवित माता पिता बुजुर्गों और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के सम्मान की प्रेरणा भी देता है। श्राद्ध सेवा और कृतज्ञता के इसी संदेश के साथ अब सुनते हैं उज्जैन दर्शन का अंतिम भजन।

इसी के साथ आज का उज्जैन दर्शन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं और समय है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा का।

नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी चंदना और लेकर आ गई हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा। सखियों, कहते हैं ना, काम चाहे किचन का हो या सिलाई कढ़ाई का, जब तक बैकग्राउंड में रेडियो पर गाने ना चलें और सहेलियों से दो बातें ना हो जाएं, तब तक दिन की शुरुआत कुछ अधूरी सी लगती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? और शायद यही तो रेडियो की खूबसूरती है। आप अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहें और रेडियो आपको गीतों के साथ साथ कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारियां भी देता रहे। तो आज भी ऐसी ही कुछ खास बातें लेकर हम आपके बीच हैं। आज हमारे पिटारे में एक नहीं बल्कि दो दो महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की, उस भाषा की जो बिना आवाज के भी बहुत कुछ कह और समझा देती है। आज उन इशारों की दुनिया को थोड़ा करीब से समझेंगे, जहां हाथों की हरकतें शब्द बन जाती हैं और भावनाएं संवाद। और सखियों, आज का दिन राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है और इसी खास अवसर पर आपको सुनवाएंगे हमारी भेंट वार्ता उज्जैन की जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मनीषा पाठक के साथ। सखियों, महिला सभा का पिटारा हो और उसमें स्वाद की कोई बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज आपके साथ शेयर करेंगे चटपटे बेसन के रोल्स की रेसिपी। लेकिन इतनी सारी बातों और मुलाकातों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आज की महिला सभा को थोड़ा सजाते हैं और आपके मूड को थोड़ा तरोताजा करते हैं। आइए सुनते हैं हमारी और आपकी पसंद का एक सुरीला गाना। आप बस अपना काम करते जाइए, गुनगुनाते जाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन।

जी हाँ, दिल की महफिल सजी है चले आइए, ये गीत सीधे दिल में उतर जाता है। और सच तो ये है कि जब अपनों से बात करने के लिए दिल की महफिल सजती है तो समा खुद ब खुद सुहावना हो जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जहाँ महफिल सजी हो वहाँ अगर अल्फाज कम पड़ जाएं तो क्या बात अधूरी रह जाती है? नहीं ना, क्योंकि जज्बातों को बयां करने के लिए सिर्फ शब्दों की नहीं एहसासों की भी ज़रूरत होती है। और सखियों, इसी एहसास और बिना बोले संवाद की बात पर आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मना रहा है। हमारे समाज में ऐसे कई भाई बहन हैं जो सुन या बोल नहीं सकते, उनके लिए भारतीय सांकेतिक भाषा यानी ISL संवाद और अपनी बात कहने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हाथों के संकेत, चेहरों के भाव और आंखों की अभिव्यक्ति के जरिए वे अपने विचार और भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब आप सोच रही होंगी कि भाई चंदना, सांकेतिक भाषा से हमारा क्या कनेक्शन? तो सखियों, कनेक्शन तो है, क्योंकि हम भी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बातें बिना बोले समझा देते हैं। अब ज़रा याद कीजिए, अचानक घर पे मेहमान आ जाएं और पता चले कि दूध ख़त्म है, तो हम भी तो पति देव को आंखों ही आंखों में समझा देती हैं, चाय के लिए मत पूछिएगा, दूध खत्म है। और सामने वाला भी बिना एक शब्द सुने बात समझ जाता है। लेकिन सखियों, सांकेतिक भाषा सिर्फ इशारे नहीं बल्कि एक व्यवस्थित भाषा है, जिसके जरिए हमारे सुनने और बोलने में असमर्थ भाई बहन अपने विचार, भावनाएं और अनुभव व्यक्त करते हैं। सखियों, आज का दिन यह एहसास कराता है कि संवाद के लिए आवाज़ की ज़रूरत नहीं, कभी हाथ बोलते हैं, कभी आँखें और कभी भावनाएं। और इन्हीं जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से बयां करता हुआ आइए आपको सुनवाते हैं बेहद सुरीला नगमा।

0: सखियों, महिला सभा कार्यक्रम में अभी आपने सुना एक बेहद खूबसूरत नगमा। और गानों के इस सफर के बीच अब वक्त हो चला है हमारी आज की बेहद खास और जरूरी मुलाकात का। सखियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 23 सितंबर को पूरा देश राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मना रहा है। आयुर्वेद यानी हमारी संस्कृति का वो खजाना जो सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता बल्कि हमें जीने की सही कला भी सिखाता है। और जब बात हमारे जीवन शैली की हो तो आयुर्वेद हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। तो सखियों, इस खास मौके पर आज हमारे महिला सभा कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मनीषा पाठक जी। मैम, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद चंदना जी, जो आपने हमें इस आकाशवाणी केंद्र में आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज के दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है और कब और कैसे इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई।
1: 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है जिससे पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर दिन और रात की अवधि लगभग 12-12 घंटे की होती है। यह खगोलीय घटना प्रकृति में पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। आयुर्वेद में भी साम्यता संतुलन का ही सर्वोच्च महत्व है
0: जी।
1: महर्षि सुश्रुत के अनुसार जब शरीर में दोष वात पित्त कफ धातु अग्नि मल समान या संतुलित अवस्था में होते हैं तथा आत्मा इंद्रियां व मन प्रसन्न होते हैं तभी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ कहा जाता है
0: जी।
1: प्रकृति और मानव शरीर के इस अद्भुत संतुलन के प्रतीक स्वरूप 23 सितंबर को

0: दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।
1: तो मैम ये आप बताएं कि ये आयुर्वेदिक दिवस जो है इसको कब से मनाया जा रहा है और इस वर्ष की क्या थीम है?
0: इस वर्ष हम 11वां आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं और इस वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की जो थीम है वो स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं अपितु शरीर मन और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित कर समग्र जीवन जीवने की शैली है
1: जी।
0: अतः सभी को आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। आयुर्वेद के मुख्य दो उद्देश्य हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें।
1: जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही। मनीषा जी, हमारे श्रोताओं को आसान शब्दों में समझाइए कि ये आयुष का असल मतलब क्या है और ये विभाग कैसे काम करता है।
0: चंदना जी, आयुष शब्द में 5 शब्दों का समावेश है और प्रत्येक शब्द से, जैसे कि ए से आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। अच्छा। इन 5 पैथियों का समावेश आयुष में किया गया है। आयुष विभाग परंपरागत आयुष पद्धतियों का देश विदेश में प्रचार प्रसार करना एवं आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा जन सामान्य को निरापद चिकित्सा हेतु चिकित्सालय, महाविद्यालय, औषधालय का संचालन करना, ऐसे आयुष विभाग शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है।
1: जी मैम, आयुष के अंतर्गत जो सरकारी अस्पताल है तो वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या किसी कोई गंभीर बीमारी हो तो उनका भी वहाँ पे कुछ इलाज उपलब्ध है?
0: हमारे उज्जैन जिले में 34 संस्थाएं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।
1: अच्छा।
0: जहाँ पर निशुल्क चिकित्सा परामर्श और निशुल्क औषधियों का वितरण भी किया जाता है।
1: अच्छा।
0: कुछ केंद्रों पर पंचकर्म की सुविधा भी उपलब्ध है, ब्लड टेस्ट जो निर्धारित ब्लड टेस्ट है वो भी किए जाते हैं और जो उपलब्ध मेडिसिन है वो भी निःशुल्क वितरित की जाती है।
1: तो मतलब मैम, जिसको भी अगर जरूरत है तो वो उन अस्पतालों में जाकर और इन दवाइयों से और परामर्श ले सकते हैं डॉक्टर?
0: जी बिल्कुल, जाएं, आयुर्वेद होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं।
1: मनीषा जी, एक बात मैंने देखी है कि लोगों में एक भ्रम है कि आयुर्वेद का इलाज बहुत धीरे धीरे असर करता है और इसमें परहेज भी होता है, तो ऐसे में लोग एलोपैथी या दूसरी पद्धति की जो है दवाएं वो लेना शुरू कर देते, इस पे आपका क्या विचार है?
0: चंदना जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल भ्रम ही है
1: जी।
0: वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार चिकित्सा के लिए समय देना ही पड़ता है और किसी भी पैथी में रोग को ठीक करने के लिए समय लगता ही है। सिर्फ पेन किलर ही ऐसा है जो अपने को खाकर तुरंत लक्षणों में आराम दे देता है, लेकिन बीमारी को पूरा रूप से ठीक करने के लिए समय लगता ही है, चाहे किसी भी पैथी में हो।
1: मैम, हमारी रसोई को आयुर्वेद का डॉक्टर कहते हैं, तो आप हमारी श्रोता महिलाओं को कुछ हमारे रसोई के मसालों से और इस आयुर्वेद से जुड़े कुछ टिप्स दीजिए।
0: जी बिल्कुल, हमारी रसोई के मसाले केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाते अपितु इनके कई बायो एक्टिव तत्व होते हैं, जैसे कि हल्दी में करक्यूमिन होता है, अदरक में जिंजरोल होता है, काली मिर्च में पाइपरिन होता है। रोजमर्रा के भोजन में हम सब हल्दी, जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, मेथी सभी का प्रयोग करते हैं और इन मसालों के उपयोग से कई बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे कि हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली होती है। जीरा पाचन संबंधी रोगों को ठीक करता है। अदरक, लहसुन, दालचीनी कोलेस्ट्रॉल और वजन घटाने में सहायक है। मेथी दाने के प्रयोग से हम जोड़ों के दर्द और डायबिटीज में लाभ ले सकते हैं।
1: जी मैम, ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि हमारी रसोई के जो मसाले हैं वो भी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं।
0: इनका प्रयोग मसालों का हमें कई रोगों से बचा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भिणी महिलाओं को जो सीमित मात्रा बताई है उसी में सेवन करना चाहिए गर्भिणी।
1: मनीषा जी, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा कार्यक्रम जो है वो महिला सभा है और मैं महिलाओं से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को अक्सर पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस या नींद की कमी है, ऐसी समस्याएं हैं, तो इसमें आयुर्वेद का क्या इलाज है और वो लोग कैसे आयुर्वेद को अपना सकती हैं?
0: जैसा कि चंदना जी आपने पूछा कि महिलाओं के लिए आयुर्वेद कैसे कार्य करता है
1: जी,
0: इसके लिए जो महिलाएं हैं उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं

0: पीसीओडी, हार्मोनल डिसबैलेंस, नींद ना आना, तनाव, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे उपचार हैं। लोग योग की मदद से और आयुर्वेदिक औषधियों की लेकर बिल्कुल इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। वो हमारे औषधालय में चिकित्सक से परामर्श लें और
1: जो दवाइयाँ हैं वहाँ पे वो उपलब्ध हैं उनको वो। जी मैम। मैम अभी हम जो देख रहे हैं वो जो मौसम में बदलाव है कि सुबह थोड़ी गर्मी है, शाम में हल्की फुल्की ठंड है, बहुत तेजी से वायरल फीवर, सर्दी जुखाम जो है वो बढ़ रहा है, तो आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आयुर्वेद के हिसाब से इस बदलते मौसम में किन चीजों पे ध्यान रखने के बारे में बताएंगे?
0: चंद्रा जी, भारत में 6 ऋतुएं स्पष्ट रूप से अनुभव में आती हैं। उनमें से वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, जो मिड सितंबर से मिड नवंबर तक मानी जाती है। इस ऋतु में दिन के समय तेज धूप तथा शाम और रात्रि में शीतलता होती है। इस ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए खट्टे, नमकीन, तीखा, गर्म पदार्थ, दही, छाछ, मद्य, सरसों का तेल, अधिक मसालेदार भोजन, इनका सेवन करने से इस ऋतु में बचना चाहिए।
1: जी मैम।
0: सभी को इस ऋतु में मीठे, तिक्त, ठंडे, हल्के, सुपाच्य पदार्थ, पुराने चावल, मूंग दाल, आंवला, मुनक्का आदि का सेवन करना चाहिए। धूप में कम निकलना चाहिए, हल्का व्यायाम करना चाहिए और आयुर्वेद में पंचकर्म के अंतर्गत विरेचन और रक्त मोक्षण चिकित्सा का लाभ लेना चाहिए, जिससे वर्ष भर हम पित्त रोगों से बच सकें।
1: जी मैम, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपने बताई कि किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिनको नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा ये सब सुनकर। और मैम अब मैं आखिरी में आपसे बस चाहूँगी कि आप जो श्रोता अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको आज के दिन के लिए क्या संदेश देंगे?
0: सभी को हमारी तरफ से सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि सभी आयुर्वेद अपनाएं और जो आयुर्वेद में ऋतुचर्या, दिनचर्या का बताया गया है उसका पालन करें, योग को अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ रहें।
1: जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से हमारी सारे प्रश्नों के जवाब दिए और आपका बहुत धन्यवाद हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया और हमारे आयुष पद्धति को जन जन तक पहुँचाने में सहयोग किया।
1: जी मैम। तो सखियों, आज हमारे महिला सभा कार्यक्रम में डॉक्टर मनीषा पाठक जी ने हमें आयुर्वेद के जरिए खुद को सेहतमंद रखने के बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताए। तो बस आप अपनी और अपने परिवार की सेहत का रखें ख्याल और चलिए अब मेरे पिटारे से आपको सुनवाती हूँ एक बेहद

सखियों अब समय है आपको रश्मि जी के घर लिए चलते हैं। रश्मि एक कामकाजी महिला है जो अभी अभी ऑफिस से लौटी है और आराम करने अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी सासू माँ की आवाज़ आती है। अरे बेटा रश्मि आ गई ऑफिस से, चल बेटा अब जल्दी से कुछ अच्छा अच्छा खाना बना दे, गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं। रश्मि मम्मी जी से कहती है कि पहले आप मुझे एक प्याली चाय पिला दीजिए। अरे बेटा मैं अपने लिए चाय बनाने जा ही रही थी, तेरी पसंद की अदरक वाली चाय भी बना देती हूँ, तू जल्दी से फ्रेश होकर रसोई में आ जा। दूसरी तरफ चाय की चुस्कियों के बीच रश्मि सोच ही रही थी कि क्या बनाया जाए, तभी उसकी नज़र बेसन के डब्बे पर पड़ती है और बस दिमाग में आइडिया आ जाता है बेसन रोल्स का। रश्मि बेसन में थोड़ा गेहूं का आटा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ज़ीरा डालकर आटा गूंद लेती है। फिर बारीक कटी हरी सब्जियों में पनीर और ज़रूरी मसाले मिलाकर स्वादिष्ट स्टफिंग तैयार कर लेती है। अब आटे की पतली सी रोटी बेलकर उस पर स्टफिंग फैलाती है, उसे रोल करती है। अब इन रोल को स्टीम होने के लिए रख देती है। जब तक रोल स्टीम होते हैं, रश्मि टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसाला डालकर चटपटी ग्रेवी तैयार कर लेती है। स्टीम हुए रोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कुछ पर सफ़ेद तिल का तड़का लगा देती है और कुछ को चटपटी ग्रेवी में डालकर सब्जी तैयार कर लेती है। यानी एक ही बेसन रोल से बन गए दो स्वाद, तड़के वाले रोल्स हरी चटनी के साथ और रोल्स की चटपटी सब्जी पराठे या चावल के साथ। तो सखियों आपको हमारी रश्मि जी की रेसिपी कैसी लगी, हमें पत्र लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है आकाशवाणी उज्जैन, द्वारा केंद्र निदेशक, विद्यापति नगर, नाना खेड़ा, पिन नंबर 456010। और इसी के साथ अपनी सखी चंदना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अब हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित होगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम रंग तरंग। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं और सभी को मेरा नमस्कार। लीजिए सुनिए ये गीत।

अभी आपने सुना गणेशाय धीमहि भजन, स्वर मैथिली ठाकुर, जोनीता गांधी, सूर्य गायत्री और आजीवासन किड्स का, गीतकार अजय अतुल, डॉक्टर चंद्रगुप्त वानिनकर और संगीत है अजय अतुल का। अब सुनिए गजल, बहुत खूबसूरत सी है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जिसे अपनी मखमली आवाज और दिलकश अंदाज में पेश किया है गजल सम्राट जगजीत सिंह ने। संगीत भी जगजीत सिंह का है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

होगा। सागा मापा गामा रे नीरी सतारी सागा मापा गामा पानी दा।

मक्ता पेश कर रहा हूं, जनाब अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहां तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फर्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फर्क है।

आहिस्ता आहिस्ता आप अभी और भी गजलें सुनेंगे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब पेश है एक बेहद खूबसूरत गजल, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा, अमी खंती की कलम से निकली ये गजल। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की दिलकश आवाज और सुरों से सजी, तो आइए सुनते हैं।

0: रंग तरंग,
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब सुनिए एक बेहद खूबसूरत गजल, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है। इस यादगार गजल को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने। इसके बोल हैं शाहिद कबीर के और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

पेश है बेहद खूबसूरत गजल, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। छाया गांगुली के बेहद सुरीली आवाज में इस गजल के खूबसूरत बोल हैं अदीम हाशमी के और इसकी धुन तैयार की है मधुरानी ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग कार्यक्रम। पेश है अगली गजल, जरा जरा सी बातें तेरी मुझको याद आती हैं। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है अलका याग्निक ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और इसे संगीत से सजाया है राजू सिंह ने। तो आइए सुनते हैं जरा जरा सी बातें।
1: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती से। अब सुनिए फिल्म साथ साथ की एक बेहद खूबसूरत गजल, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है चित्रा सिंह ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

आइए अब सुनते हैं फिल्म डैडी की बेहद खूबसूरत गजल आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। इस खूबसूरत गजल को अपनी आवाज दी है तलत अजीज ने, इसके बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर।
2: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं प्रतीक्षा समाचारों की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज

0: चिकित्सालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉक्टर जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शहर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज है। फिल्म का नाम इज्जत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
1: हाँ जी वादा।
0: विविध भारती से यादों की महफिल। गूंज रही है मुबारक बेगम की आवाज केदार शर्मा के बोल, हमारी याद आएगी।

0: उमर बेगम की आवासीय फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से यादों की महफिल, एक बेमिसाल पियानो सॉन्ग।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: इंदिवर की बोलते ओपी नैयर की तरसी किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
0: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
0: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
0: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जीने की राह फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: जीने की राह फिल्म का ये गाना था। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। आनंद बख्शी की बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने की बस एक झलक सुनवा पाएंगे, वक्त कम है। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

यहां होती है हमारी इबारत। आज की इबारत डायरी का एक अंश है, एक लड़की की डायरी का एक अंश। याद है तुम कहा करते थे, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं इकरार करूं। तब सब सच लगता था। एक सहेली ने कहा था, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर स्याही, हंस के उड़ा दी थी वो बात। पर फिर प्यार भी खोया मैंने, सब कुछ हार के। आज कितना उदास है सब, सब कुछ ठहरा सा, पर चलते रहे हम, गम राह में खड़े थे वो साथ हो लिए। सोचा नहीं था एक दिन पराए हो जाओगे तुम, पराए हो गए तो क्या, कभी ये भी तो थे अपने। इंसान गैरों से थोड़ी उम्मीद करता है, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पुकारा था तुम्हें कई बार, पर खाली गई पुकार, तुमने खामोशी ओढ़ ली। खामोशियों से तो दिल और दिमाग चलते हैं। हां आंसू बहे बहुत बहे, मगर उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। तुम नहीं हो, बदलते हैं मौसम, बारिश कोहरा धूप, चलती हैं हवाएं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। कभी कभी तो ये ख्याल आता है, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। पता है इंसान की सबसे खास बात क्या है, वो हर तरह के गम को भुला देता है, बाकी रह जाती है टीस। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, अब तो यही लगता है कि जमीन और आसमां हमसे दोनों खफा हैं। किसी लड़की की डायरी के ये अंश हैं, और इसमें वो गाने छिपे हैं जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत ही जज्बाती होने वाला है आज का ये कार्यक्रम, और अगर आप अपने दिल की बात फेसबुक पर कमेंट में हमें लिखते हैं तो ये कार्यक्रम जज्बात के मोती से सज जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कभी डायरी में आपने अपने दिल की बात लिखी, या आपने किसी दोस्त अपनी किसी सहेली से अपना दर्द उड़ेला। आज की इस इबारत को पढ़कर क्या याद आया है आपको, बताइएगा। शुरू करते हैं इस गाने के जरिए।

को ये गाना अपने दिल की धड़कन लगता है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारों के बीच अंताक्षरियों में पार्टियों में ये गाना खूब गाया है। और हाँ, किसे याद करके गाया है ये भी बताइएगा। पारिवारिक महफिलों में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला

एक श्रोता लिखते हैं कि किसे याद करके ये गाना गाया है ये हम नहीं बता सकते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि फिल्म ब्लैक मेल का ये बहुत ही रोमांटिक गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता, इन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी की हर बात कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन पहले बताई थी, जो मैंने सगाई से पहले और सगाई से शादी तक की उम्मीदें उकेरी थी और उसने पढ़ने की जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मेरे हर हालात की वो जानकार थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लफ्जों में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। एक और श्रोता की बात है कि इस गीत में प्रणय और श्रृंगार के कितने मधुर आयाम खुलते हैं, प्रेम की गहन ऊष्मा से सजी इस गीत में शब्दावली डायरी लिखने की उस दुनिया में ले जाती है जब उम्र में बहुत कच्चे थे और डायरी में पूरे संसार की बातें शामिल हो जाती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना दरअसल खुद से बातें करना है और अपने अनकहे दर्द को कागज पर उतारने का सबसे सुकूनदेह जरिया है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत और गीत हमारे जज्बात बन जाते हैं, कितनी प्यारी बात। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने अभी अभी 77 साल का सफर पूरा किया, उन्हें हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने भी अजीब होते हैं, जो बातें जबान तक नहीं आती उन्हें चुपचाप सहेज लेते हैं, कुछ स्याही में भीगी शामें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ नाम, वक्त मिटता जाता है मगर पन्नों पर ठहरी यादें मिटती कहां हैं। कितनी जज्बाती बातें हमारे सारे श्रोता लिख रहे हैं। ये गाना जो अभी हमने बजाया ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना, क्या आप बता सकते हैं कि किन कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया था? और इसके अलावा एक और बात आपको बतानी है कि वो कौन सा सूत्र है जो आज के सारे गानों को एक डोर में पिरो रहा है? और इसके अलावा अब जो गाना आ रहा है वो इंस्टाग्राम की इस दुनिया में रीलों का शहजादा बन गया, अचानक ही इस गाने को लेकर कितने लोगों ने रीलें बना डाली, एक गाने का जैसे पुनर्आविष्कार हो गया, जैसे कि रीडिस्कवरी हो गई इस गाने की, जैसे कि दोबारा किसी को सरे राह चलते चलते कोई अनमोल मोती मिल गया हो, इस गाने ने वही कमाल किया था। क्या आपने भी इस गाने को लेकर कोई रील बनाई थी अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ? ये भी बताइएगा कि किस फिल्म का है ये गाना और किसने लिखा है।

भाई भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, ये वो गाना है जो एक वक्त पर अचानक रीलों पर छा गया था जैसे इसकी रीडिस्कवरी हुई थी। भीगा भीगा है समा इस जुमले से मुझे लगा कि आप सभी से पूछना चाहिए कि क्या आपके शहर में भी भीगा भीगा है समा, क्या मौसम है, यादों की बारिश हो रही है या आसमान बरस रहा है, ये बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम को किस एक थीम ने अपने सूत्र में पिरो कर रखा है वो बात हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान ली कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इसके अलावा नागिन फिल्म का ये गीत है ये तमाम लोगों ने बताया, और भीगा भीगा है समा ये जो जुमला है ये तो जैसे जहन पर छा गया है, मैंने कहा कि रीलों पर छा गया था ये गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर किसी राह पर अकेले चल रहे हैं और कोई ऐसा साथी मिल जाए तो सफर काटना सुंदर और आसान हो जाता है। सफर कई तरह के हो सकते हैं, जिंदगी का सफर, नौकरी का सफर वगैरह। आज के गाने जिंदगी के सफर में साथ निभाने वाले गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, डायरी कभी नहीं लिखी लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्यों को मैं जरूर अपनी डायरी में नोट कर लेता था, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी डायरी कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वो तो हमारे बीते हुए समय की पेटी है जिसमें हम अपने जीवन के अनमोल पल सहेज कर रख लेते हैं। कभी किसी खत का अंश, कभी कोई तस्वीर, कभी किसी मुलाकात की तारीख, डायरी बहुत कुछ होती है, यादों का एक जखीरा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक छोटी मगर प्यारी बात है, हम अपनी डायरी में कुछ बातें लिख जाते हैं, कुछ आंखों में रह जाती हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी डायरी लिखते हुए लगता था ये सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन पन्नों में तो पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी का इंतजार, किसी की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और कुछ अधूरी बातें, सब धीरे धीरे जैसे गीत बन गए हैं। न जाने कितने श्रोता हैं जो जिनके जज्बात आज जैसे जाग उठे हैं। नागिन का गाना पुराने सोने की तरह है, खालिस सोना है, ये एक श्रोता ने लिखा। एक श्रोता लिखती है कि 13 गानों वाली फिल्म थी नागिन और एक से बढ़कर एक गाने, अपने कॉलेज के दिनों में हमने डायरी लिखी थी लेकिन अब तो सिर्फ हिसाब किताब लिखते हैं डायरी में। अरे अरे, डायरी लिखनी चाहिए भाई, हिसाब किताब से बाहर निकलिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कल रात हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं बस यादों की बारिश हो रही है वरना सूर्यदेव का प्रकोप है, बदल आते हैं, झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। एक और श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी, वो लिखते हैं कि हम तो अपनी डायरी में मोर पंख रखा करते थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत चटख धूप है हमारे शहर में। ये जो मोर पंख है इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि किताबों में और डायरी में दो चीजें बहुत रखी जाती थी, एक तो मोर पंख और दूसरी विद्यापति। क्या याद आया इन दोनों बातों से, जरा बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, किस पर फिल्माया गया, ये सब बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस जज्बाती कार्यक्रम के जरिए कौन सी भोली दास्तान आपको याद आ गई है। 1:16 विविध भारती सुरीला सफर यूनुस खान के संग।

एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के टाइम में मेरी एक सखी जिसे जिसके घर में मयूर पंख रखा करते थे उसने मुझे गिफ्ट दिया था। 10वीं तक मैंने संभाल कर रखा था और मोर पंख भी हम तो जब पापा को कोई सम्मानित करता और बुके में मोर पंख आते थे तो हम स्कूल में ले जाकर सहेलियों को बांटते थे। न जाने कितनी यादें आ गई जहन में। एक श्रोता लिखते हैं कि न तो कभी डायरी लिखी और न शायरी की है। 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद कोरोना काल में विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े और कई अनजाने मित्र बन गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विद्यापति की याद दिला दी। विद्यापति और बचपन आपस में जुड़े हुए हैं। घर में गमले में भी विद्यापति लगती थी, कॉपियों में रखा करते थे और कहते थे कि इससे पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या बढ़ती है। कमाल की बात थी, कमाल का वक्त था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इतने अच्छे गाने आप पेश कर रहे हैं कि हमारा जो सोने का इरादा था वो हमने टाल दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही सटीक विषय आपने डायरी का रखा है और जो गाने हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। एक श्रोता और हैं कहते हैं कि हम अपने कॉपी में मोरपंख के साथ चौक का पाउडर रखा करते थे क्योंकि हमें लगता था कि चौक का पाउडर रखने से मोरपंख बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनिता गुहा, प्रदीप कुमार, पुरानी फिल्म संजोग, एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि विद्या के पेड़ की पत्तियां बहुत रखते थे किताबों में क्योंकि हमें यह बताया गया था कि इससे विद्या आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी नोटबुक में भगवान की तस्वीरें रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कॉपी में विद्या की पत्तियां और रंग बिरंगे पंख रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हम तो अपने मन की सारी बातें सिर्फ भगवान जी से करते हैं हर समय। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गाने बहुत अच्छे हैं और देखते हैं कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गाना आज शामिल होता है कि नहीं। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कोई जीवन से चला जाए तो कितने दिन विश्वास नहीं होता कि अब वो नजर नहीं आएगा। ये गीत न जाने कितनी पुरानी यादों में डुबोकर आंखों को सजल कर देता है। वो भूली दास्तां और डायरी दोनों ही गुजरे वक्त की खामोश सहेलियां हैं। डायरी के पन्ने पलटते ही कोई भूली शाम, कोई अधूरा खत, कोई पुराना गीत, किसी की आवाज अचानक यादों में लौट आती है। कुछ दास्तानें जिंदगी से मिट जाती हैं मगर डायरी के पन्नों पर उनका मौसम हमेशा ठहरा रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो मैंने कुछ दिन तक डायरी लिखी थी लेकिन फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। फिल्म का नाम तो बताइएगा ही, साथ में ये भी बताइएगा कि नींद कहाँ और आराम कहाँ, ये जुमला आपकी जिंदगी पर कितना फिट होता है। कितनी नींद लेते हैं आप, कितनी नींद ले पाते हैं, कितने घंटों की नींद।

जेलर फिल्म का ये गाना है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम प्यार में जलने वालों को ये गाना सुनकर मन अवसाद से घिरने लगता है, लता जी की आवाज सीधे दिल में जाकर हॉन्ट करती है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिएटल में मैं ये कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया परदेश में विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक और श्रोता है जो कहती है कि भाई 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद तो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक और श्रोता 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ और श्रोताओं ने भी अपनी नींद का हिसाब किताब बताया होगा। एक श्रोता है जो लिखती है कि गानों की मैंने एक अलग सी डायरी बनाई है और उसमें सारे गानों की डिटेल्स, गायक, गायिका, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, ये सब लिखा करती थी। ये क्लास 12th की बात है। मेरी सहेली ने कुछ गीत मांगे, वो डायरी में स्कूल लेकर चली गई और सहेली के संग उन गानों को लिखने और बोलने में इतनी मस्त हो गई कि कब क्लास टीचर आ गई ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने मुझे डांटा और डायरी अपने पास रख ली। वो डायरी मुझे कभी वापस नहीं मिली। आज आपने मेरी एक दुखती रग को छेड़ दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर कहता है भैया पड़े रहो नहीं तो पटक देंगे। हा हा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आपका छाया गीत रात 10 बजे आता है और वो मेरी नींद का समय होता है। 70 का दशक था, डायरी की बातें आपने छेड़ दी, एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी तब उनके गाने डायरी में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी तो डायरी होती है, कुछ लोग संस्मरण लिखते हैं, कुछ अनुभव। मेरी माताजी और श्रीमती जी टीचर रही हैं तो स्कूल में उन्हें डायरी लिखना अनिवार्य था, बच्चों के कामकाज का हिसाब किताब उसमें होता था। ये लिखते हैं कि अपने महीने का हिसाब किताब डायरी में नोट करते हैं और गुजरे जमाने में जो चीजों के दाम थे वो देखकर आज चीजों के दाम की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि वक्त कितना बदल गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कभी कभी कोई गीत आप सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है और मन के भीतर एक बयाबान महसूस होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोता हूं, सुबह 5 से 8 मॉर्निंग वॉक करता हूं। उन्होंने पूरा हिसाब लिखा है, मतलब बढ़िया नींद कई लोग लेते हैं। आज का जमाना वो है जब बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती चली जा रही है कि लोगों की नींद कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि लोगों की नींद कम हो रही है? और ये जो ब्लू स्क्रीन है, यानी जो मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन वगैरह की स्क्रीन है, इसने हमारी जिंदगी का सुकून और हमारी जिंदगी के कीमती पल हाईजैक कर लिए हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा। और ये भी कि ब्लू स्क्रीन का प्रकोप कितना है आपके जीवन में।

हजरत महमूद की आवाज आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है और इस अनूठी आवाज से आप कितना प्यार करते हैं ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बर्लिन में इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं, यहां ठंड शुरू हो गई है, सुबह के 10 बजे हैं और धूप में बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अब तो टीवी से दूर ही रहते हैं, चश्मे तो पहले से चढ़े हैं, अब मोबाइल भी बस सुरीला खेलने के बाद रख देते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने भगवद गीता क्विज में हिस्सा लिया था और मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था और एक सुंदर सी डायरी मिली थी जो उनके पास अभी तक है। एक श्रोता हैं जिनकी बेटी जब से बाहर पढ़ाई के लिए गई है तब से उनकी नींद गायब हो गई है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी डायरी में 300 से ज्यादा गाने लिख रखे हैं, पूरे गानों के बोल हैं। तलत की आवाज के बारे में ये श्रोता कहती हैं कि मिष्टी मधुर गीत के गायक तलत जी हैं, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको हो जाता है, उसे निभा ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में मैं विविध भारती को मध्यम आवाज में सुना करता था, जब कोई पसंदीदा गीत आता था उसे रफ कॉपी में लिख लेता था और उसे जमा कर लेता था, शाम को खेतों पर पगडंडियों पर चलते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। इस तरह से मुझे बहुत सारे गाने याद हो गए हैं। कुछ श्रोता हैं जो सलील चौधरी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी का पेन बनाकर इंक से लिखा करते थे, आजकल तो प्रोफेशनल पेन से लिखने का चलन हो गया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1974 से 1982 तक का वक्त कॉलेज के सफर का आईना है और इन डायरियों में आर्थिक दुर्दिनों का जिक्र भी है और कुछ दर्द दिल भी। एक श्रोता हैं जो 5 घंटे सोते हैं और 11 बजे तक तो रेडियो सुनते रहते हैं रात में। इसके लिए एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भाई अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि दोपहर को आधे घंटे की नींद बहुत होती है तो मैं दोपहर को एक नैप लेता हूं, इससे ज्यादा नींद नुकसान कर सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लिख रहा हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं, रात 10 बजे सोना होता है, सुबह 4:30 बजे मैं जाग जाता हूं। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इससे ये साबित हो रहा है कि ज्यादातर श्रोता जो हैं वो जरूरत से कम समय सोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अलग अलग माध्यम, बहुत अलग अलग कारण हैं जिन्होंने हमारी नींद को हाईजेक कर लिया है, हमारी नींद को अगवा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के इस जज्बाती कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रहा है, आप सभी को कितना इंतजार है इस दिन का और 3 अक्टूबर को आप विविध भारती से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।

एक श्रोता लिखते हैं, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। गम जिंदगी के साथी तो होते ही हैं। आप सभी जब जिंदगी में उदासी के, परेशानी के, गम के दिन आते हैं तो उन दिनों को किस तरह से गुजारते हैं, अपने आप को किस तरह से थामे रखते हैं, ये जरूर बताइएगा और अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं, कितने नायाब गीतों के रचयिता राजेंद्र कृष्ण हैं। मैं हमेशा ही ये कहता हूं कि गीतकारों को बहुत सलाम करने की जरूरत है जिन्होंने ये नायाब नगीने हमें दिए हैं जो हमारी जिंदगी के कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रही है। बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जिस तरह से विविध भारती के कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि 3 तारीख को भी आप ऐसे ही मनपसंद कार्यक्रम पेश कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो जरूर होगा। और इसके अलावा ये एक श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं और डायरी लिखने का शौक पुराना है, यादों को सहेजने का सबसे अच्छा जरिया है डायरी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज डायरी के ऐसे पन्नों को खोला जाएगा जिनकी खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज भी अपनी डायरी में लिखा करती थी और ये डायरी आज तक मेरे पास मौजूद है। कितनी प्यारी बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती से ये अपेक्षा है कि वो एक ऐसा तोहफा दें जिससे कार्यक्रम रात 12 बजे तक जारी रहें। विविध भारती के कार्यक्रम रेडियो पर 11 बजे समाप्त हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। भाई, आपको हम ये सुझाव देंगे कि आप एक काम कर सकते हैं और वो काम है ऐप पर सुनना, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए। दुनिया के कोने कोने में विविध भारती सुनाई देती है बिल्कुल 24 घंटे बिना किसी बाधा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं। किस फिल्म का है ये गाना और किस तरह के जज्बात जगाता है बताइए।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि विविध भारती पर बजने वाले गाने दिल को छू लेने वाले होते हैं और मैं अपने दुख कम करने के लिए विविध भारती के कार्यक्रम सुनती हूं और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं रिलैक्स हो जाती हूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गई। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस 3 तारीख को पूरे करेगी और वे अपनी यात्रा के 70 बरस अगले बरस पूरे करेंगी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि नींद का मामला तो बहुत गड़बड़ है, चाहे दोपहर की नींद हो या रात की नींद, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं और 3 अक्टूबर को बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रमों का इंतजार हम कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुरीला सफर कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होना चाहिए, क्या बात है भाई, क्या डिमांड की है आपने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के जो गाने हैं वो दिल को छू लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नायाब अलबेला गाना हम आपको सुना रहे हैं और साथ में ये भी बात कि क्या पहले के ज़माने में आप डायरी लिखा करते थे और अगर डायरी लिखने का ये सिलसिला आप छूट गया है तो वो कौन सी वजह हैं कि आप आज के ज़माने में डायरी नहीं लिखते, वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको डायरी लिखने के शौक को आगे बढ़ाने से रोकती हैं। और हाँ, सुबह से आपके होंठों पर कौन सा गीत सजा हुआ है ये भी बता

चंपा कली फिल्म का ये गाना कितना बेमिसाल है। एक श्रोता लिखते हैं कि थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पर गया था, तब भी पूरे समय में विविध भारती सुनते रहता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि चल उड़ जा रहे पंछी मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है, मेरे बचपन का शहर इटावा, उसका छूटना, ये गाना सब कुछ याद दिला देता है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने पिताजी को याद किया है। उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नहीं रहे तो एक अंकल थे जो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये गाना शोक सभा में गाया था, पिताजी को ये बहुत पसंद था। आज उन अंकल की भी याद आ गई, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। कितनी यादें आपने इस गाने के जरिए ताजा कर दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गीत छुप गया कोई रे राग झिंझोटी और खमाज के पुट के साथ तैयार किया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जमाने में वो डायरी इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अब लिखने जैसा कुछ बचा नहीं है जीवन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना चाहिए क्योंकि इससे पुराना जमाना हमेशा याद आता रहता है। हालांकि कभी कभी डायरी जीवन की मुसीबत बन जाती है क्योंकि इसमें आपके राज छिपे हुए होते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि मेरी माँ चंपा कली फिल्म का ये गाना गाया करती थी, आपने उनकी याद दिला दी। सुचित्रा सेन के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और देखिए कि अब अकेलेपन का, उदासी का, टूटन का ये गाना आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। जिंदगी में जब अकेलेपन और उदासी के पल आए तो खुद को कैसे संभाला आपने? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपको संबल दिया? जिंदगी में निराशा का सामना आप कैसे करते हैं?

एक श्रोता ये लिखते हैं कि जिंदगी तो संघर्ष के पल्लू से ही बांध ली थी और उसके बाद रेडियो और बाद में कुछ अच्छे लोगों ने साथ दिया, तो कभी हार नहीं माननी पड़ी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा मानसिक शांति और संबल रेडियो ने दिया और विविध भारती ने मुझे सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में जब भी निराश और दुखी होती हूं तो मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है, वो बहुत ही आशावादी है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया है, उन्होंने कहा कि बस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बचपन से डायरी लिखना शुरू किया था, जब पिताजी ने डायरी गिफ्ट की थी, ये मेरे कविता लेखन की शुरुआती दिन थे। आजकल लिखने का काम मोबाइल में हो जाता है लेकिन डायरी लिखना छूट गया है। अपनी कुछ अच्छी कविताएं और कुछ दूसरे कवियों की कविताएं मैं डायरी में दर्ज कर लेती हूं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्रिकेट और अन्य खेलों में हैट्रिक होती है और सुरीला सफर कार्यक्रम में आप 2 दिन लगातार आ चुके हैं, तो क्या आप कल हैट्रिक करने वाले हैं? भाई ये एक सस्पेंस है और इसे सस्पेंस रहने दिया जाएगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसे इत्तेफाक समझिए या क्या कि जब भी मन उदास होता है यूं लगता है कि शायद कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विविध भारती और उसके सुरीला सफर कार्यक्रम में आने वाले गाने ये कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये गाना जज्बात से भरा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, ये उदास गाना किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा।

एक श्रोता ये लिख रही हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गाने आपने सुनाए और गुजरा जमाना जैसे आंखों के आगे खड़ा हो गया और माँ बाबूजी की याद आ गई। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी में जब भी निराश होता हूं तो पिताजी की बात याद आ जाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुक गए तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो डायरी में कानून की धाराएं लिखा करता था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब पतिदेव दुनिया से चले गए तो पूरे समय बस यही गाना जिंदगी में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने नरगिस और प्रदीप कुमार को याद किया है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है भरोसा। विश्वास वो चीज है जो परिवार को इकट्ठा रखती है। आज के इस कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण के कुछ बेमिसाल गाने थे और अब तकरीबन आखिरी गाने की जब बारी आ गई है तो वही गाना जो हमारी इबारत की आखिरी लाइन था, ये गाना पेश किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आखिरी पेशकश।

0: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है अंकित तिवारी और पलक मुच्छाल का गाया हुआ फिल्म सनम तेरी कसम से, समीर का गीत और अनजान का हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। आयुष्मान भारत योजना के आज 8 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज मिली है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बनाती है। आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 8 साल पहले आयुष्मान भारत की शुरूआत इस सोच के साथ की गई थी कि हर भारतीय को बेहतरीन और किफायती हेल्थ केयर मिल सके। श्री मोदी ने लिखा कि आज 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बन गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आयुष वेलनेस पर्यटन केंद्र का नया नाम आरोग्यम धाम सिंगल क्लिक के जरिए जारी किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र से जुड़ी कई जनकल्याणकारी योजनाओं की भी शुरूआत की। साथ ही विभाग के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा,
1: परिवार में बात करें तो आयुर्वेद की शुरुआत अपने घर के किचन से हो जाती है। हमारे घर के अंदर पता नहीं ऋषि मुनियों ने कब से अपने भोजन में सब्जी दाल और सबके साथ ये कहां कहां से मिक्स करना सीखा, क्या हल्दी की मात्रा होना चाहिए, कितना तेल होना चाहिए, कितना मसाला होना चाहिए। दादी माँ का बटवा, हमारे अपने जीवन में हल्दी का काढ़ा।
0: आयुर्वेद दिवस के मौके पर खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में बना हर्बल गार्डन ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहां मौजूद स्टाफ औषधीय पौधों के उपयोग की जानकारी देगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को सेवा पोषण और सम्मान का केंद्र बनाने के लिए प्रदेशव्यापी आंगन मिलन सेवा अभियान चलाया जाएगा। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित होगा। पहले दिन बाल स्वास्थ्य गतिविधियां और स्वास्थ्य परीक्षण होंगे। दूसरे दिन लाभार्थी महिलाएं योजनाओं से मिले लाभ के अनुभव साझा करेंगी। सागर पुलिस को जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में बड़ी सफलता मिली है। 30,000 रुपए के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मनीष लोधी और उसका साथी आशीष साहू दोनों घायल हो गए। गोली लगने से घायल दोनों आरोपियों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बच्चों की कल्पनाशीलता, जिज्ञासा, संवेदना को साहित्य से जोड़ने के उद्देश्य से भोपाल में 26 अक्टूबर को बाल साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अर्चना प्रकाशन न्यास के तत्वाधान में होने वाले इस सम्मेलन में प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों से बाल साहित्यकार और साहित्य प्रेमी शामिल होंगे। सम्मेलन के साथ बाल साहित्य पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आयोजन में बाल साहित्य के साथ बाल अधिकार, संस्कार और बाल मनोविज्ञान जैसे विषयों पर चर्चा होगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक 869.3 मिलीमीटर यानी 34.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से करीब 6% कम है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने अब दाब के असर से प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है और 26 सितंबर तक कई जिलों में बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल पोहरी जनपद के ग्राम छर्च में विशेष जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय बधिरजन सप्ताह के तहत जिला अस्पताल विक्टोरिया में जागरूकता रैली निकाली गई। वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही जनसेवा संकल्प यात्रा ने आज आगरमालवा जिले के ग्राम बरगड़ी से प्रवेश किया। नर्मदापुरम जिले में आज 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गुना कलेक्टर ने पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित प्रबंधन समिति की बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। रतलाम में सेवा संकल्प अभियान के तहत 28 से 30 सितम्बर तक विकासखंड स्तर पर सेवा सेतु कैंप आयोजित होंगे। सिंगरौली में मछुआरा सहकारी समिति के सदस्यों को 1 लाख मिश्रित मत्स्य बीज निःशुल्क उपलब्ध कराकर जलाशय में संचय किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
0: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
1: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली 3 व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
2: A durable institutional shape.
0: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में 2 नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
6: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं

0: और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
3: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
2: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
4: माय नेम इज रमेश।
5: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूं। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूं।
4: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
2: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए यूपीआई लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जियां नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।

0: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिणाज धारीवाल, रायजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती से बोल रही हैं सदाबहार नगमे।
1: न झटको जुल्फ से

0: की सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार
0: और सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
1: बताइए
0: क्या
1: अभी हम जब प्रोग्राम से पहले मिले तब आप कुछ ले रही थी, कुछ दवा थी या क्या थी, गले के लिए थी या किसी और चीज के लिए थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
0: अरे यानी कि तुम ध्यान रखती हो कि मैं क्या खा रही थी।
1: बिल्कुल।

0: पूरी तरह आपके तरफ ध्यान था।
1: अच्छी बात है, ध्यान रखना भी चाहिए। असल में क्या है सोनाली कि मौसम का बदलाव ना आपको परेशान कर देता है, जो आपके गले पे असर डालता है, आपके दिलो दिमाग पर असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो मुझे

0: जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है, और कमेंट्स तो लिखे हैं श्रोताओं ने, पर ये भी बताएं कि आपने आयुर्वेद को अपनाया है या नहीं, और किस तरह से आप अपनाते हैं।
1: सबसे बड़ी बात है क्या उपयोग कर रहे हैं
0: जी।
1: ठीक है,
0: साथ ही आज एक और दिन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
1: अरे बहुत महत्वपूर्ण दिन,
0: बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पुराने दिन याद आते हैं, बचपन के जब हम न्यूज देखते थे उसमें अब सांकेतिक भाषा में जो न्यूज हुआ करती थी वो हम भी सुना करते थे।
1: बिल्कुल, और उसे समझने की कोशिश भी करते थे। और पता है सोनाली, जब हम इस न्यूज को कई बार देखते थे ना, तो हमें कुछ कुछ इशारे समझ आ जाते थे, है ना। और बचपन होता था तो शरारती होते थे, उन संकेतों को हम अपने घर पे भी दोहरा देते, जब हमारी मम्मी हमें आवाज देती थी तो हम उस संकेत से अपनी बात कहते थे।
0: कितना मजेदार वो माहौल हुआ करता था,
1: वो आज भी हमें याद है
0: जी।
1: बिल्कुल, और बताइए।
0: साड़ियों का संसार, इसमें बाघ प्रिंट साड़ी मध्य प्रदेश की हम जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी सखियों ने इस विषय पर भी लिखना शुरू कर दिया है, और हम सखियों से पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं वो साड़ी, है ना,
1: या उससे जुड़ी कोई घटना याद हो कि आपने ये साड़ी ले तो ली किसी के कहने पर
0: जी,
1: लेकिन इस साड़ी को आप कहाँ कहाँ पहन के गई, या क्या
0: कौन से कलर की है, आपके
1: कैसी है, और सामने वाले ने आपको उस साड़ी में देखा या आपकी सखियों ने देखा तो क्या कहा, या आपकी पति देव ने क्या कहा।
0: ये तो पता नहीं, बताएंगी या नहीं बताएंगी हमारी सखियां।
1: अरे बताना चाहिए, अगर आपके पति देव ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
0: वही तो। और शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है आशा, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा का दामन हम जब थामे रहते हैं तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब हमारी श्रोताओं की आशा क्या है,
0: और नहीं व्यंजन भी है ना, आज लौकी के व्यंजन।
1: अच्छा, तो आप आज व्यंजन भी बनाने वाली
0: हैं। हाँ, और हमारे साथियों ने तो भर भर के लौकी के व्यंजन लिखकर भेज भी दिए हैं।
1: यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचपने की ओर लौट रही
0: हूँ।
1: मैं लौकी मुझे पसंद नहीं है।
0: अरे पर लौकी का हलवा भी नहीं पसंद?
1: अच्छा, लौकी का हलवा भी बनता है?
0: हाँ, लौकी का हलवा, लौकी के लच्छे, लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते।
1: अरे वाह, हाँ? मुझे लगा आप लौकी की सब्जी बना के खिलाने वाली हैं।
0: और सब्जी भी उसमें चना दाल डाल दो, कुछ अलग स्टाइल से बना दो तो वो भी आपको पसंद आएगी।
1: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को कहते हैं कि लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं बताइए ना, ताकि हम जैसे लोगों को जो लौकी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हैं उन्हें लगे कि नहीं लौकी बहुत अच्छा।
0: और लौकी मेरी फेवरेट सब्जी है,
1: मुझे भी लौकी बहुत पसंद है। पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन गई थी।
0: ऐसे बच्चा बनना चाहिए ना।
1: हाँ, बच्चे करते हैं ना अक्सर घर में, क्या मम्मी लौकी की सब्जी बना दी।
0: मम्मियां क्या करती है, उसके पराठे बना के खिलाती है। पर बच्चों को लौकी जाना ही चाहिए, उनके उन लौकी के बहुत फायदे हैं।
1: बिल्कुल, तो वो फायदे हमें बताएंगे हमारे श्रोता कि वो लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी चालाकी से लौकी बनाकर खिला देते हैं, है ना।
0: और आप गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: अनिंदे, तुम्हारी आंखें अभी बहुत कुछ कह रही हैं कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज है ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस पंचांग के अनुसार धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, लेकिन तिथियों में हर साल होने वाले बदलाव के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ष 2025 से इसे हर साल 23 सितंबर यानी शरद विषु को मनाने का ऐतिहासिक और निश्चित फैसला किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा की इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
1: जी
0: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
1: और आयुर्वेद में भोजन को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ताजा, संतुलित और व्यक्ति के आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
0: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता बल्कि हमारी मानसिक शांति का भी इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी वो बहुत महत्व देता है।
1: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए

0: रखना इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं, ऐसा कहा जाता है।
0: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है ना, और साथ ही आयुर्वेदिक की कई बातें जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
1: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में आयुर्वेद की स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
0: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
1: अच्छा,
0: यानी इस दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की
1: गई है। कितना गहराई से सोचा गया है इसके बारे में, और हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी हैं
0: जी,
1: है ना।
0: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है, वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है, यानी 23 सितंबर के दिन आता है, मतलब आज ये दूरियां नजदीकी अपन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई की बात करें तो आज भी मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचपन में जब सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे। जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी, मतलब गर्म करके वो पानी ठंडा कर लेते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
0: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा है। और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है,
1: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं
0: जी
1: ना।
0: तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद को ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं और जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं और उनका सेवन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है ना।
0: जैसे बहुत जैसा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गरम खाते हैं, जैसे कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम, यानी गरम गरम गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाल, तो इसे भी विरोधी माना जाता है आयुर्वेद में। तो छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है, साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया पर हर बार वही आदत है। कुछ लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उससे भी हमारा ना हाजमा बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था, लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है कि आपने गरम गरम भोजन किया और उसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं। तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे गलत है पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना।
0: और अब गीत सुन ले।
1: हाँ, नहीं तो हमारी श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: तो सोनाली, कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारी सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला और महसूस करने वाली संवेदना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश ना करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं संवेदना से होता है।
0: क्या बात,
1: कितनी सुंदर, दिल को छू लेने की बात
0: अभिव्यक्ति दी है। और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा जो सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है कि इशारों में आप अपनी बात से मतलब अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, और ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है।
1: सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।
0: और इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है।
1: जी, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
0: हाँ, और जो संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है।
1: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहाँ शब्द आवाज नहीं बन पाते, वहाँ संकेत संवाद का पुल बन जाते हैं।
0: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले, ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
1: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदनाएं हैं। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
0: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सुनते हैं।

0: आपका जब साथ मिलता है ना तो मेरा भी यही हाल होता है
1: कि हमें हो करना पड़ता है
0: जी। हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है, वे कहते हैं कि आपकी रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है।

0: तमाम मसालों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं। हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेल की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है। चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में
0: अपनाते
1: रहे हैं।
0: हाँ। और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी।
0: साथ ही हल्दी का दूध,
1: हल्दी का दूध पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
0: और जो आजकल के बच्चे ना नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो फिर वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें एक इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें
0: जी,
1: है ना, या दुबले पतले इस तरह का जो आजकल एक मार्केट
0: चलन
1: आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खान पान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
0: और अगर अच्छा खान पान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर। तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं।
1: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे, जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो
0: अच्छे होंगे,
1: तो शरीर
0: अच्छी होगी,
1: रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली,
0: और आज सखी सहेलियां कौन है?
1: मंदाकिनी जी
0: और सोनाली जी। तो चलिए साड़ी की दुनिया में चलते हैं, जहां आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं।
1: हाँ बिल्कुल है मेरे पास में, और आपके लिए मैं लेकर आऊंगी।
0: बाग प्रिंट साड़ी?
1: हाँ।
0: क्या बात है,
1: मध्य प्रदेश की ये सुंदर साड़ी है, बाग प्रिंट साड़ी। और भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाग प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और बाग प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाग कस्बे से जुड़ा है, जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
1: और समय के साथ स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी के ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, और बाग प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार

0: तैयार किया जाता है और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
1: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
0: हाँ, और परंपरागत जो बाग प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
1: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: सोचिए, थोड़ा सा भी आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को, तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है। कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
1: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है, काला रंग डिजाइन को उभारता है और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
0: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाग प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी की लगती है साड़ी।
1: और इसके प्रिंट देखें तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं।
0: और
1: इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि वे बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
0: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाग प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
1: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाग प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इससे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है। और बाग प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं, बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के कौशल को सम्मान देना भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको बढ़ाता है, अर्थ का अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं, उनके अनुभवों को।
1: जी, और बाग प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
0: और इसीलिए बाग प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।

0: तो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारी सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती हूँ। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाग प्रिंट के सूट और साड़ियाँ लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है। तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि उस साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि मैं बाग प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी MP से हूँ और मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चले
1: चलिए और ले लेते हैं।
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाग मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगी तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाग प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाघ नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक अनोखी चमक और पक्कापन आता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्दी बाघ प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
1: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
0: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है, तब यही आशा भीतर से कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक नई सुबह बाकी है। आशा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है और यह हमें इंतजार करना सिखाती है, प्रयास करते रहने का हौसला देती है और टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेने का भी एक माध्यम है आशा।
1: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती है और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की पूरी होने की इच्छा है। किसी काम के पूरे होने की संभावना पर विश्वास रखना, भविष्य में कुछ अच्छा होने की चाह रखना, ये मन की भावना है और जिंदगी में उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की चाहत बढ़ाती है। आशा दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा।
1: एक हमारे साथी कहते हैं, आशा है तो जीवन में उजाला है, आशा है तो हर मुश्किल का रास्ता है। आशा केवल एक विचार नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में मुस्काने और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, आशा की एक किरण निराशा के पूरे पर्वत को पिघलाने का सामर्थ्य रखती है। जब मेहनत और धैर्य थकने लगते हैं तब आशा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाने का हौसला देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और क्या लिखते हैं हमारे श्रोता?
1: आशा उस विश्वास का नाम है जो टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेता है। कभी ये किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की तैयारी होता है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में तो हम उदास हो जाते हैं, अरे जिंदगी तो हमारी
1: बोरियत
0: हो गई, उबाऊ हो गई।

0: जिंदगी तो यही ठहर गई, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे, जो सदा साथ रहती है हमारे, जब तक सांस है तब तक आस है।
1: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास यानी सांस जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
0: और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको सुनवाएंगे।

0: हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी के जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है, छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक नहीं लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दूकस की हुई लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन जीरा, छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए, हींग चाहिए, कटा हुआ धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरी में कद्दू की हुई लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंद लें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े को गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई लें और उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर कपड़े पर थाली पीठ को गोलाकार में फैलाएं। बीच में अपनी उंगली में 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा लगाएं। कपड़े वाले थालीपीठ को कपड़े सहित तवे पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थालीपीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे,
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर ले, ताजा दही 2 कप फेटा हुआ, भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच, सादा नमक, स्वादानुसार हरी मिर्च 1-2 कटी बारी और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा, हींग, राई। बनाने की विधि, कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन या कुकर में नरम होने तक उबाल ले। उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताजा दही ले, उसमें फेंट ले। फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है, और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट हलवा भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर लें लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में लें थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील लें। छीलने के बाद चक्कर जरूर देख लें, कड़वी तो नहीं है,
1: बहुत जरूरी है,
0: कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना हो, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तले की कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी गरम करें। इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5-7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए। दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं। इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहें। हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
1: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसा हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिखकर भेजी कि जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते हैं तो उसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
0: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दूकस से
1: कस ले।

0: रस लें है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए है ना।
1: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
0: कई बार क्या होता है, माएं इडली बनाती है ना उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
1: सांभर में
0: भी है। और जब इडली हम पकाते हैं ना तो कद्दूकस की भी लौकी उसके अंदर भर देती है ताकि जो इडली भी खाई जाएगी और लौकी भी पेट में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
1: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिये में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चे को लौकी खिला कर ही छोड़ती है।
0: इसलिए लौकी एक और उसके रूप अनेक है ना।
1: और अब गाना
0: बिल्कुल

0: तो सोनाली, हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है,
1: और अगर कोई लौकी का हलवा लौकी के व्यंजन खिला देंगे तो कोई कैसे खींचेगा।
0: वही तो हमने कहा, वो खींचे हुए नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता है कि अब जो है हम आगे और उनके साथ गुफ्तगु नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता संजीव शर्मा से जी शाम की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में

0: और वो चेहरा इतना खूबसूरत है जो आप हमेशा देखना भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इन्हें आशीर्वाद भी देंगे और एक दर्शक के रूप में इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है श्री संजीव शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्टूडियोज में स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच विविध भारती, ईच एंड एवरीबॉडी और आप जितने सभी लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी कई सालों की मुराद पूरी हुई। शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्मों में कहा है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात मजबूर हो जाए वो आपको देने के लिए। तो टीवी फिल्म वेब सब करने के बाद एक तमन्ना ये थी कि रेडियो पे काश एक बार मौका मिले मुखातिब होने का। तो आज ऊपर वाले ने शायद मेरी वो प्रार्थना सुन ली। मिस्टर नितिश अरोड़ा से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप रेडियो करना चाहेंगे, मैं कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सबके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है तो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था, कुछ चीजों को लेकर चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन आज यहाँ आकर मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ कि एक दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम आएगा तो मैं अपने कानों से अब सुनूंगा कि विविध भारती पर संजीव शर्मा यानी मैं ईश्वर का बंदा है, जो एक फैमिली मैन है, जो अपने गुरु का भक्त है, जो अपने दोस्तों का दोस्त है और जो अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, अपने को एक्टर्स का यार है, दोस्त है। तो आज वो यहाँ बैठ के अपनी आवाज कोशिश करेगा कि अच्छे से एक मैसेज, अच्छे से अपने बारे में कुछ बातें, कुछ अच्छे संगीत, कुछ म्यूजिक, कुछ गाने, तो यहाँ पर एक मौका मिला है उसको पेश करने का। और थैंक यू श्याम जी, आपके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं कि मुझे लग रहा है मैं रेडियो पे बैठा हुआ हूँ और मैं सामने से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विविध भारती को इतने प्यार से आपने याद किया है और आज साथ भी मिल गया है विविध भारती का।
1: विविध भारती की एक लाइन मुझे भी मैडम होता है कि सुरीली धड़कन, जब से पैदा हुए हैं सर कानों में वही आवाज
0: जी,
1: वही आज भी याद है कि हवा महल का म्यूजिक, सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम जयमाला, छाया गीत
0: जी,
1: और कृषि भाइयों के लिए प्रोग्राम, तो ये सब चीजें जो हमारे कान में बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कि मतलब गुरु कुछ मंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आवाज जो है ना रेडियो की, स्पेशली विविध भारती की, तो आज भी उन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं मन में घूमती रहती है। और पेश है सैनिक भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम, ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन जब तक जीवित हैं मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने विविध भारती को सुना है अब तक, क्योंकि अब तो काफी चेंजेस हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता सर कि ये ऐसी चीज है जो आप कभी आसानी से भूल पाएंगे। और आज वहीं उसी जगह पर बैठकर, उसी स्टेशन पर, मैं फिर से बोलूंगा मैं बहुत बड़ी किस्मत है कि मेरी यहां बैठकर मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके पुराने दौर को याद करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं। ये सफर जो यहाँ तक पहुंचा है आपका, जाहिर है हर तरह से कभी अड़चने भी आती हैं, कभी कई लोग मिल जाते हैं जो पूरी कायनात मिल जाती है, जैसा भी आपने कहा, वो चीज दिलाती है, वो आपका जो सोचा हुआ काम है वो दिलाता है, जो सोची हुई बात है वो करने के लिए आपको सहयोग देता है। तो शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जन्म से करते हैं शुरुआत अगर करनी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहाँ जन्म हुआ आपका?
1: सर मेरा जन्म हुआ गाजियाबाद में, जो यूपी में है, दिल्ली एनसीआर में आता है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ।
0: और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी, बचपना कहाँ बीता आपका?
1: बचपन सर गाजियाबाद में बीता, बेसिक शिक्षा भी वहीं हुई 8वीं तक। उसके बाद मेरे पापा जो बैंक में थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर मौका मिला उनके साथ विभिन्न शहरों में जाने का और वहाँ की स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का। उसके बाद मैं वापस आया गाजियाबाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की।
0: किस विषय में किया आपने?
1: सर मैंने बीकॉम किया था, एक सपना देखा था कि सिविल सर्विस करने का, उसके लिए फिर मैंने एमए हिस्ट्री ज्वाइन किया, फिर हिस्ट्री को अध्ययन किया पूरा, एग्जाम दिए, सब कुछ किया, बट समहाउ क्या होता है ना, राहें आपकी अलग अलग लिखी होती है, लेकिन मलाल नहीं है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, हाँ
0: नहीं,
1: मैंने
0: लेकिन
1: किया।
0: इतिहास की आपने जब बात की है तो आपके जितने सीरियल्स हैं
1: जी,
0: जो धारावाहिक हैं, वो ऐतिहासिक ना भी कहें तो पौराणिक तो है ही, पुरानी चीजों से जुड़े हुए, जो आपको पसंद था, आपने वो एग्जाम के लिए तैयारियों के लिए किया था जरूर, लेकिन वो आपके अंदर था और वो आपको मिलना था, तो वो दूसरे किरदारों के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, एक स्क्रीन पर जो है घर घर पहुंचने के रूप में आप तक पहुंचा है।
1: आपने मेरी बात को बिल्कुल सही पकड़ लिया एकदम, कि वो कहता है ना समथिंग हैपन फॉर समथिंग, मतलब
0: बिल्कुल
1: कुछ होता है किसी चीज के लिए, तो वही शायद जिंदगी में लिखा था। क्या लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फर्क लगता है कि सोशल सीरियल में और माइथो में डिफरेंस क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था किसी जर्नलिस्ट सर ने पूछा था मुझसे, तो पता नहीं कहां से मेरे अंदर

0: आंसर आया कि सर क्या होता है कि जो सोशल सीरियल होते हैं ना, उसमें सोशल लाइफ हम जो जी रहे हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम माइथो करते हैं और जब हम उस यूनिफॉर्म, उस ड्रेस को पहनते हैं, उस गेटअप में, उस मुकुट में, उस महल में जो बना हुआ होता है, और जो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान महादेव खड़े हैं, मतलब एक अपीयरेंस ऐसा होता है कि उससे हम लगता है कि यार ये चीज जो मुझे अभी फील हो रही है, ये चीज रियलिटी में कैसी होगी, शायद ऐसी ही होगी, तो एक अलग ही युग में चले जाते हैं, एक अलग ही माहौल होता है वो, एक माइथो का
1: बिल्कुल
0: मतलब एक पुराना भक्ति में एक माहौल होता है कि यस सामने प्रभु खड़े हैं, ये खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वी आर डिस्कसिंग एंड ऑल, पार्वती, जैसे मैंने अभी शिव शक्ति मैंने किया था, तो पार्वती डॉटर का किरदार उन्होंने किया, तो वो एक अनुभूति ही अलग होती है सर, वो माइथो करने की, वो बहुत पेनिंग भी होता है, आपका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत, कभी चुभ रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, गर्मी होती है, कई बार एसी नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप एक मुस्कान के साथ वहां खड़े होते हैं और अपनी मतलब अदाकारी को वहां निभा रहे होते हैं, और जैसे ही कट होता है तो आप एक ओहो ये चुभ गया, जैसे ही
1: लेकिन
0: एक्शन
1: आपके
0: खत्म।
1: मुस्कान जो है ईश्वरी है, बिल्कुल आप उसी तरह से मुस्कुराते हैं। अच्छा ये बताइए कि
0: जी
1: सामाजिक जो है, फिल्में हो या फिर धारावाहिक, तो जो समाज में घट रहा होता है हम स्वयं भी उसे देखते हैं, उसके साथ में वाबस्ता होते हैं हम, तो हम उन किरदारों को कर सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन जो किरदार देखे नहीं
0: देखे ही
1: हैं,
0: नहीं है
1: माइथोलॉजी के जो किरदार्स हैं, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो देखे हुए नहीं रहते,
0: देखो
1: तो उन्हें करने के लिए कैसी अलग से तैयारी क्या करनी पड़ती है, क्या भाव आता है? अगर आप शिव जी का पार्ट कर रहे हैं किसी एक धारावाहिक में, तो शिव जी की तरह फील करना, शिव जी की तरह दिखना, वो तो मेकअप से और वगैरह जो पहले से हमारे पास छवियां हैं
0: जी
1: उन छवि के आधार पर, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तब क्या डिफरेंस रहता है, आपको क्या लगता है तब?
0: इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा श्याम जी, के जब हम एक पुलिस वाले का करेक्टर करते हैं, अगर हम कोट पैंट पैंट शर्ट पहने तो हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है, जब वो यूनिफॉर्म हम लोग जो पहनते हैं तो वो जो फील आता है ना, वैसा ही फील आता है जब आप माइथो में एक करेक्टर
1: कॉस्ट्यूम्स
0: का, हाँ
1: पहनते हैं।
0: कॉस्ट्यूम है, एक माहौल है। और मेरे साथ तो सर ये थोड़ा सा मतलब मेरा गुड लक ये रहा है कि मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और काफी विषयों की मेरी जानकारी भी है अपने धर्म के बारे में भी, हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है आप बचपन से जिस माहौल में रह रहे होते हो तो उसमें आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जानने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, आपने फोटोग्राफ देखे होते हैं, आपको पता हाँ यार ऐसी होगा, लेकिन जब आप उस गेटअप को, उस करेक्टर को धारण करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि वो एक ऑटोमेटिकली आपकी जो शैली है, जो आपका जो एक मन है ना, मैं उसको एक शब्द क्या दूं, कि आपका ना एवरीथिंग गेट चेंज, यू नो हर चीज बदल जाती है, आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो, क्योंकि आपको बस उस गेटअप निभाने की एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं यार मैं इसके साथ एक न्याय करने वाला हूं, मतलब मैं इसको धारण किया हुआ है, एक एक्टर का पूरी कोशिश होती है कि वो जो अपने व्यूअर्स हैं, जो उनको जो देखने वाले हैं, उनके साथ वो न्याय कर सके,
1: बिल्कुल
0: तो उनको लगे हाँ यार ये आदमी बिल्कुल मतलब महादेव लग रहा है, या मतलब भगवान विष्णु के उसमें रूप में, या मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी एक्टर्स उस
1: जी
0: कैरेक्टर
1: जी
0: को
1: जी
0: करते हैं
1: जी
0: उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा ही न्याय करें, धूमिल ना वो छवि जो है
1: जी जिम्मेदारी बड़ी होती है,
0: बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी
1: और
0: है।
1: सामाजिक फिल्में जो हैं या जो दूसरी कमर्शियल फिल्में आती हैं या धारावाहिक आते हैं, उसमें आपका मैनरिज्म भी काम करता है, आपका अपना अंदाज भी काम
0: अंदाज
1: करता है,
0: काम
1: और
0: आप
1: उसमें आप थोड़ा इनोवेटिव भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन इसमें आपके पास में
0: नहीं,
1: वो छूट नहीं होती।
0: वो बिल्कुल नहीं होता सर, कोई इंप्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता, कि अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही, श्लोक जो है
1: जी जी
0: अगर आपको संस्कृत में बोलना तो श्लोक को आप श्लोक की तरह ही बोलेंगे,
1: बिल्कुल
0: आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको इंप्रोवाइज नहीं कर
1: नहीं
0: सकते,
1: कर सकते,
0: तो
1: अलग अलग अंदाज में नहीं कह
0: जी
1: सकते
0: जी
1: आप।
0: जैसे मेरा करेक्टर था भगवान वाल्मीकि का, राम सिया के लवकुश में, कहानी स्टार्ट होती है सेकंड एपिसोड से मेरे ही आश्रम से,
1: अच्छा
0: जब सीता जी एंटर करती हैं जंगल में और मैं उनको लेने जाता हूँ, तो उससे पहले उन्होंने एक भगवान वाल्मीकि की कथा बताई है,
1: जी
0: हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो उसका प्रोमो शूट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे एक श्लोक लिख के दिया, वो श्लोक था पहली बार जब भगवान वाल्मीकि ने पहला जो संस्कृत श्लोक बोला था, तो वो मुझे पढ़ने को दिया, और सर एक एज एन एक्टर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो श्लोक जैसा है उसको वैसे ही पढ़ा जाए, उसका उच्चारण वैसे किया जाए, तो उसके लिए मैंने कम से कम नहीं तो सर 100-150 बार उसको पढ़ा, मेरी वाइफ ने मुझे पूरा उसका जो एक एक प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा, बाकी लोगों से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मंगाई कि इसको बोला कैसे जाए, फिर मैंने उसको कॉपी करके या उसको समझ के तब मैंने वो शॉट दिया, भगवान वाल्मीकि का पहला श्लोक था जो संस्कृत में निकला था, वहीं से श्लोकों की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है।
1: क्या बात है। चलिए शुरुआत तो हमारी भी हो गई है बातचीत की, लेकिन हमारे अपने कार्यक्रम में आप सुनते हैं कार्यक्रम, आपको पता है कि इस कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ हम आपकी पसंद के गाने भी सुनते और सुनवाते हैं।
0: जी जी।
1: तो बताइए कि इस मौके पर कौन सा पहला गीत होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पहला धारावाहिक कौन सा था, ये पहला जो स्टेज का या जो भी परफॉर्मेंस का जो मंच था आपका वो कौन सा था, वो हम बात में करेंगे।
0: जी जी।
1: फिलहाल पहला गीत इस कार्यक्रम का कौन सा होगा जो अपने श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे?
0: सर मुझे ना पुराने गीत बहुत पसंद है, वो पुराने नहीं है वो आज भी नए हैं बेसिकली।
1: बिल्कुल।
0: तो जो पहला सॉन्ग है जो मैंने सुना जब मुझे समझ हुई थोड़ी सी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के, कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।

0: संजीव शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे आपके पहले परफॉर्मेंस की, जो पहला परफॉर्मेंस आपका था वो कहाँ पर और कैसे, और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि हुई वो किस तरह से हुई?
1: सर, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ना सब लोगों में बचपन से होती हैं। हर कोई आदमी गाना गाना चाहता है, गाना सके लेकिन गुनगुनाता जरूर है। एवरीबडी इज एन एक्टर। हम घर पे छोटी मोटी एक्टिंग करते रहते हैं, कभी पेट में दर्द हो गया, बचपन में करते थे। तो एक्टर तो हम सभी हैं और सिंगर भी हम सभी हैं और डांसर भी हम सभी हैं। तो ये कुछ विधाएं हैं जो हमेशा से, हम ड्राइंग भी बनाते थे, हम जादू भी दिखाते थे, तो कुछ विधाएं हैं जो बचपन से रहती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो कहता ना, एक लिखा होता है कि आपकी लाइन के आपको कहाँ जाना है, विधाता ने डिसाइड करके भेजा होता है, मैं ऐसा मानता हूं। तो आप उसी राह पे चलते हैं
0: जी।
1: आप कई जगह इधर उधर भटकते हैं लेकिन अंत में आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपको जाना होता है। ये सत्य है जीवन का। मैं भी चाहता था सर, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई सर कि मैं जब 8th क्लास में था, उससे पहले हम सब करते रहते हैं एक्टिंग डांस वन सब। तो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी एक टीचर हैं, अभी भी हैं, बलबीर कौर जी, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि वही जो कहते हैं कीड़ा जो उन्होंने डाला तो दिमाग में वो ही।
0: अच्छा, ये जो अच्छे काम जितने होते हैं उसके पीछे ये कीड़ा कहां से आ जाता है?
1: सर, एक कहावत है ना कि
0: रुचि जगाई,
1: कि मतलब हाँ, मतलब रुचि जगाई या किसी ने पिंच किया या किसी ने मतलब
0: उस और प्रेरित
1: आपको चूज किया, तो वो एक आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा।
0: हाँ नहीं, बड़ा अच्छा है ये कीड़ा,
1: तो अच्छा रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो सर वो हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी और बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, और उनको देख के मतलब सामने मतलब पैर कांपने लगते थे। शैतान तो हम शुरू से थे।
0: नहीं, काम अभी तो नहीं है ना?
1: अभी भी कभी कभी और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को शैतान होना चाहिए। सो काम ने करना, कुछ ना करना, सजा मिलती रहती थी, कभी हैंडसअप कर लो, कभी कुछ कर लो। हमारे स्कूल में एक 26 जनवरी को एक कुछ प्रोग्राम होते हैं ना स्कूल में, जैसे होते, तो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था, तो मैडम जो है बलबी मैम, वो एक नाटक का मंचन कर रही थी, निर्देशन कर रही थी उसका। नोबडी वॉट्स इंटरेस्टेड बेसिकली, तो वो उनको पकड़ पकड़े खींचना पड़ा। तो मेरी क्लास में आई, देखा ऐसे करके, अच्छा ए यू संजीव शर्मा कम आउट, क्या हो गया, आउट आउट। देखा बहुत सारे 10-12 लोग जो लाइन में खड़े हो गए, क्या चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, अच्छा लाइन बोल के दिखाओ। हमने एक लाइन बोली, अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, जो अच्छे लगे उनको रख लिया, बाकी को भेज दिया। हम एक नाटक कर रहे हैं बहू की विदा, उसमें ऐसे ऐसे दहेज के ऊपर कहानी है और तुम्हें लड़की का भाई बनना, तुम्हारी एक ही लाइन है। ओके मैडम, मरता क्या ना करता। रिहर्सल शुरू हुई सर, वो एक लाइन करते करते करते करते पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो मेन रोल था ना, जो एक बुजुर्ग है जो ससुर का करेक्टर कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। वो करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैडम बोली ससुर का रोल आप करोगे। मैंने कहा मैडम मतलब ये क्या, ये हो नहीं सकता, तो मतलब मैं तो एक लाइन के लिए आया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, अब तो ये तुम ही करोगे। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, आई डोंट नो सर। वो 8th क्लास में मैंने एक बुजुर्ग का करेक्टर किया जो दहेज का लालची होता है, पूरे बाल वाल सफेद करके, मूछ वूछ लगा के, सब अरेंजमेंट करके, और बहुत प्रशंसा मिली सर। डर भी बहुत लगा, पैर कांपते थे, लेकिन वो मैडम का चेहरा देखते बिल्कुल नहीं भाई, मैडम यहाँ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट वो आपका ही प्यार था जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपकी गाइडेंस थी। वो बहुत अच्छा लगा सर, सबको बहुत अप्रिसिएशन मिला, मार्क्स भी अच्छे मिले। उसके बाद 3-4 साल तक, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th तक कोई वो नहीं था, लेकिन मन में था कि नहीं यार, जब फिल्में देखने जाते थे कि तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, क्योंकि मैं अलग बैठता था, मैं आज भी सर जब मैं फिल्म देखनी होती मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं अकेला बैठता हूँ, बहुत गौर से फिल्म देखता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे पंडित जी तुम तो सोच रहे होंगे कि अगर मैं होता तो कैसे करता। मैं एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे कर रहा हूँ।
0: क्या बात।
1: तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो चीज़ें हो गई, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मतलब शादी हो गई, फिर क्या हो गया,
0: तो सब अच्छा हुआ ना,
1: सब अच्छा ही हुआ। वो नहीं होता सर आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
0: हाँ ये बात सही है।
1: उन सबके प्रेरणा से, उन सबके सपोर्ट से एक दिन मौका मिला मुंबई आने का। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे तैयार किया इसके लिए, एक साल पहले तैयारी कराई, मतलब मेरा वेट लॉस, मेरा लुक वगैरह सब, एवरीथिंग चेंज, मेरा फोटोशूट वगैरह। तो फिर मैंने एक कदम रखा सर, पूरे हिम्मत जुटा के, मैं छुट्टियों में आता था, आई वाज डूइंग जॉब बेसिकली, छुट्टियों में मैं आता था, ऑडिशन देता था, लुक टेस्ट देता था। पहला जो मुझे सीरियल मिला उसका नाम था 2 हंसों का जोड़ा, और बेसिकली दैट वाज अ कैमियो करेक्टर। तो जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था कि कैमियो क्या होता है या मेन रोल क्या होता है या ये, तो ये तो अब पता लगा है। तो मेरे को जब प्रोडक्शन से कॉल आया, राजश्री प्रोडक्शन का वो पहला सीरियल था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले संजीव जी आप कैमियो करते हैं क्या? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले मतलब ये कुछ दिनों का काम होता है और एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। मैंने कहा टीवी पे आएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल। मैं कहा तो ठीक है मैं करूंगा। तो इसने समझ नहीं थी कि मतलब क्या होता है, ठीक है एक बार आना दिखना है क्या होता है। वो 2-3 दिन का काम था शायद, वो हफ्ते भर पूरा चला, वो पूरा सिक्वेंस था। एक जो डांस कॉम्पिटिशन का जज होता है, जो विलेन होता है, वो मैंने करेक्टर किया, वो हफ्ते भर चला सर, बड़ा अच्छा लगा करके, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, पैसे भी मिले। फिर उसके बाद एक और ऑडिशन मैंने देने गया तो विक्रम भट जी की फिल्म थी हॉन्टेड करके, तो बहुत छोटा करेक्टर मतलब ठीक है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात क्या थी सर, मेरे लिए करेक्टर से मायने नहीं था, मेरा था कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ जिनको मैं देखता था कि यार ये लोग टीवी पे आते हैं या ये लोग ये काम करते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ विविध भारती में और मैं आप सब लोगों को सुनता हूँ, पहले भी और लोगों को सुनता था, तो मैं ये सोचता यार ये लोग कैसे काम करते, तो आज मुझे पता लग रहा है कि ऐसे काम होता है, तो वही फीलिंग मेरे लिए तब थी। आप डायरेक्टर के सामने बैठे हो, आप एक्टर्स के सामने बैठे हो, वो चीज़ कैसे हो रही है, शॉट कैसे ले रहे हैं, डायलॉग कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें ना मेरे लिए वो लर्निंग पीरियड था। जब मैं पैसे या मेरे लिए करेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो बस मैं वापस जाता जॉब करता, जब छुट्टी मिलती तो मेरी टिकट ऑलरेडी बुक रहती, मेरी फैमिली कहती थी कि यार अब छुट्टियों का टाइम आया हुआ है, अब तुम बॉम्बे चले जाओगे, ये भी एक फेज था। फिर धीरे धीरे करते करते मैं शिफ्टेड टू मुंबई और उसके बाद फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी, वो जब आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊंगा फिर।
0: हाँ मैं पूछूंगा जरूर आपसे लेकिन अभी रोक दूंगा अपनी बात को।
1: जी जी,
0: क्योंकि मैं गाना पूछूंगा आपसे।
1: गाना सर एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तेरे मेरे सपने, वो एक फैमिली की जो एक ड्रीम होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं वो एक सपने बुनते हैं, उस पर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो एक ही रंग हो जाता है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, सबका लक्ष्य ये है कि हम उस सपने को पूरा कर लें, तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं एक्टर संजीव शर्मा जी से। संजीव जी अपनी बातें बता रहे हैं, बड़े ही प्यार के साथ बता रहे हैं, और उसी प्यार को आगे लिए चलते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: संजीव जी, फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये रोल मेरा जो है पहला रोल, मैं इसको मान सकता हूँ जिसमें आपने थोड़ा बड़ा किरदार निभाया हो, ऐसा कोई धारावाहिक?
1: सर, मेरे चार ऐसे सीरियल हैं जिनको मानता हूँ कि वो एक मार्क है मेरी लाइफ के लिए अभी तक। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो चारों सीरियल हैं मुझे सेम प्रोडक्शन ने दिए।
0: अच्छा,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ सिद्धार्थ तिवारी सर का, अमोल जी का, राहुल तिवारी सर का, ये जिनके प्रोडक्शन ने मुझे चार बड़े सीरियल दिए सर। बाकी उससे पहले मैं काम कर ही रहा था, लेकिन वही 3 मंथ 6 मंथ्स मतलब ठीक है, लेकिन वो जो सीरियल हुआ जैसे राधा कृष्णा, बहुत फेमस सीरियल था सर स्टार भारत का, तो उसमें मेरा करेक्टर था अकरू जी, बेसिकली कंस के सेनापति होते हैं।
0: अच्छा,
1: और विलन साइड में हम दो ही लोग थे, कंस और अक्रूर।
0: अच्छा,
1: और दूसरी साइड पे भगवान कृष्ण, बलराम जी एंड सो ऑन। ये भी मुझे एक्सीडेंटली मिला, मतलब पहले कोई और कलाकार कास्ट हो गए थे, फिर कुछ हुआ, फिर मेरी एंट्री हुई उसमें दोबारा थे, बट मैं बहुत विलिंग था उसको रोल को करने के लिए,
0: क्योंकि वो नेगेटिव रोल नहीं लगा आपको?
1: नहीं सर, वो नेगेटिव नहीं था एक्चुअली, मुझे लगता तो नाम सोचेंगे अक्रूर तो जेट क्रूर एंड अक्रूर,
0: हाँ
1: क्रूर नहीं है,
0: क्रूर नहीं है।
1: हाँ, ये मुझे लगा कि
0: अक्रूर है वो।
1: वो अक्रूर है।
0: अच्छा अच्छा
1: अक्रूर जी महाराज जी का मंदिर भी है राजस्थान, उनका कई जगह वर्णन आता है, तो मुझे लगा ये नेगेटिव करेक्टर है, लेकिन शुरू में क्या होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, बट वो इस जो राज सिंहासन है
0: जी जी
1: जिसपे कंस बैठे हुए हैं, उससे पहले उनके पिताजी बैठते थे, तो वो क्योंकि कृष्ण के नाना है और वो कृष्ण के मामा है, तो वो जो राज सिंहासन के प्रति जो मेरी आस्था है मैं उसको निभा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपका राजा कई बार गलत होता है, आप समझाने का प्रयास करते हैं जो आपका जो बॉस होता है, ऐसे मत करो प्लीज, लेकिन आप उसे बंधे हुए उससे, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि ठीक है मैं अब अपनी ड्यूटी करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो अक्रूर जो करेक्टर है वो उस सिंहासन से बंधा हुआ है, वो जो मथुरा का जो सिंहासन है वो उसके प्रति उनकी आस्था है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेटर ऑन जब सब चीजें विफल हो जाती हैं, कंस पूरा प्रयास करता है कि भगवान कृष्ण को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो लेटर ऑन फिर सब दानव खत्म हो जाते हैं, सब असुर खत्म हो जाते हैं, तो अंत में अक्रूर ही बचते हैं।
0: अच्छा,
1: तो कंस उनसे बोलते हैं कि नाउ अब सब तो चले गए भाई, सबको कृष्ण ने खत्म कर दिया, अब दिस इज योर ड्यूटी, अब आप जाओगे और उन दोनों भाइयों को बंदी बना के लेके आओगे। अक्रूर कहते ओके नो प्रॉब्लम यार, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप महाराज हैं। तो वो जब जाते हैं सर वहां पे मिलने, तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे बच्चे हैं, कहते यार इतने बड़े छोटे बच्चे और ये तो इंसानियत ही नहीं है। तो वो फिर भी प्रार्थना करते कि भैया आपको एक वहां पे दंगल टाइप है, द्वंद्व युद्ध है वहां पे, तो महाराज कंस ने आपको इनवाइट किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है चल तो चलते हैं, उनका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो बोला कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मतलब मैं आपको ये बता दूं कि वो बेसिकली आपको मारने की तैयारी कर रहा है, ये करता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। फिर वहां पर जो है भगवान कृष्ण को अपने विराट रूप दर्शन देते हैं कि मैं ये हूं, तो वहां पर अक्रूर की भावनाएं बदल जाती हैं, उससे पहले वैसे शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इतने चमत्कार हो रहे हैं, तो कोई ना कोई शक्ति तो है, तो वो फिर कृष्ण में हो जाते हैं। तो फिर वो उनको क्रूर वॉज द रीजन कंस को मारने के, जो भगवान कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं और वहां पे फिर द्वंद्व युद्ध होता है, तो वहां पे कंस को मार दिया जाता है। तो ये एक करेक्टर जो मुझे बताया गया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया।
0: कैसा प्रतिसाद मिला उस करेक्टर का आपको?
1: बहुत सर, बहुत, मतलब मुझे इतना फेम मिला कि जो अक्रूर के जो वंशज हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया, मुझसे बात करते थे, मैं बहुत बड़ी बात थी।
0: हमारे श्रोताओं के लिए भी ये जो कथा है ये अनसुनी है। और इसके अलावा भी जो दूसरे तीन और हैं, चार थे,
1: एक रामसिया के लवकुश जो कलर्स पे था, उसे मैंने लॉर्ड वाल्मीकि का करेक्टर किया
0: जी,
1: तो दैट वाज अ पैरेलल लीड करेक्टर। सीरियल की कहानी है कि जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर वाल्मीकि जी उनको आश्रम में ले जाते हैं, और वहीं पर ये लवकुश का जन्म होता है, तो इस कहानी वहां से स्टार्ट होती है। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल करेक्टर, वंडरफुल करेक्टर, एवरीथिंग वाज गुड। मतलब उसमें सर मुझे इतना, आई डोंट नो अपने देश में तो मुझे पता नहीं लोगों ने बहुत अप्रोच किया, लेकिन मुझे इंडोनेशिया से, मुझे बाली से, जहां पर हिंदुज्म है जहां पर, वहां लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरे बहुत पोस्टर बना के भेजते थे। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे जो है मेरे वो पीछे सॉन्ग लगा के उसको एक रील बना के मुझे भेजते थे, तो दैट वाज अ स्पेशल फीलिंग फॉर मी।
0: तो आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि जब आप इस तरह किरदारों के बीच में रहते हैं, उन्हें निभाते हैं, इस तरह के सेट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो डायलॉग्स संवाद जो हैं वो भी उसी तरह के होते हैं, आपका माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय होता है,
1: बिल्कुल सर,
0: तो एक तरह से तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसा कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ये भाव बढ़ता हुआ आपके जो एक्टिंग का जो कैरियर है उसमें कुछ बाधा तो नहीं बनता, क्योंकि आप उस रूप में ही दिखते हैं, तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है, एक अभिनेता भी आप हैं और आप अलग अलग किरदार करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, जैसे कि अभी आने वाले सीरियल की बात हम करेंगे उसमें भी आपने किया है, तो ये जो छवि है जो आपके साथ में रहती है, भक्तिपूर्ण छवि, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाती?
1: देखिए सर, काम तो कभी आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। आपका जो काम है, जैसे आप शिद्दत से करते हैं, काम आपको चुनता है, आप काम को नहीं चुनते
0: हम
1: हैं।
0: नहीं चुनते।
1: करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है। अगर आप बहुत सारी स्टोरीज बॉलीवुड की उठा के देखें कि पहले कोई करेक्टर कोई और करने वाला था, लेकिन कोई और कर रहा होता
0: बिल्कुल
1: है। जैसे आप गब्बर का अगर एग्जाम्पल
0: जी
1: लें,
0: जी
1: गब्बर वॉज द बिगेस्ट करेक्टर ऑफ द बॉलीवुड, उसको पहले कई लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर वो अमजद साहब के हिस्से में आया, तो वो उनके लिए लिखा हुआ था। सेम एज ए जंजीर है, बहुत सारी फिल्में आप उठा के देखिए कि पहले किसी और को सुनाई गई थी लेकिन फिर किसी और ने किया। तो एक्चुअली रोल आपको, करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है, और आपको जो मिलता है आप उसे करना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं द गुड साइन फ्रॉम द गॉड कि भाई ये आप ही के लिए है और आप ही करोगे।
0: इसके लिए खास बात यह है कि उस प्रक्रिया में बने रहना
1: बने
0: पड़ता है
1: रहना
0: और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, काम के प्रति, और उस काम की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए,
1: कुछ नहीं,
0: इसलिए आपको ये अलग अलग जो किरदार हैं ये मिलते हैं।
1: क्योंकि काम ही आपको ढूंढता रहता है।
0: ये बात तो है, और कुछ गीत भी हैं जो कभी आपको ढूंढते हैं कभी आप गीतों को ढूंढते हैं, तो ढूंढिए कोई अच्छा गीत।
1: इट इज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। क्या यही

0: एक बार फिर स्वागत करते हैं संजीव शर्मा जी आपका। बहुत अच्छी जो है लाइंस आपने बड़े ही सुर में गाई अभी थोड़ी देर पहले, और फिर गीत भी हमने सुनवाया। क्या यही प्यार है? प्यार तो है। अच्छा ये बताइए, जो जीवन का व्यक्तिगत प्यार जो होता है, परिवार का आपने इस दरमियान बहुत बार जिक्र भी किया है
1: जी,
0: अपनी
1: जी,
0: बातचीत
1: जी,
0: में कि आपको बहुत संभालते भी हैं और
1: जी, जी,
0: उनका भी सहयोग रहता है, तो
1: बिल्कुल।
0: बताइए अपने प्यार जो है आपका, आपका जीवन जो है।
1: देखिए, निजी पत्नी से इश्क और अदाकारी, वंडरफुल फैमिली आई हैव। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, दे ऑल लव मी। और धर्म पत्नी तो उन्हीं की गाइडेंस है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा बेटा शौर्य द वंडरफुल का है। यही चाहिए होता सर जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी फैमिली हो जाए, मनचाह जीवन साथी मिले, और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप लगे हुए हों, और ईश्वर साधना, गुरु का आशीर्वाद, दोस्तों का प्यार, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ चाहिए होता। यही एक अच्छी जिंदगी जीने का मूल मंत्र है।
0: क्या बात है। तो जो आपके धर्म पत्नी है उनका नाम?
1: उनका नाम उषा शर्मा है, और वर्तमान में वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो स्कूल है मुंबई में, वहां पे वो कार्यरत हैं।
0: और बेटा क्या कर रहा है आपका?
1: सर मेरे बेटे ने अभी 12th पास की है, और वो अभी कॉलेजेस के सर्च कर रहा है, साइंस साइड उसने ली हुई है।
0: तो मम्मी तो उनके टीचर हैं, तो गाइडेंस तो मिल ही जाएगा
1: बिल्कुल
0: घर
1: सर,
0: से ही।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और इधर आपकी तरफ आने का कोई इरादा है? किन्हीं विधाओं से जुड़े हैं आपके बेटे?
1: नहीं सर, उनका यह है कि मैं रिसर्च में जाना है मुझे, साइंस में।
0: आप भी ऐसा कोई दबाव नहीं डालते?
1: नहीं, मैं दबाव में डालता हूँ। मेरा कहना है कि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है कि जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनसिक्योर टाइप रहता है जब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो समहाउ आपको एक बैकअप प्लान चाहिए। लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बैकअप आप रख के आइए। मतलब एटलीस्ट आपने एजुकेशन ऐसी की हो कि कल को बाई चांस, भगवान न करे, वैसे मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबको काम मिले, सबका मेहनत सफल हो, बाय चांस नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं अपने एजुकेशन के द्वारा। मैंने भी अच्छी एक एजुकेशन ली हुई है, लेकिन आप ये बैकअप तो रहेगा ना कि हाँ यार ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं कोई जॉब तो कर लूंगा या मैं कोई बिजनेस तो चला लूंगा।
0: अच्छा, ये इतने सारे धारावाहिक किए हैं आपने, उसके बाद आपकी कोई इनसे इच्छा थी कि किस तरह का किरदार आपको निभाना है, कौन सी फिल्म आपको करनी है, किस तरह की फिल्म आपको करनी है?
1: सर
0: ऐसा
1: आप यकीन मानेंगे, जब मैं शुरू में आया था तो जो भी मुझे देखता था ना, वो ये कहता था यार यू आर वेरी नेगेटिव आईज, नेगेटिव फेस, यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ आईज, अलग ही लुक है आपका एक। मतलब शायद इसलिए कई बार मुझे एड मेरे हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये आंखें नेगेटिव नहीं, अगर ये आंखें नेगेटिव होती या मेरा फेस नेगेटिव होता तो मैंने जो इतने बड़े बड़े सीरियल किए हैं ये मुझे कैसे मिलते। तो आई वॉज सरप्राइज कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ तिवारी, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ विजन ही हैज, नहीं नहीं यार ये करेक्टर तो आप ही करोगे। और सच मानिए उनकी सोच इतनी आगे है कि जो भी मैंने करेक्टर किया, जैसे मैंने हिमवान अभी किया था, इट वाज अ ब्यूटीफुल करेक्टर। सर मैं इतना रोया हूं ना उस सीरियल में, इतना रोया हूं क्योंकि मैं एक बेटी
0: हिमवान आपने
1: शिव शक्ति में मैंने किया, जिसे पार्वती दोबारा जन्म लेती हैं सती बनने के बाद। तो मेरी दो बेटियां गंगा और पार्वती, इतने आंसू बहाए ना मैंने उसमें, क्योंकि एक तो मेरे को बेटी नहीं है, मेरे एक बेटा है, तो इतने आंसू मैंने बहाए ना सर उसमें। मतलब वो जो फीलिंग थी एक डॉटर्स की, तो वो शायद उसने कहीं ना कहीं हेल्प की उस चीज को समझने में। मैं कहता सर पता नहीं आप कैसे मेरे को पॉजिटिव करेक्टर दे, तो मेरा मन करता है मैं नेगेटिव करेक्टर निभाऊं। पता नहीं उनका क्या विजन रहता है, बट जब जो भी वो करेक्टर देते हैं वो एक अलग ही लेवल पे जाता है।
0: लेकिन आपको भी लगता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर जो हैं अच्छे से निभा पाएंगे?
1: सर अब तो मैं सारे करेक्टर अच्छे से निभा सकता हूं। अब तो मुझे, क्योंकि जो आदमी सीरियल में रो सकता है सर वो कुछ भी कर सकता है। सबसे मुश्किल है रोना और किसी को हंसाना।
0: क्या बात
1: है ना, गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को रुला देना और किसी को हंसा देना ये सबसे मुश्किल काम है,
0: सबसे कठिन है।
1: और सबसे मुश्किल काम है आप फिर भी वो रुला सकते हैं, आप अपनी भावनाओं से किसी को इमोशनल कर सकते हैं,
0: कर सकते, किसी बात से कर सकते,
1: किसी बात कर सकते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी कि सामने वाला इमोशन हो जाए, या किसी को आप हंसा सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये हर एक किसी के बस की नहीं है। बाकी नेगेटिव ये वो तो सब कर लेंगे, लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा एक मन है नेगेटिव करेक्टर करूं, फिर ये है कि जो करूं अच्छा करूं।
0: नहीं वो तो आप करेंगे ही। अच्छा ये मिर्जापुर 3 जो है,
1: जी जी,
0: इसके बारे में बताइए कुछ, कैसा कैरेक्टर है
1: मिर्जापुर 3? सर एक्चुअली ये बाय चांस मेरे को मिली, किसी और चीज के लिए मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था उनकी कास्टिंग करने, तो उन्होंने मुझे बोला सर मिर्जापुर की हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें कैरेक्टर है ब्रिज करके, तो आप करेंगे? मैं कहा आई एम नॉट फिट इन दैट, मुझे लगता नहीं कि मैं, क्योंकि मेरा फेस वगैरह और मिर्जापुर की जो कैरेक्टराइजेशन है मुझे लगता है कि मैं उसे फिट बैठ पाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप एक बना के भेजिए। तो हमने कहा ठीक है चलो, हमने पढ़ा वड़ा। अब मेरे साथ गुड लक क्या है सर, जो मेरी फैमिली है ना पूरी, बेटा वाइफ, ये लोग बड़े बहुत बड़े क्रिटिक थे मेरे, तो ये लोग बताते हैं कि क्या अच्छा किया क्या अच्छा नहीं किया, तो ये लोग व्यूअर्स की तरह देखते हैं। सो मैंने बनाया सर भारी मन से कि नहीं ठीक है चलो कर लेते हैं, बनाया भेजा। कुछ दिन बाद उनका जवाब आया सर कि ये बहुत अच्छा है और हम आपको लॉक कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, ये भी सर दो दिन का करेक्टर है। मैं चल दो दिन कर लेते हैं, मिर्जापुर का एक नाम हो जाएगा। मैं सब सेट पे पहुंचा, सब चीज़ हो गई, मैं सब सेट पे पहुंचा। मैंने किसी से पूछा भाई डायरेक्टर साहब कौन से वाले हैं, तो दे वॉज अ चिल गाय, मतलब बाल बाल कोई हुए छोटे से, मतलब थोड़े बड़े क्यूट से बड़े प्यारे से, हिज नेम इज मिस्टर गुरमीत सिंह। बोले सर ये है डायरेक्टर, जो मेरे को मिलवाने ले गया तो बोले सर ये पूछे थे डायरेक्टर साहब कैसे हैं, गुरमीत जी बड़े स्टाइल से, बोले आई एम द डायरेक्टर। तो उन्होंने सर मुझे इतना कंफर्ट कर दिया ना, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के सामने खड़ा हूं और मुझे एक्ट करना है। उसमें जो गोलू का कैरेक्टर कर रही हूं, वो सब लोग मेरे सामने बैठे थे और मेरा पहला सीन था। मैं बहुत डर लग रहा था भाई, मिर्जापुर पहले दो सीजन हो चुके हैं, तीसरे सीजन में आप सक्सेसफुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो मैंने सर से पूछा, मैं क्या गुरमीत जी कैसे, बोले जैसे आप चाहो, जैसे आपको फील लगे, जो आपको करेक्टर में जम रहा हो आप वैसे करना, बाकी इधर उधर होगा तो मैं बता दूंगा। सर किया मैंने और उनके इस बात ने मुझे बड़ी हेल्प की। इवन अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गोलू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल कंफर्टेबल करा के। पहला सीन था सर मेरा, मेरी पहली एंट्री थी। और उसके बाद सर शॉट खत्म हुआ, मैं कहा ओके सर, गुमी सर कभी आगे कभी हो तो याद कीजिएगा। बोले आगे क्या मतलब, मैंने कहा मतलब इट वाज फॉर टू डेज ना। बोले नहीं नहीं आपको किसने बताया, यही सुना था। बोले नहीं नहीं भाई, तो उन्होंने अपने जो एसोसिएट है उनकी टीम में सौरभ, उनको बोला कि आप बाहर जाइए, इनको समझाइए भाई अभी तो लखनऊ जाना है, बनारस जाना है। तो मैंने कहा हाँ, वह सरप्राइज
0: है,
1: अरे
0: कंटिन्यूटी में है,
1: हाँ मतलब आपको किसने बोला दो दिन गए तो, ये तो बहुत काम है आगे। तो मैं एक डिफरेंट सोच में था, अरे यार ये कैसे हो गया। तो सौरभ मुझे बता रहे हैं कि संजीव जी चार पांच दिन लखनऊ में होगा, फिर बनारस में होगा, मुंबई में तो आपका हो गया है, तो स्टोरी ये है ऐसे। वो मुझे स्टोरी सुना रहा, मैं अपनी ही एक कल्पना में हो गया, अच्छा अरे यार भैया तो बढ़िया होगा, अच्छा हो जाए तो बनारस में लखनऊ में आता, ये तो गुड करेक्टर बनाना लिमकाना। तो फिर मैंने बोला उनको सौरभ, मैंने कहा प्लीज मैं ना पार्ट टू देख लूंगा भाई, दिस इज द बेस्ट आइडिया, आप ना पार्ट टू देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्टर कहाँ से उठा क्या करा है। और मैं वैनिटी में आके मतलब यार तो मजे आ गए, तो ये
0: काम करने में मजा आया।
1: हाँ मतलब फिर लगा यार इज अ कैरेक्टर बेसिकली, और कैरेक्टर का नाम इज अ ब्रिज बेसिकली, जो गुड्डू पंडित का सपोर्टर है, इज अ बाहुबली है, और वो हमेशा मीटिंग्स में अरेंज करता है उनकी, और बहुत अच्छे डायलॉग्स मुझे दिए गए इसमें। और वैसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सब जैसे हैं वैसे ही आए तो मजा आ जाएगा। लुक बहुत अच्छा दिया गया है, इज अ गुड कैरेक्टर, 3 एपिसोड में मेरा काम है उसमें, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे वाली सीरीज में भी, शायद गुरमीत जी ने चाहा तो आगे भी काम बनेगा,
0: बिल्कुल बनेगा। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं
1: जी, जी, जी।
0: और आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपकी पसंद का गीत।
1: देयर वाज अ सॉन्ग जो सिचुएशन पे है कि ये हौसला कैसे रुके, द फिल्म डोर, बहुत टचिंग सॉन्ग मुझे लगता है कि चाहे राहों में कितने कांटे हों, कितनी चीज आपको रोक ले, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिख दिया ना, आप वहां पहुंचोगे जरूर, बट आपको हौसला नहीं हारना है, आपको गिव अप नहीं करना है।
0: ये बात जीवन में जो है मायने रखती है,
1: ये मेरे अकेले के साथ नहीं, सभी के साथ होता है, लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। तो जैसे मेरी फैमिली कहती है, मेरी वाइफ कहती है कि सोच ऐसे बनाओ कि यस आई एम डूइंग,
0: करना है कि ये कर रहा हूं,
1: डूइंग, और ये मैं कर रहा हूं और ये मैं करूंगा और ये ऐसा होगा, कि मन को अपलिफ्ट करती है
0: बिल्कुल।
1: तो ये हौसला कैसे रुके,

0: मिर्ज़ापुर में अच्छा काम लगा सर, अच्छा एक्सपीरियंस था करने का, और बहुत अच्छे से शूट भी हुआ। आई होप कि आगे भी अच्छे अच्छा काम मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल मिलेगा। और फिल्मों के बारे में भी कुछ बताइए, आपने कुछ छोटे बड़े किरदार
0: जी,
1: किए हैं, कौन कौन सी फिल्में रही हैं वो?
0: फिल्मों का सर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है मुंबई का, जो पहला प्यार होता है वो होता है फिल्में। हर आदमी यहाँ एक्टिंग मतलब फिल्में ही करने आता है। हाँ, मतलब शुरू से एंड तक फिल्में ही रही है ना। उसके बाद ये फिर टीवी आया, फिर सीरियल्स आए, नाउ इज टाइम ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल। हर आदमी का एक चाह होती है दिल की कि मैं फिल्म जरूर करूं, क्योंकि फिल्में ताउम्र तक याद रखी जाती हैं। सो मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैं भी फिल्में करने आया था। तो फिल्म की सर पहली फिल्म थी हॉन्टेड, बहुत छोटा करेक्टर था, आया और गया पता ही नहीं लगा। खैर एनी वे, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, विक्रम भट्टी की फिल्म थी, बड़ा सीखने को मिला उसमें। फिर मैंने सर फिल्म की एक पद्मावत, पद्मावत में आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कि बहुत ज्यादा करेक्टर बचा नहीं उसमें। लेकिन एक्सपीरियंस ये था सर कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, उनके साथ खड़े रहना, उनको देखना, उनके काम का तरीका, उनके सेट्स, उनकी ज्वेलरीज और वेशभूषा और जो म्यूजिक, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। एंड स्टैंडिंग विद दीपिका एंड शाहिद कपूर, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। और मेरा ट्रांसजेंडर का उसमें करेक्टर था जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा। 1 वीक मेरा काम चला उसमें, और नाम उसमें हजूरिया करके एक करेक्टर मुझे दिया था उन्होंने। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद सच अ लीजेंड पर्सन, उनको देख के काम कर। तो उसके बाद मुझे किसी के साथ काम करने में डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े मास्टर के साथ काम कर चुका था, चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन मुझे फिर उसका किसी के सामने डर नहीं लगता था। नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। फिर मैंने एक फिल्म की सर, वो भी एक्सीडेंटली मुझे मिली, उसका नाम था गुड न्यूज, अक्षय कुमार जी और दलजीत दोसांझ जी का। एक के लिए ऑडिशन दिया था, एकदम से कॉल आया कि आप फ्री हो क्या, शाम को यशराज जाना है। तो मैं पहुंच गया वहां पे, मेरा एक मॉक टेस्ट हुआ, बोले ठीक है कल से शूट है आपका, आप आइए। मैं पहुंचा सर, एक सीन है उसमें अक्षय पाजी और दलजीत जी का, एक फाइट सीन है रेस्टोरेंट में। आई प्लेड द मैनेजर, किया सर मैंने वो फर्स्ट डे अक्षय कुमार जी, मैं तो उन्हें देखते रहेगा क्योंकि मैंने कभी अक्षय कुमार जी को देखा ही नहीं था। ही सेड के आओ भाजी, अच्छा लगा ना। मैं कहा सर मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब मैं अक्षय पाजी के सामने खड़ा हूँ। तो एनी आओ, रिहर्सल वगैरह हुई, उनका मजाक के अंदाज है जो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा अलग सा लगा। मैं कहा यार मेरा मतलब हंसी उड़ा दी, मैं कहा कल पता नहीं कैसे शूट होगा, मुझे पता था उनका बिंदास अंदाज है। तो मैं घर गया, मैं सुबह जब रेडी हो रहा था आने के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं कहा यार वो कल पाजी ने ना थोड़ा ज्यादा ही मतलब मुझे लगा कि मेरा मजाक से उड़ाया। शी सेड के ठीक है, अगर इतना ही ईगो है तो फिर घर बैठ जाओ, डोंट गो फॉर शूट, अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। मैं कहा ठीक है जो होगा करेंगे। गया मैं सर, नेक्स्ट डे अक्षय सर का जो बिहेवियर था ना वो एकदम अलग ही था। हाँ भाजी क्या हाल है, और आओ शूट करते हैं, सब क्लियर है ना। मैं हाँ जी क्लियर है। तो वो जो उनका अंदाज था ना, वो मुझे लगा नहीं यार वो एक कंफर्ट देने का एक उनका एक तरीका है
1: तरीका
0: जो उन्होंने किया मुझे रिहर्सल के दौरान। और मुझे वियर्ड जरूर लगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसका इंपैक्ट आया ना सर, सब मजाक है बिंदास एकदम काम करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से काम करो। और सर वो सीन मैंने किया, बड़ा अच्छा सीन था वो। मैं जब सिनेमा में देखने गया उसमें, तो लोग उस पर हंसे उस सीन पे, तो मुझे लगा नहीं यार आई रियली थैंक्स टू अक्षय कुमार सर के, अब उनके बिना ये सीन नहीं हो पाता। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने एक फिल्म की थैंक गॉड, तो उसमें भी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कुलप्रीत सिंह के बीच में करेक्टर है, लगा ही नहीं कि मैं मतलब कि इतने बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, कि मेरे लिए तो बहुत बड़े सर वो।
1: लेकिन आप भी तो टीवी के स्टार हैं,
0: बड़े कलाकारों में सर मैंने ये देखा है कि वो आपको इतना कंफर्ट देते हैं। एक्चुअल सबका मोटो क्या होता है कि चीज को अच्छी बनाना, वो किसी की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए, और किसी का पता नहीं कौन कब कहाँ पहुंच जाए।
1: आपके पास भी अनुभव काफी है, आप भी इन बातों को अनुसरण करेंगे हम सोचते हैं सर।
0: बिल्कुल सर, मैं आज भी करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ
1: और करते रहेंगे।
0: हाँ,
1: और अच्छा काम आपको मिलेगा, आपको पता है इस बात का यकीन आपको हमेशा रहता है।
0: बिल्कुल।
1: और बेहतर रूप में अलग अलग स्क्रीन्स पर, OTT का हो, टेलीविजन का हो या फिल्म का हो, हम आपको देख पाएंगे, उसमें आपके अच्छे काम की प्रशंसा कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आने वाले दिनों में जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन तमाम बातों में आपको सफलताएं मिले, ऐसी कामना भी करता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बेहतरीन बातें, बेहतरीन यादें जो हैं हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं, शेयर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक छोटी सी बात बोल दूं
1: जी, जरूर,
0: कि जितनी बातें आपने की हैं, मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारी बातें श्याम जी की सुन लें और उसे अप्लाई कर दें।
1: तो हम ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल एक बात आपकी और सुन लेते हैं, एक आपकी पसंद का गीत सुनते हैं, और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे।
0: जी सर, दंगल सॉन्ग के, माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी, दंगल दंगल, जिसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हारना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट यू हैव टू डू।

0: इसी के साथ आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। हम आपको तयशुदा कार्यक्रम नहीं सुनवा पाए, इस बात का हमें खेद है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आप हमें FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, शाम के 5 बज गए हैं और अब वक्त है आपके लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी का, जहाँ गूंजती है युवा मन की बात और युवा प्रतिभाओं की सौगात। तो शामिल हो जाइए हमारे इस सफर में।

0: नमस्कार दोस्तों, FM 102.5 MHz और NewZone AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपके साथ राजवीर सिंह चौहान।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी कौमुदी। राजवीर, तुम्हें पता है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे जीवन के कुछ विशेष पलों को किसी गीत के साथ जोड़कर रखा जा सके तो शायद हर गीत अपने आप में एक छोटी सी कहानी बन जाए।
0: बिल्कुल कौमुदी, कई बार कोई गीत सुनते हुए हम उस पल को भी याद कर रहे होते हैं जिससे वो गीत जुड़ा है। कोई पुरानी मुलाकात, कोई दोस्ती, या फिर अपने साथ बिताया हुआ थोड़ा सा अकेले वाला वक्त।
1: और शायद इसी वजह से किसी और की पसंद का गीत सुनना भी कई बार दिलचस्प होता है। हमें पता चलता है कि एक ही धुन किसी के लिए खुशी है, किसी के लिए याद और किसी के लिए सुकून।
0: सही कहा आपने, और आज की हमारी फरमाइशों में भी ऐसे ही अलग अलग एहसास शामिल होने वाले हैं। हमारे श्रोताओं ने अपने पसंदीदा गीत हम तक पहुंचाए हैं,
1: और अब उन गीतों को आप तक पहुंचाने की बारी हमारी है। तो आज की संगीत भरी मुलाकात में हम साथ लेकर चलेंगे आपके नाम, आपके शहर और आपकी पसंद के गीत।
0: तो आइए देखते हैं आज की फरमाइशों में कौन से गीत हमारी इस महफिल का हिस्सा बनते हैं।
1: बिल्कुल राजवीर, तो बिना देरी के सुनते हैं कि आज की पहली पसंद और उसके साथ जुड़े खूबसूरत गीत।
0: तो दोस्तों, इस गीत की फरमाइश हमें मिली है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू की ओर से। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है जोकी हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम, मोहम्मद जाहिद आलम, मोहम्मद वाहिद परवेज, अब्दुल वाजिद, अब्दुल अजीज, बेगम खालिदा जिया, बीबी गजाला प्रवीण, शबाना प्रवीण एवं अनोखा प्रवीण। साथ ही इस गीत की फरमाइश है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, वीरेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल, बेबी वैदेही, बेबी अंशिका, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, रियांश वाक्तरिया और प्रतीक वाक्तरिया।
1: गोंद्रू रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता। जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, चंद्रपाल मरावी।
0: गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष परमार, दिलीप परमार। फरमाइशकर्ता रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लोरमी छत्तीसगढ़ से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम।
1: साथ ही छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे। और इसी के साथ पेश है आपके लिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सुना फिल्म सिंग इज किंग से ये गीत, राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में। संगीत था प्रीतम का और बोल थे मयूर पुरी के।
1: दोस्तों, संगीत की इस खूबसूरत यात्रा में आपकी पसंद का सिलसिला लगातार जारी है। हर फरमाइश के साथ हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं नए श्रोता, तो चलिए अब कुछ और नामों और शहरों का जिक्र करते हैं। अगली फरमाइश आई है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, शिवाजी चौक कटनी से, अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रज्जन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और सौम्या। सफ़ेदो सिटी हरियाणा से, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और समस्त खन्ना परिवार। मुंडा टोला डोंगिल लोहारा से, डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश, माहिर नेताम। कवर कॉलोनी बड़वाह से, प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली।
0: ग्राम पिड़पा पोस्ट कलानी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से, राजाराम अहिरवार, कौशल्या देवी अहिरवार, मोहनी अहिरवार, शिवा अहिरवार। देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल रजक, मुरली क्षत्रिय। परभणी महाराष्ट्र से दत्ता भाऊ जगाड़े, रेवती जगाड़े, राघव, गोरी, सुमित्रा। कोल सिटी बरका काना से, अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। पहाड़गंज मुल्तानी से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। तो पेश है आपकी फरमाइश पे अगला गीत।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

0: अभी आपने सुना फिल्म सिम्बा से राहत फतेह अली खान, अजीज कौर और तनिष्क बागची की आवाज़ में ये गीत, बोल थे रश्मि विराग के और संगीत तनिष्क बागची का। राजवीर, हर फरमाइश अपने साथ एक अलग रंग लेकर आती है ना?
1: बिल्कुल कौमुदी, और हमारे श्रोताओं द्वारा भेजे गए और भी नाम और उनकी पसंद गीत हम तक पहुँच चुके हैं, तो चलो अब अगली फरमाइश का जिक्र करते हैं।
0: दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी।
1: बरगी डैम कॉलोनी जबलपुर से समर्थ रजक, रौनक रजक, सीमा रजक और संतोष रजक। इसी के साथ इस गीत की फरमाइश की है कस्बा उदेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, हरविंद यादव और रागिनी रिया रेणु एवं रोनिका यादव। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा।
0: ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से इस गीत की फरमाइश आई है सकावत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन मंसूरी, तौफीक मंसूरी, मोहम्मद नवी मंसूरी, सकुर अहमद मंसूरी, सुनील रस्तोगी और विकास श्रीवास्तव। जिला औररिया उत्तर प्रदेश से अमानतुल्ला खान, हिना खान, मजहर उल्ला खान, अनवर खान, असलम खान और तारिक मिस्त्री। गांव नंगरखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, परवीन शर्मा, राहुल शर्मा और मनीष शर्मा। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। और दोस्तों, अब इन नामों के साथ सुनते हैं एक और सुरीली पेशकश।

0: अभी आपने सुना उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अजय अतुल के संगीत के साथ फिल्म सुपर 30 से ये गीत बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के।
1: साथ ही अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है श्रीगंगानगर राजस्थान से नेकी राम बंसीवाल, बन बघेरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशीष सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा, ख्याति शारवा। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है डोंडी लोहारा जिला बालोद से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, राधिका, मास्टर अल कबीर। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है गुंजाला बीड महाराष्ट्र से नारायण देव, सुनंदा, महेश, निर्मला भगवान। साथ ही इस गीत की फरमाइश हमें की मिली है छत्तीसगढ़ कोडवा साजा से रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एचडी गुप्ता, रामेश्वर नगर भनपुरी रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता, शशांक गुप्ता। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा। सादुल शहर राजस्थान से राम कुंवर रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, गांव टोरोवा जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, बेबी वामिका एन वाणी।
0: पाकुड़ झारखंड से इस गीत को सुनना चाहते हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोरी गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। साथ ही रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगा राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता वर्मा, रेखा वर्मा और ऋषिका वर्मा। तो अब सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: आपने सुना फिल्म द स्काई इज पिंक से ये मधुर गीत, जिसे संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने, बोल थे गुलजार के और आवाज़ अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा और निखिल डिसूजा की।
1: दोस्तों, इसी के साथ अगली फरमाइश हमें मिली है चनोरा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, बनवारी लाल कुशवाहा, मंजू लता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, ग्राम उड़नताल दगोरी जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से श्यामा प्रसाद गायकवाड़ एवं समीर गायकवाड़, गांधीनगर महेश्वर से श्याम यादव और सोना यादव।
0: गांव मीरावाला से इस गीत की फरमाइश करी है अमरपाल अवाना ने, अनुज अवाना, शुभम अवाना, शिवम, गुड्डू कालू प्रधान, जिला बधायू ग्राम गनगोला उत्तर प्रदेश से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान, बिलईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, बक्सेना दातागंज बधायू से विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना, नीरज, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। अब एक और खूबसूरत पसंद के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म बर्फी से निखिल जॉर्ज की आवाज़ में ये गीत, संगीत था प्रीतम का और बोल थे आशीष पंडित के। कौमुदी, हमारी पसंदों की सूची तो लगातार लंबी होती जा रही है।
1: हाँ राजवीर, और अगली पसंद लेकर हमारे साथ जुड़े हैं
0: ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। साथ ही इस गीत की फरमाइश है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी बघेल, साहिल, भारती बघेल। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है गांव लाहौड़ा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत ने, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप, करावल नगर दिल्ली से, रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी, मनूर खुर्द, तहसील बोदवड़, जिला जलगांव महाराष्ट्र से, जानकी राम काठो के, ज्योतिबाई काठो के, प्रशांत, शुभांगी, किशोर, राधिका, वेदिका, रिद्धि, सिद्धि। साथ ही इस गीत की फरमाइश है अंभई तहसील सिल्लोड़, जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री, यज्ञेश।
1: परभणी महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहते हैं रुपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई, प्रीतेश संगई। जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। साथ ही जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। इसी के साथ अब पेश है आपके लिए ये सुरीला गीत।
2: एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

0: अभी आपने सुना फिल्म मोहब्बतें से उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। संगीत था जतिन ललित का और बोल आनंद पक्षी के।
1: दोस्तों, शुरू का ये सफर अभी थमने वाला नहीं है, तो बिना देर किए देखते हैं हमारे अगले नाम और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। हमारी अगली फरमाइश है ग्राम पीपड़लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांश वर्मा की। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, दिलीप सिंह पवार। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। साथ ही इस गीत की फरमाइश है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कोसर, मोहम्मद साकीब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल, वनीता, मोहम्मद हसनैन पवार।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और समस्त पूजा परिवार। न्यू केशव नगर उदयपुर से कोमल भारद्वाज और शांतनु भारद्वाज। कुंडलवारी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। श्रोताओं, आइए अब लेते हैं हमारे अगले गीत का आनंद।

0: आपने सुना फिल्म मैं हूं ना से सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। संगीत था अनु मलिक का और बोल जावेद अख्तर के।
1: इसी के साथ अगली फरमाइश है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार। ग्राम सिरटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना गुरुवंश सिंह जोड़ा।
0: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से। ग्राम डोंगर गांव जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से बिंदु पाकवायर, सुबेश पाकराव और प्रणाली पाकराव। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नीश कुमार, प्रशांत, हेमंत जी प्रजापति। ग्राम कालापारा सुगरजा से रामचंद्र गुप्ता और राम राजवाड़े।
1: मुरादाबाद यूपी से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनिस खान, सोफिया खान। अररिया बिहार से सोमिया नजमीन, रुकैया आफरीन, रिहाना प्रवीण, माही आरजू। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू।
0: कवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु। ग्राम नागा कोहारा जिला छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा, हर्ष अहूजा।
1: तो पेश है आपकी फरमाइश पे अगला गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म वो लम्हे से केके की आवाज़ में ये गीत। संगीत था प्रीतम का और बोल थे नीलेश मिश्रा के। राजवीर आज की फरमाइशों का सिलसिला देखते ही देखते कितना लंबा हो गया ना। हर नाम के साथ एक नई पसंद और हर गीत के साथ एक नया एहसास मानो बस जुड़ता चला गया।
1: बिल्कुल, और आपकी पसंद से सजी इस महफिल में आज हमने कई खूबसूरत गीत सुने। उम्मीद है आपको भी इन गीतों का साथ अच्छा लगा होगा।
0: तो अब इसी सुरीले सिलसिले को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे आपकी नई फरमाइशों के साथ।
1: तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन और जुड़े रहिए हमारे साथ।
0: मैं कौमुदी
1: और मैं राजवीर
0: लेते हैं आपसे विदा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युववाणी। युवा शक्ति, युवा सोच और युवा अभिव्यक्ति के संगम से परिपूर्ण इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से FM 102.5 मेगाहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन सकते हैं। नमस्कार सभी श्रोताओं को, मैं हूं आपकी रेडियो सखी अदिति निगम और सभी का स्वागत है भजन संध्या कार्यक्रम में। श्रोताओं, भक्ति केवल पूजा का माध्यम नहीं बल्कि मन को शक्ति, सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति समर्पण से जोड़ने का सुंदर मार्ग है। श्रोताओं, गणेश आराधना के इन दिनों में भक्ति अपने चरम पर है। आइए, विघ्नहर्ता गणपति बुद्धि विवेक और मंगल के प्रतीक हैं, उनकी भक्ति से ओतप्रोत सुनते हैं एक मधुर भजन।

श्रोताओं, यह भक्ति की यात्रा ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को नमन किए बिना अधूरी सी है। माँ सरस्वती हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरे और हमारी वाणी और विचारों को पवित्र बनाए। इसी कामना के साथ आइए सुनते हैं सरस्वती स्तुति।

श्रोताओं, आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से आप सुन रहे हैं भजन संध्या कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं और प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं। राम नाम हमें सत्य, मर्यादा, करुणा और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते हुए भावपूर्ण भजन।

श्रोताओं, श्री राम का नाम जहाँ हो वहाँ पवन पुत्र हनुमान की भक्ति अपने आप जुड़ जाती है। हनुमान जी भक्ति सहात सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। उनका स्मरण मन में विश्वास और ऊर्जा का संचार करता है। तो आइए बजरंग बली के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं और सुनते हैं मधुर हनुमान भजन।

श्रोताओं, भजन संध्या में अब हम स्मरण करते हैं देवों के देव महादेव का। भगवान शिव सरलता, करुणा और कल्याण के प्रतीक हैं। शिव का ध्यान मन को स्थिरता देता है, जीवन में धैर्य का भाव जगाता है। भोले बाबा की भक्ति में मन को रमाते हैं और सुनते हैं भक्ति से ओतप्रोत शिव भजन।

श्रोताओं, अब वक्त है भजन संध्या के अंतिम भजन का। ईश्वर की भक्ति का सबसे सुंदर रूप है प्रेम, ऐसा प्रेम जो भेदभाव से परे हो, जो हर हृदय को जोड़े और जीवन में सद्भावना का प्रकाश फैलाए। इसी सुंदर भावना के साथ प्रस्तुत है एक और प्यारा सा भजन।

श्रोताओं, आज की भजन संध्या को देते हैं यही विराम। आप सभी से मैं अदिति निगम पुनः मिलूंगी, मगर अभी दीजिए मुझे अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 मेगा हर्ट्ज़, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी अदिति निगम। नमस्कार श्रोताओं, अब वक्त है फिल्म संगीत कार्यक्रम का। आज फिल्म संगीत में खास आप सुनेंगे हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत, सहज और सुंदर अभिनेत्री तनुजा के जीवन से जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें और उनकी फिल्मों का सफर। आइए सुनते हैं उनके जन्मदिन विशेष पर प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, अभिनेत्री तनुजा 23 सितंबर 1943 को मुंबई में जन्मी। तनुजा ऐसे फिल्मी परिवार से आती हैं जहां अभिनय की परंपरा पहले से मौजूद थी। उनकी मां प्रसिद्ध अभिनेत्री शोभा समर्थ और पिता कुमार सेन समर्थ थे, जबकि तनुजा की बड़ी बहन अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री नूतन थीं। श्रोताओं, आगे तनुजा के फिल्मी सफर के बारे में जानेंगे, मगर उससे पहले सुनेंगे एक प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, अभिनेत्री तनुजा के जन्मदिन पर आज हम फिल्म संगीत में उनकी फिल्मों के गाने सुन रहे हैं। अभिनेत्री तनुजा के फिल्मी सफर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में हुई। फिल्म हमारी बेटी से हुई और आगे चलकर उन्हें छबीली, हमारी याद आएगी, बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीव, जीने की राह, हाथी मेरे साथी, अनुभव और मेरे जीवन साथी जैसी फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के बीच एक खास पहचान दिलवाई। आगे और जानेंगे अभिनेत्री तनुजा के बारे में, मगर सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, अब बारी है उस गाने की जिसने अभिनेत्री तनुजा की चंचल और आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस को बेहद खूबसूरती से सामने रखा। फिल्म थी ज्वेल थीफ और गाना था रात अकेली है। एस टी वर्मन के संगीत और आशा भोसले की आवाज में ये गीत आज भी उस दौर की याद दिलाता है। ज्वेल थीफ में उनकी भूमिका को खास पहचान मिली। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना।

अभिनेत्री तनुजा और राजेश खन्ना की जोड़ी ने भी दर्शकों को कई खूबसूरत गीत दिए। 1972 की फिल्म मेरे जीवन साथी का संगीत आरडी वर्मन ने दिया था। इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा गीत जिसकी मिठास आज भी बरकरार है। किशोर कुमार की मधुर आवाज में आइए सुनते हैं एक सुपरहिट गाना।

श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अभिनेत्री तनुजा सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाली अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि अपनी सहजता, बेबाक अंदाज और अलग व्यक्तित्व के कारण उन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभिनेत्री तनुजा के जन्मदिन पर फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पर विराम देते हैं, मगर जाने से पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा अंतिम गीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के जन्मदिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे पुनः होगी मुलाकात। मैं आदित्य निगम लेती हूँ विदा। नमस्कार।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों की प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन IOC के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत के संदर्भ में की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का IOC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरोम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांग निंगतियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आदित्य निगम। FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आपको आज रात साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:10 पर। माटी री बात, मालवी समाचार, निमाड़ी लोकगीत 7:21 पर आप सुन सकेंगे। रात 8 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9 आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय। रात 10 आप सुनेंगे 20वां एडिशन ऑफ एशिया

श्रोताओं, अभी आपने सुनी आज रात तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब हम सुनेंगे कल दिन भर साथ ही रात तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 5:50 पर आप सुनेंगे संकेत धुन, 5:52 पर वंदे मातरम उद्घोष। सुबह 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर आप सुन सकेंगे वंदन वार, 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। सुबह 7:00 आप सुनेंगे महाकाल वंदन, कार्यक्रम विवरण आप सुन सकेंगे 7:05 पर, 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:20 पर आप सुनेंगे सुप्रभात उज्जैन, सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। आठ बजकर 30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, सुबह 9:00 आप सुनेंगे उज्जैनी आरजे, 9:30 पर आप सुन सकेंगे बॉलीवुड बीट्स, सुबह 10:00 आप सुनेंगे सिंहस्थ संवाद अमृत खड बरसे एपिसोड 13 आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति, सुबह 10:15 पर आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत सजीव फोन इन प्रोग्राम आकाशवाणी उज्जैन से। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 11:00, 12:00 आप सुनेंगे हिंदी न्यूज बुलेटिन, 12:05 पर आप सुन सकेंगे यादों की महफिल कार्यक्रम, दोपहर 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफर, दोपहर 2:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम, 2:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे, 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे फिल्मी गीत।

दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे सखी सहेली कार्यक्रम, दोपहर 4 बजे आप सुनेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम, शाम 5 बजे आप सुनेंगे युववाणी, शाम 6 बजे आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम, 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, दिल्ली से समाचार आप सुनेंगे शाम 7 बजे। अभी आपने सुनी आज रात साथ ही कल शाम तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। नमस्कार। श्रोताओं, अब आप जल्द ही प्रादेशिक समाचार सुनेंगे विविध भारती भोपाल केंद्र से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत योजना के 8 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 60 करोड़ लोगों को मिल रही है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। 25 सितंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री 351 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा मेरा योगदान अभियान 2 से 10 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होगा। अब समाचार विस्तार से। आयुष्मान भारत योजना के आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज मिल रही है, जो इसे

0: दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बनाती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने आयुष वेलनेस पर्यटन केंद्र का नया नाम आरोग्यम धाम जारी किया और स्वास्थ्य तथा आयुष क्षेत्र से जुड़ी कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की। इसी मौके पर खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में बना हर्बल गार्डन ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। प्रदेश में 25 सितंबर को भोपाल के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले चरण में 351 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड सहित 7 शहरों से शुरू होंगी। योजना के तहत प्रदेश में करीब 15,000 आधुनिक बसें चलाई जाएंगी, जिनसे रोजाना 30 लाख से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों से सीधे संवाद किया और कृषि क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। इस दौरान खेती में नए नवाचारों, वैज्ञानिक तकनीकों और उन्नत तौर तरीकों की जानकारी भी साझा की गई। राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे कृषक कल्याण वर्ष के तहत ये आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है। इसी क्रम में श्री अन्न योजना ने भी किसानों और आमजन के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। आइए जानते हैं ये योजना कैसे लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत अनूपपुर जिले में श्री अन्न मिलेट मोटा अनाज के व्यावसायिक उत्पादन को प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले कोदो और कुटकी मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में भी शामिल है। राज्य में इसकी खेती व विपणन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम समन्वयक शशांक सिंह ने बताया,
2: स्व सहायता समूहों द्वारा विभिन्न आजीविका गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उन्हीं में से एक है आजीविका कोदो प्रसंस्करण इकाई, जो कि यह इकाई 2023 में प्रारंभ हुई थी और निरंतर उसमें उत्पादन कार्य चल रहा है। एक जिला एक उत्पाद के रूप में भी यह हमारा कोदो चिन्हित है। हमारा प्रयास है कि हमारे समूह की दीदियां इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहें और उनके लिए आय के अतिरिक्त स्रोत सृजित होते रहें।
1: प्रमला सिंह गणेश स्व सहायता समूह धरकला ने बताया,
3: इकाई में 6 से 8 दीदियां काम करती हैं। तैयार कोदो को हम पैक करके अनूपपुर, शहडोल, भोपाल, लोकल बाजार, हाट आदि में विक्रय करते हैं। साथ ही हम कोदो बिस्किट के लिए इकाई को कोदो विक्रय करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
0: प्रदेश में सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन शुरू किया है। अब तक 13,508 किसान अपना पंजीयन करा चुके हैं। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है। इसके लिए प्रदेश में 1100 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति और लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए सतत और सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने कहा है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम संस्थाएं ही लोकार्पण के लिए तैयार हो पाई हैं, इसलिए विलंब के कारणों की समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का नया प्रदेश प्रभारी और रेखा वर्मा को सह प्रभारी बनाया है। विप्लव देव अब तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे डॉ. महेंद्र सिंह का स्थान लेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज ये नई सूची जारी की, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा ने ब्रजगोपाल लोया को नया प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है, जो पूर्व मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का स्थान लेंगे। भारत को एशियन गेम्स में 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में पदक मिला है। ये पदक मीराबाई चानू ने दिलाया है। मीराबाई महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया। इससे पहले 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। एशियन गेम्स के चौथे दिन दो पदक शॉटगन शूटिंग के स्किट टीम स्पर्धा में भी आए हैं। पुरुष टीम ने शूट ऑफ में कजाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। एक पदक सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने दिलाया। और अब बात मौसम की। प्रदेश के 26 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई, जिसमें शहडोल के गोहपारू में सबसे ज्यादा 2 इंच पानी गिरा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के असर से 26 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। विभाग ने आज के लिए छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल इंदौर उज्जैन सहित कई अन्य जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज समन्वित कृषि विकास कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन किया गया। खंडवा में सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत एनएसएस और रेडक्रॉस के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। शिवपुरी जिले के फतेहपुर स्थित CWSN छात्रावास में आज विश्व साइन लैंग्वेज डे मनाया गया। धार में आगामी त्योहारों के तहत जिला मुख्यालय पर शांति समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सागर में 115वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक आज बैंक कलेक्टर और बैंक प्रशासक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुरैना कलेक्टर ने टीएल बैठक में जन विश्वास अभियान और जन संवाद में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। अनूपपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विकसित भारत की संकल्पना विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही जनसेवा संकल्प यात्रा ने आज आगरमालवा जिले के ग्राम बरगड़ी से जिले में प्रवेश किया, जहां यात्रा का स्वागत किया गया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही जन जल सेवा की दो यात्राएं 24 और 25 सितंबर को बैतूल जिले से होकर गुजरेंगी। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा सप्ताह के तहत प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान जबलपुर में 24 सितंबर को एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार आयोजित किया जाएगा। नर्मदापुरम में मिशन वात्सल्य के तहत नर्मदापुरम स्थित वन स्टॉप सेंटर में अनचाहे नवजात शिशुओं को सुरक्षित आश्रय देने के लिए पालना स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। FM 102.5 MHz साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, वक्त हो गया है मालवा की माटी, परंपराओं, लोक गीतों और जन जीवन की बात का। तो आइए जुड़ते हैं अपनी जड़ों से और शुरू करते हैं माटी री बात प्रोग्राम।

तो नमस्कार का साथ राम राम मारा किसान साथी हूँ। एक बार फिर हाजिर है तुम्हारा बीच तुम्हारा भाई सुमित कुमार। तो देखो, मैं सबसे पहला तो आशा करूँ कि तुम सब चकाचक होगा। तो अपना आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र पे एक बार फिर तुम सबको स्वागत है, वंदन है और कल का साथेज घनो घनो अभिनंदन भी है। आज की तिथि पे बात करा तो आज अपन भादवा महीना का उजाला की बारिश हो गई है, और यह कोई मामूली बारिश नहीं है, इके वामन द्वादशी अर्थात वामन जयंती भी बोले हैं। ने आज तारीख है 23 सितंबर, ने वार बुधवार। अब बात करा आज का दिन पे, तो आज भी घनसारा दिन मनाया जाए है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाए है, जिमें यो दिन बधिर लोग उनकी सांस्कृतिक विविधता और सांकेतिक भाषा का महत्व का बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाए है। उसका बाद आज एक और खास दिन भी मनाया जाए है, और आज का कार्यक्रम में उपेज बात करवाला हम अपन। पर उका पहला जानो आज का दिन को महत्व। एक साथेज आज रामधारी सिंह दिनकर जो महाकवि रहा है उनको जन्मदिन भी मनाया जाए है। उनकी एक कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो 23 सितंबर 1908 के हिंदी का एक महान ओजस्वी कवि को जन्मदिन का उपलक्ष्य में मनाया जाए है। ने एक और बात, आज आज का दिन 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा कानून पारित करियो गयो। तो अनि साथ ही देखो जाए तो आज घनसारा दिन मनाई जाए है। अब आई जाए अपना आज का मुख्य विषय पे। तो आज अपना कार्यक्रम में अपन बात करवाना हाँ आयुर्वेद दिवस का बारे में। अपना जीवन में आयुर्वेद को घणो महत्व रे। देखो आयुर्वेद को मतलब हो ये अपनी आयु यानी उम्र, ने वेद को मतलब हो ये स्वस्थ। आयुर्वेद को नाम सुनता ही अपना दिमाग में घन सारी जड़ी बूटी आई जाए है। फिर चाहे सर्दी हो, खांसी हो या फिर बुखार हो, ये छोटा मोटा बुखार तो अपना घर का एरे मेरे सही हुई जाए, जड़ी बूटी रहे अपना गने। तो आवश्यकता है खाली उसके सही पहचानवा की। तो इपेज बात करवाला आने के संदर्भ में अपन लेके आए हैं आज को ये कार्यक्रम आयुर्वेद का संदर्भ में। पर उका पहला अपन बात करा सोयाबीन की। तो कहीं नहीं अभी हाल यो है कि कई जगह जल्दी का जो सोयाबीन था, जल्दी वेराइटी का भी कटवा लगी गया है। जिका आई ने कटी रहा वहीं का 2-4 दिन में कटवा लगी जाएगा, नंबर आई जरो है। तो ईपे तो जितनी बात करो इतरो कम पड़े। इन बार किसान को कहना है कि पिछला साल की उपज की जो उत्पादन है वो अच्छा आई रो है। इन बार मतलब सोयाबीन की उत्पादन अच्छे ही रही हो, या तो अपने किसान का लिए खुशी की बात है। उसका बात अपन जो आज बात करवा लगा वाला हाँ आज का मुख्य विषय वो आयुर्वेद दिवस है। अनेक का संदर्भ में अपन अपना धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रिंसिपल डायरेक्ट डॉक्टर ओपी व्यास सर की भी भेंटवार्ता सुनवा वाला हाँ। तो सुन थम भी सुनना मत भूलो, सबका लिए बहुत काम की जानकारी है यह। पर उका पहला जैसो कि थम सब जानो है कि अपना कार्यक्रम में चालू करवा का साथ मुख्य रूप से अपन मालवी समाचार सुना हाँ। तो आओ आज भी तुम्हारे लिए चला मुख्य रूप से मालवी समाचार पे। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है मालवी समाचार।

समाचार का साथ मु तमारो भाई सुमित कुमार आओ सबसे पहले अपन बुलेटिन का मुख्य समाचार सुना। तो आयुष्मान भारत योजना का आज 8 साल पूरा हुई गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 25 सितंबर के भोपाल का दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगा और प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र का सेवा पोषण और सम्मान का केंद्र बनाने के लिए प्रदेशव्यापी आंगन मिलन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार थी। आयुष्मान भारत योजना का आज 8 साल पूरा हो गया है और मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलियो है कि अनिति देश का 60 करोड़ लोग उनके 5 लाख रुपया तक की हेल्थ कवरेज मिली है जो कि अन्य दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बनाए है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करी। अनिक दौरान उन्होंने आयुष वेलनेस पर्यटन केंद्र को नयो नाम आरोग्यम धाम सिंगल क्लिन का जरिए जारी करूँ। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र से जुड़ी कई जन कल्याण योजना को भी शुरुआत करी। साथ ही विभाग का कई विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुयो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन का नई गति देने का उपलक्ष्य में 25 सितंबर के भोपाल का दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहला चरण में 351 बस उनके हरी झंडी दिखाएगा। ये बस इंदौर भोपाल जबलपुर रीवा देवास कटनी और भिंड सहित 7 शहर में शुरू हुई रही है। योजना का तहत प्रदेश का करीब 15,000 आधुनिक बसें चलाई जाएगा जिनमें योजना का 30 लाख से अधिक यात्री उनके सुविधा मिलेगा। सभी बस में CCTV कैमरा पैनिक बटन और रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा ताकि यात्री उनके खास करके महिला उनके और बच्चा उनके सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उसके बाद प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र की सेवा पोषण और सम्मान का केंद्र बनाने के लिए प्रदेशव्यापी आंगन मिलन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश का सब 97,882 आंगनवाड़ी केंद्र पे आयोजित होगा। पहला दिन बाल स्वास्थ्य गतिविधियां और स्वास्थ्य प्रशिक्षण होगा। उसके बाद दूसरा दिन लाभार्थी महिला योजना से मिला लाभ का अनुभव साझा करेगा। बच्चा का कल्पनाशील जिज्ञासा और संवेदन के साहित्य से जोड़ने का उद्देश्य में भोपाल में 26 अक्टूबर के बाल साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अर्चना प्रकाशन न्यास का तत्वधान में होने वाला सम्मेलन में प्रदेश सहित देश का अलग अलग हिस्सा में बाल साहित्यकार और साहित्य प्रेमी शामिल होगा। सम्मेलन का साथ बाल साहित्य पर प्रदेशी विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगा। आयोजन में बाल साहित्य का साथ बाल अधिकार संस्कार और बाल मनोविज्ञान जैसा विषयों पर चर्चा होगा। नीमच में अवैध खनन पर अंकुश लगाने का लिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने 10 प्रकरणों पर कार्रवाई करी है। कलेक्टर ने वाहन मालिक पे करीबन 4,86,000 रुपये को जुर्माना लगाया है। वहां दूसरी तरफ जिला में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रतलाम में फ्लाई ओवर फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लेकर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने नाराजगी जताई है। उनने PHE विभाग का कार्यपालन नियंत्री जांगड़े के कारण बताओ नोटिस जारी करियो है और मामले का जानकारी के लिए ACS सचिन सिंह के देखकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। बात अगर मालवा की करा तो जिला में आज वड़नगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा संकल्प यात्रा ने गांव बरगड़ी में प्रवेश करियो है। अन्य मौका पर बड़ौत में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित कर पौधारोपण करियो गयो। बुरहानपुर में उमंग दिवस पर पुलिस ने शासकीय स्कूलों में बालिकाओं के गुड टच बेड टच पॉक्सो एक्ट साइबर अपराध और सोशल मीडिया सुरक्षा की जानकारी दी। झाबुआ में 25 सितंबर के अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जित करी लेके पुलिस और प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। अधिकारियों ने किशनपुरी स्थित अनास नदी का किनारे विसर्जन स्थल का निरीक्षण करके सुरक्षा बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था को जायजा लियो है। खंडवा में सेवा ती संकल्प अभियान का तहत बड़नगर ती वाराणसी जयरी सेवा यात्रा ने आज जिला में प्रवेश करियो है। एक साथ नीलकंठेश्वर महाविद्यालय में NSS का 3 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू हुयो। अब बात मौसम की करा तो प्रदेश में मानसून सीजन में अभी तक 869.3 मिलीमीटर यानी 34.2 इंच बारिश हुई चुकी है जो सामान्यतः करीबन 6% कम है। आज बंगाल की खाड़ी पर बना अवदाब का असर थी प्रदेश में बारिश का एक बार फिर दौर शुरू हुई गयो है और 26 सितंबर तक कई जिला में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये था आज का मुख्य मालवी समाचार।

हाँ तो समाचार का पहला अपन बात कर रहा था अपना फसल की कई हाल चाल चली रो है। तो अभी कहीं है नहीं, किसान लई दई ने खेत में लगे हुए है। अच्छा एक बात मालूम है तुम्हारे, ऐसा टाइम में किसान के यह चिंता भी सच्चा है कि कभी पानी नहीं आई जाए, कहीं है नहीं इन्हीं कारण थे किसान जल्दी जल्दी फसल एवरवा में लगी जाए है, जिससे जल्दी जल्दी काम हुई जाए न खत्म। नहीं तो अगर कटिया हुआ खेत में सोयाबीन पड़या है तो मालूम पड़े 2-4 दिन में हाँ हारो पानी पड़ी जाए तो सोयाबीन खेत में सड़वा लगी जाए। और इका लिए अन्य समय में तो किसान रिस्क ज नहीं ले, किसान को एकच लक्ष्य दे कि कैसे भी करके फसल के बस सही साठ घरे पहुँचाना है। तो या तो ऐसी जान तो ऐसे थोड़ी जानकारी के लिए मैंने बताई है तुम्हारे किसान को कई हाल चाल चली रहो। अभी तो चला अपना आज का मुख्य विषय पे, पर उका पहला आओ सुनाए तुम्हारे अपना कार्यक्रम में एक अच्छो सो लोकगीत, क्योंकि लोकगीत तो अपनी संस्कृति की शान रहे है। तो आओ सुनो पहला यो लोकगीत, उका बात बात करेंगे अपन।

0: तो सुन लियो गीत अपन ने। अब बात करा अपना आज का विषय पे, पर उका पहला मैं तुम्हारे बताई दू, अगर नहीं मालूम में है तो थम सुनी जा हो अपने FM 102.5 MHz पे, उका साथे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पे आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी अपनो विशेष कार्यक्रम माल माटी की बात, जिसमें हम लेके आए हैं तुम्हारा बीच एक ती एक जानकारी जो सीधी अपनी मिट्टी थी जुड़ी हुई रहे है। तुम्हारे कल कहीं नहीं करना है, बस सुनता रहो अपने और लेता रहो एक ती एक जानकारी। तो अपन बात करने वाला हाँ हमारी भारतीय परंपरा और जीवन पद्धति से जुड़ी एक ऐसी विद्या की जिसको नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद अपना देश की प्राचीन स्वास्थ्य परंपरा है और यह केवल बीमारी ती अच्छा करवा का लिए सीमित नहीं है, बल्कि शरीर मन खान पीन दिनचर्या और प्रकृति का बीच संतुलन रखवा पर भी जोर दे है। आज आयुर्वेद दिवस का अवसर पे आयुर्वेद के लेके देश दुनिया में चर्चा हुई रही है। आयुर्वेद की बात अब खाली पुरानी किताब और घर परिवार की परंपरा तक सीमित नहीं रही है, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खान पीन योग व्यायाम नींद साफ सफाई और प्रकृति का साथ संतुलन जैसा विषय पे फिर ध्यान देवा लगी गया है। ऐसा में आयुर्वेद की मूल भावना के समझना जरूरी है। अपना गाँव में बुजुर्ग लोग बोले हैं कि शरीर का स्वस्थ रखवा का लिए सबसे पहला रोज की आदत ठीक करनी चाहिए। सबसे पहला सुबह समय ती उठनो, समय पे भोजन करनो, मेहनत करनी, पर्याप्त आयाम करनो और मौसम का हिसाब से जीवन में बदलाव करनो। ये सब बात अपनी परंपरा जीवन शैली में पहला ती शामिल है। आयुर्वेद भी जीवन में अनुशासन और संतुलन के महत्व देवे है। आयुर्वेद शब्द दो शब्द ती मिली के बनियो है, आयु और वेद। आयु का मतलब है जीवन और वेद को मतलब है ज्ञान, यानी आयुर्वेद ने जीवन का बारे में ज्ञान देने वाली परंपरा का रूप में समझो जा सके है। इका उद्देश्य खाली शरीर की बात करनो नहीं है, बल्कि स्वस्थ शरीर जीवा की समझ विकसित करनो भी है। हमारा जीवन में आयुर्वेद की सबसे पहली उपयोगिता अपना खान पीन से जुड़ी अंतर रहे। आज की तेज जिंदगी में कई बार आदमी भोजन जल्दी जल्दी कर ले, काम की भागदौड़ में भोजन का समय बदली जाए, बाहर को भोजन अधिक तल्यो बुल्यो भोजन या फिर जरूरत ही ज़्यादा खान पीन हो जाए या रोज की आदत बनी जाए है। आयुर्वेदिक दृष्टि थी भोजन के शरीर की जरूरत और व्यक्ति की दिनचर्या का अनुरूप देखभाल पर जोर देने जाए। अपनी पुरानी रसोई में भी कई ऐसी चीज मिले हैं जिनका उपयोग खाली स्वाद खातर नहीं, बल्कि भोजन की परंपरा और मौसम का अनुसार करियो जाए है। दाल अनाज हरी सब्जी मौसमी फल मोटा अनाज और अलग अलग मसाला मारी अपनी रसोई को हिस्सों रियो है। हल्दी जीरा धनिया सौंफ अजवाइन अदरक जैसी चीज वन घर में सामान्य रूप से इस्तेमाल हुई रही है, लेकिन इनका उपयोग ने बीमारी का इलाज के दावे का रूप में भी नहीं है, बल्कि भारतीय खान पान की परंपरा के रूप में समझना चाहे। आयुर्वेद में मौसम का अनुसार जीवन शैली में बदलाव की बात भी मिले है। गर्मी में शरीर ने पानी की जरूरत पड़े, बरसात में साफ सफाई और भोजन पर ध्यान देना जरूरी हुई जाए है और सर्दी में खान पीन और दिनचर्या अलग अलग हुई सके है। यानी प्रकृति जब बदले तो आदमी के भी अपनी दिनचर्या में उचित बदलाव करनो और पे ध्यान देना चाहे। और आयुर्वेद इतनी बड़ी चीज है और आने का संदर्भ में अपन सुनांगा अपना आज का विशेषज्ञ ने अपना आयुर्वेद का अनुभवी डॉक्टर OP व्यास सर थी, जो कि धनवंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रिंसिपल है। इनते अपन सुनाएंगे कि आयुर्वेद कहीं हो और एक आम इंसान के आयुर्वेद का क्षेत्र में कणी कणी चीज को ध्यान रखना चाहे। तो आओ सुनाए अपन पहला इनसे भेंट वार्ताओं का बात, अपन बात करेंगे आयुर्वेद पे।
1: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए, और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: सर हमारे श्रोताओं को आपका परिचय दीजिए।
2: मैं डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास, गवर्नमेंट धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन का प्रिंसिपल हूँ, अभी इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ और यहाँ सेवा दे रहा हूँ पिछले 27 साल से।
1: सर जैसा कि आप जानते हैं आज विश्व आयुर्वेद दिवस है, तो सर हमारे श्रोताओं को बताइए कि विश्व आयुर्वेद दिवस को मनाने की शुरुआत क्यों हुई?
2: आयुर्वेद दिवस की शुरुआत हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि आयुर्वेद जो हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति है उसको विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिले, इसी दृष्टि से विश्व आयुर्वेद विश्व में इसका फैलाव हो। एक समय ये बहुत मानी हुई चिकित्सा पद्धति थी, पूरे विश्व में इसका वो डंका बजता था, आज पुनः ये आयुर्वेद विश्व भर में स्थापित हो, इसी उद्देश्य से ये विश्व आयुर्वेद दिवस की शुरुआत हुई।
1: सर हमें ये बताइए आयुर्वेद का मूल उद्देश्य क्या है, आज के समय में इसकी कैसी प्रासंगिकता है?
2: आयुर्वेद पूरा शब्द जो बना हुआ है आयु और वेद, ये दो शब्दों से मिलके बना है। आयु जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय है वो आयु कहलाती है, वो जो काल है वो जीवन कहलाता है, वो आयु कहलाती है। और ये जो वेद शब्द है विज्ञान के लिए आया है, वेद का अर्थ होता है विज्ञान। तो आयु का सुव्यवस्थित ज्ञान जहां प्राप्त होता है वो आयुर्वेद शास्त्र है। और जब जीवन की बात है तो इसमें दोनों चीजें हैं, जीवन आपका स्वस्थ रह सकता है तो आप जीवन से परे जा सकते हैं, और एक दूसरी चीज ये अगर अस्वस्थ हैं तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जानी चाहिए। आयुर्वेद का उद्देश्य भी यही है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रह करके अपने जो जीवन के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर अंत में मोक्ष प्राप्त करे, और अगर अस्वस्थ हो गया है किन्हीं कारणों से तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो सभी इसमें विद्यमान है, चाहे औषधि के रूप में हो चाहे शल्य और शस्त्र चिकित्सा के रूप में हो।
1: सर खान पान और दिनचर्या का हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है? आयुर्वेद इस संबंध में क्या मार्गदर्शन देता है?
2: खान पान के कारण ही आज जो जीवन शैली आदमी की है वो अव्यवस्थित हो गई है। बच्चे सवेरे देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं, देर से ही रात को खाना खाते हैं, है ना। इसके कारण से सारी अव्यवस्थाएं जो आज रोग बढ़ रहे हैं, छोटी उम्र में लोगों के रोग जो बढ़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जो चीजें छोटी उम्र में बच्चों को आ रही है इस अव्यवस्थित खान पान के कारण से ही। आयुर्वेद जो जीवन शैली बताता है स्वस्थ रहने के लिए, वो प्रातः जल्दी उठना, अपना नियमित समय पे योग करना, जीवनचर्या के लिए आवश्यक प्रयत्न करना ताकि जीविका उपार्जन किया जा सके, रात्रिचर्या एक समय पर निर्धारित करें, भोजन का एक निश्चित समय है उस पर शांतिपूर्वक भोजन करें, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगा।
1: सर जैसा कि हम जानते हैं आज के समय में लोग बिना चिकित्सीय सलाह के आयुर्वेद दवाइयाँ और काढ़े ले लेते हैं, तो इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं इस पे सर बताइए सर।
2: कोई भी औषधियां चाहे आयुर्वेदिक हो उनको बिना चिकित्सक की परामर्श के नहीं लेना चाहिए, चाहे क्वाथ हो, चाहे रस औषधि हो, चाहे सामान्य कोई दवाइयां हो। वो दवाइयां आप किस तरह से ले रहे हैं, हर दवाई का एक नियम है कि इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए। चार पांच सामान्य नियम उसमें बताया गया कि ये ऐसी चीज भोजन के पहले खाली पेट लेना है, ये खाना खाने के बाद लेना है, इन बहुत सारी चीजों का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। आदमी अपनी मन मर्जी से या केवल लोगों के कहने पे कभी भी अगर औषधि लेगा तो वो नुकसान करेगी, खास तौर से रस भस में तो बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे वैद्यगण भी हैं जो इस ढंग की वो करते हैं और उनसे आदमी अस्वस्थ होने की संभावना बनी रहती है। तो चाहे आप कोई सी भी औषधि हो, नीम के पत्ते भी हो, तो आपको बिना उसके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब उस औषधि की जरूरत पड़ेगी तो वो औषधि आपका काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको आहार के रूप में आप नियमित रूप से ले रहे हो,
1: बिल्कुल सर।
2: है ना। इसलिए आयुर्वेदिक औषधियां कभी भी हो हमेशा चिकित्सक की सलाह से ही आपको लेना चाहिए।
1: हाँ सर, बहुत सारे देखते हैं कि आयुर्वेद औषधियाँ हम अपने दैनिक दिनचर्या में उपयोग में ले लेते हैं, तो उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है।
2: होता
1: सर हमें एक बात ये बताइए, क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ पूरी तरह तो सुरक्षित मानी जाती है, या इनके सेवन से भी चिकित्सीय परामर्श आवश्यक है?
2: हाँ, आयुर्वेदिक औषधियां निश्चित रूप से कई जगह, जैसे अभी आपका कोरोना काल आया था उस समय त्रिकटु चूर्ण आयुर्वेद विधा के लिए काफी जगह बांटा गया। अब लोग बिना उसके भी त्रिकटु चूर्ण काफी समय तक काढ़े के रूप में लेते रहे, और उसके दुष्परिणाम ये हुए कि लोगों को अतिसार होने लगा। ये अति उष्ण द्रव्य है और इसको एक सम्यक रूप से लेना चाहिए। उस चूर्ण को चाय के रूप में उसको नियमित सेवन करने लगा व्यक्ति तो उसके अतिसार होने लगे, और ये जब इस ढंग के रोग आने लगे तो एक दिक्कत आने लगे कि इस व्यक्ति फलाने रोग से तो पीड़ित नहीं है क्या, इसको वो है। जब पता चला कि ये व्यक्ति लगातार त्रिकट चूर्ण का सेवन कर रहा है, अब उसको बंद करने से उसका अतिसार वैसे ही बंद हो गया।
1: अच्छा
2: इसलिए दुष्परिणाम तो एक छोटे से त्रिकट चूर्ण से भी होने लगता है,
1: अच्छा मतलब कभी कभी दवाइयां भी
2: भी नुकसान
1: नुकसान
2: करती
1: दे
2: है,
1: सकती।
2: बिल्कुल नुकसान करती है।
1: सर एक बात ये बताइए, योग आहार दिनचर्या और आयुर्वेद इनके बीच क्या संबंध है?
2: जैसा मैंने बताया था कि आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अस्वस्थ हो जाए तब उसकी चिकित्सा करनी। योग एक स्वाभाविक चीज है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम श्वास की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ने का प्रयास करने का है, ये आयुर्वेद का पूरा शास्त्र है।
1: अच्छा
2: है ना, ये योग का है। तो योग करने से जो सामान्य व्यक्ति को लाभ होता है वो है कि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रह सकता है। आप देखें बीमार व्यक्ति की श्वास बिल्कुल अलग तरह से चलती है और नंबर ऑफ रेस्पिरेशन रेट उसकी बढ़ जाती है,
0: बिल्कुल,
2: और स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसकी नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रहती है और वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रह सकता है। इसलिए योग हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही आहार और दिनचर्या, दिनचर्या और आहार का इसलिए महत्व है कि आप एक सुव्यवस्थित दिनचर्या अगर जिएंगे, सुव्यवस्थित रात्रिचर्या का पालन करेंगे और नियमित समय पर बेहतर आहार का सेवन करेंगे तो आप बीमार होने से बच जाएंगे। ये अगर आपने पालन किया तो निश्चित बात है कि आदमी स्वस्थ बना रहेगा और यही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है।
1: सर एक बात और, ये मौसम बदलने के साथ शरीर में होने वाले बदलावों के संदर्भ में आयुर्वेद की ऋतुचर्या की क्या भूमिका है?
2: सर बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारे शरीर में जो अग्नि है जो खास तौर से भोजन को पचाने का काम करती है,
1: अच्छा,
2: वर्षा ऋतु में ये बहुत निम्नतम स्तर पर रहकर काम करती है। इसलिए वर्षा ऋतु में एक निर्देश है कि अल्प आहार या लघु आहार का सेवन करना चाहिए। अब व्यक्ति क्या करता है, च्यवनप्राश 12 माह खाने लग गया है, वो हैवी फूड है, अगर इस समय खाएगा, इस समय वाफले खाना शुरू करेगा, दूसरी चीजें खाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी अग्नि मंद हो जाएगी, तब वो बीमारियों से पीड़ित होने लगेगा। इसलिए हर ऋतु के हिसाब से आहार का निर्देश है आयुर्वेद में कि आप वर्षा ऋतु में अल्प आहार या लघु आहार का सेवन करें, इस ढंग की पानी कम से कम पिए। शरद ऋतु आती है तो उसमें आपकी अग्नि दीप्त रहती है, उत्तम स्थिति में रहती है, दीप्त अवस्था में, तो उस समय ड्राई फ्रूट और इनके सेवन का विधान है। आप दवाइयां इन ड्राई फ्रूट का हलवा बना के खा सकते हैं, च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं जो निश्चित रूप से ड्राई फ्रूट और बल्ली औषधियों से बना हुआ रहता है, वहां निश्चित रूप से आपको उससे एनर्जी अधिक मिलती है। लेकिन और दूसरी अगर ऋतुएं हैं तो उनके लिए जो निर्धारित आहार है उसी का उल्लेख आयुर्वेद ने किया है और उसका पालन आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए।
1: मतलब ये सर कि अगर कोई व्यक्ति 12 महीने एक ही चीज का सेवन करेगा, एक ही खान पीन को अपनाएगा तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
2: रहेगा। बिल्कुल
1: सर, हम अक्सर हमारे आसपास देखते हैं आज का जो युवा पीढ़ी है उनमें तनाव, अनियमित नींद और असंतुलित खान पान जैसी समस्या देखने को मिलती है। सर हमें बताइए कि आयुर्वेद की दृष्टि से स्वस्थ जीवन शैली के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: सर पहली चीज तो यह है कि हमें समय पर सोना है, समय पर उठना है, और जरूरी है कि थोड़ा हम शरीर को व्यायाम भी दें, तो योग या आपका व्यायाम या पैदल चलना। हमें पैदल चलने से हमारी जो जरूरी चीजें हैं, हमें उत्तम जो प्रातःकाल की हवा रहती है ना, बिना पॉल्यूटेड हवा मिल जाती है,
1: अच्छा,
2: है ना, वो अग्नि को दीप्त करती है। हमारे श्रम करने से हमारी ऊर्जा अधिक वो होती है, अग्निदीप्त होती है। धूप का सेवन करने से अग्निदीप्त होती है, जो प्रातःकाल की लघु जो धूप है, जो कम तीव्रता वाली धूप है, वो सेवन करता व्यक्ति तो उससे अग्निदीप्त होती है। जो दिन भर के लिए हमारी ये जो एनर्जी है उसको प्रदान करने के लिए जरूरी होती है, जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसके पाचन के लिए जरूरी होती है। इसलिए आयुर्वेद में एक निश्चित दिनचर्या दी है, आज का युवा उससे भटक गया है, रात भर में मोबाइल चलाता रहता है, रात को 3-4 बजे सोता है, सवेरे देर से उठता है, तो ये सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाने के कारण से वो उसमें तनाव और ऐसी स्थितियां बनी रहती है।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया आप उज्जैन के आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रिंसिपल हैं। सर हमें बताइए आपके धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय की शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में क्या प्रमुख गतिविधियां चल रही है?
2: जी सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ विगत 27 सालों से लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर काई चिकित्सा के रूप में काम करता रहा हूं और अभी 2-2.5 माह से प्रिंसिपल बना हूं। और मेरे आने के पहले मेरे पूर्वोत्तर प्राचार्यों ने जो काम किया उससे संस्था इस स्वरूप में आज मुझे मिली है, और मैंने मेरे आने के पश्चात जो एकेडमिक गतिविधियों में हम पीछे जा रहे थे उसको हमने कोशिश की है कि इसको हम वापस इस इतनी बड़ी संस्था को इस देश के पटल पर एक जो एकेडमिक गतिविधियां जो होनी चाहिए उस तरह की गतिविधियां संचालित हो सके, उसके लिए अभी हमने प्रयास किया है। तो दो हमें यहाँ पर अभी CME कार्यक्रम हो रहे हैं, एक नेशनल सेमिनार हो रहा है 2-3 अक्टूबर को,
1: अच्छा,
2: एक दो हमने नेशनल उसके प्रोजेक्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हमने वो किए हैं और रिसर्च वर्क शुरू किया है। 5 सब्जेक्ट में PG चालू है, अच्छा, और जिसमें हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं और बच्चों को और रिसर्च के लिए प्रेरित करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ नियमित रूप से अब 15 दिनों में एक बार सेमिनार होने लगे हैं, और इन गतिविधियों से क्लासेस रेगुलर होने लगी हैं, जो निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से और चिकित्सालय में जो रोगी हैं उनके परीक्षण के हिसाब से रोगियों को, जो छात्र हैं उनको इसका ज्ञान देने के लिए पर्याप्त जो भी चीजें होना चाहिए वो सब हमने अभी प्रारंभ की हैं, और इससे निश्चित रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा का और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। सर अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपकी प्रमुख शासन से क्या मांगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरी तो इच्छा है कि आयुर्वेद लोगों के ऑप्शन में जब स्वास्थ्य की बात आए तो पहले नंबर पे आए। आज ही मतलब मुझे याद है कि कई जो दो तीन डायबिटीज के रोगी मेरे पास, जैसे ही उनको डायबिटीज का पता चला मेरे पास चिकित्सालय में आ गए। ये मुझे अच्छा लगा कि पहली प्रायोरिटी उनने आयुर्वेद को दी।
0: बिल्कुल सर,
2: ये मेरी 27 साल की मेहनत है कि आज आदमी को पता है कि अगर मेरे को डायबिटीज हो गई है तो मैं धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाकर के व्यास जी को दिखा लूंगा तो मेरी जो डायबिटीज है वो ठीक हो जाएगी। ये मैं चाहता हूं कि समाज में इस ढंग का मैसेज जाए और आदमी पहली प्रायोरिटी पर आयुर्वेद चिकित्सा का उपभोग करना शुरू कर। ये मैं अपने बच्चों को भी वो करता हूं, और बच्चे आज मेरी काफी मेहनत कर रहे हैं, वो खुद आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं। जो एक समय जो काफी एलोपैथिक चिकित्सा करते थे आयुर्वेद चिकित्सक, वो अब बिल्कुल बंद है। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा से ही लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में ही समाज में स्थापित हो रहे हैं। मैं हमारे जनप्रतिनिधियों, मेरे अग्रज जो उच्च अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और आयुष के जो हित चिंतक हैं, उनसे अनुरोध करूंगा इस चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति घोषित करें ताकि इसका और अधिक विकास हो सके और जनता के लिए ये प्रथम स्थल पर चयन के रूप में आ सके।
0: तो जैसा कि अपना सर ने बताया हो कि कैसे आयुर्वेद अपना जीवन में बहुत जरूरी रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद परसों पुरानी चले आई परंपरा है। दवाई गोली तो अभी बनी होगा पर आयुर्वेद अपन देखा का आयुर्वेद का अंश गंज पुराना दिखे अपने। मालवा की बात करा तो अपनी धरती में मौसम और खेती का साथ खान पीन की भी परंपरा जुड़ी अंतर है। गर्मी, बरसात और सर्दी का हिसाब थी घर में भोजन की चीज़ें बदलती रहे। बाजरों, ज्वार, मक्का, गेहूँ जैसा अनाज का उपयोग अपनी स्थानीय भोजन परंपरा को हिस्सों रियो है। आज जब लोग स्थानीय और पारंपरिक भोजन की बात करी रहा है तो आयुर्वेद जीवन में खाली भोजन की बात नहीं करे हैं, शरीर के सक्रिय रखने पे भी जोर दियो जाए है। आज तकनीकी ने जीवन आसान तो कर दियो है पर इका साथ शारीरिक गतिविधियां के कई लोग की जिंदगी में कम हुई गई है। कंठों की बैठक, काम करना, मोबाइल और स्क्रीन पर समय बिताना और रोजमर्रा की छोटी छोटी दूरी की साधना थी समय तय करना सामान्य हो गए हो। ऐसा में रोज कई नए समय गन समय शरीर की सक्रिय रखनो, पैदल चलनो, योग करनो या अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करनो उपयोगी जीवन शैली को हिस्सा हो सके है। कोई भी व्यायाम या रोग व्यक्ति अपनी शारीरिक स्थिति और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ले है, यह बात को ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद मन और शरीर का बीच संबंध के भी महत्व दे है। आज आदमी का जीवन में काम का दबाव, भागदौड़ और लागत, बदलती परिस्थितियां, ऐसा में मन के शांत रखना और पर्याप्त आयाम करना जरूरी है। परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति के बीच कुछ समय गुजारना, संगीत सुनना, किताब पढ़ना या अपनी पसंद की रचनात्मक गतिविधियां करने को मन में सहज रखना चाहिए, यह मददगार करे हैं। नींद भी स्वस्थ जीवनशैली को जरूरी हिस्सा हो सके हैं। देर रात तक जागना और सुबह समय पर नहीं उठ पाना आज कई लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गए हुए। नियमित समय पर सोनो जागना की आदत शरीर और मन दो के लिए जरूरी मानी जाए है। इकाले दिन भर की भागदौड़ में आराम और नींद ने भी उतरोज महत्व देना है जितरो अपना काम के दाह। आयुर्वेद में व्यक्तिगत प्रकृति और जरूरत ने समझना भी जरूरी हो जाए है। हर आदमी की शारीरिक बनावट, उम्र, दिनचर्या, काम और भोजन की जरूरत एक जैसी नहीं हुई है। इकाले इंटरनेट, सोशल मीडिया या कहीं दूसरा व्यक्ति का बात सुन के अपना ऊपर कोई उपचार या औषधि लागू कर लेना उचित नहीं रहे। कहीं भी बीमार या स्वस्थ संबंधित परेशानी का लिए योग्य चिकित्सा की सलाह लेनी जरूरी है। आज के समय में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दो ही अपना अपना क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। कहीं भी स्वास्थ्य समस्या से सही जानकारी और योग्य चिकित्सा सलाह सबसे जरूरी है। आयुर्वेदिक औषधि भी बिना उचित जानकारी के अपना मन देनी ठीक नहीं है। खास करके गर्भवती महिला, बच्चा, बुजुर्ग या पहला से कोई दवा ले रहे व्यक्ति के कोई भी औषधि शुरू करवा का पहला योग्य चिकित्सक की सलाह लेनी जरूरी हो जाए। आयुर्वेद की एक खास बात यह भी है कि इनमें स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या पर चर्चा मिलती रहे, यानी स्वस्थ केवल जीवन की शैली नहीं रहे, बाकी स्वस्थ व्यक्ति को जीवन एक मस्त रहे। और अपने तो मालवा में कहावत है कि पेलोक सुख निरोगी काया, तो बस मणि पेच काम करनो इकाले आयुर्वेद के अपनानो है। तो आज अपन ने मुख्य रूप से मालवी जो माटी की बात कार्यक्रम में अपना आयुर्वेद का ऊपर बात करी, उका पहला अपन ने आज का दिवस पे बात करी, आज जो रामधारी सिंह जिनकर को जन्मदिन है उन पर बात करी। तो हमारा हिसाब से आजकल इतना घणो है क्योंकि समय होने वालों है अपनों, क्योंकि अपने अगला कार्यक्रम भी सुनना है। तो कल फिर आएंगा हम तुम्हारे नई नई जानकारी देवाने, इकाले कहीं नहीं करना, तुम्हारे बने रहना अपने साथ आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र पे और सुनते रहना अपने ये कार्यक्रम। और मारे दो अब अनुमति क्योंकि मारो कहीं समय होने वालों है जैसे मैं जाऊँ। और इतना ज कहूँगा आखिरी में कि खुश रहो, सुख रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और इका साथ आज को नमस्कार, राम राम, जय श्री महाकाल।

श्रोताओं, मालवा की माटी की सुगंध और लोक संस्कृति की ये झलक आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अब आप जल्द ही विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा को सुनेंगे भोपाल केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: नमस्कार।
2: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
3: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया की सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नए गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहाँ भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं लेता है उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं। और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके, स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया पूरा 6.5 लाख, उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज ये दोनों मूल मुद्दे थे और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में। लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था, उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले सोच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले सोच करने वाले लोगों की 60% था
2: जी।
3: और 2019 में खुले सोच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2019 में कि हम खुले सोच से मुक्त है, लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
2: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
4: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने जो निर्मल गुजरात शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया। और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, या जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला, पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी। और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है, वहां से शुरुआत हुई
2: जी। तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर।

0: से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गाँव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गाँव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
2: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
2: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा, कुछ छिल के निकले, तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक 4 अनिवार्य कर लिया, 2 से नहीं चलेगा, 4 करना पड़ेगा। जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है। क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचरा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है। यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ

0: हुआ वहां पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े के जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा, उसको निकालकर एकर्स जमीन निकाल के वहां पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहां प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहां एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है, जो कि कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है। और वहां की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी इसको समझते हैं। इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है, और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं, उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है, ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है। इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है, स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं। तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
0: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा आरडब्ल्यूए की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं इसे। और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रिस्पांस जो है ना, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है। लेकिन जितना जल्दी हो के लगे, तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई हैं, और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है। लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना, और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए, और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में, और 2017 में नंबर एक पर आ गया। और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है। तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया, और उसमें उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है, ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है, वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया। तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए, और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
0: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं, लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था, और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था, कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है, हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो। लेकिन उसके बाद वो 6 है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें। और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ, एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को ला के पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह सा, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है, तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे ये सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंबा की बात है और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहां प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया क्योंकि काम ऐसे हुआ है, और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ, वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदाने पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं, इंदौर पहले आया लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होगी कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बोला जाता है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है, तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है। रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचरे से भी मुक्त होगा क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है, लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है। और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए, और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है,
0: क्योंकि एक चीज आप देखिए जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है,
1: नहीं।
0: सफाई शिक्षा से आता है
1: जी।
0: घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है, तो हमारे परिवार क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशन आता है, इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, 4 P, फर्स्ट P है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉर्पोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
2: पहले, हम चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी।
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सकें। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस है उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी, उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
1: जी।
2: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
0: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उनका हुआ है, और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में शौच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो कुछ चीज के जरिए से, पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टैब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
0: हाइजीन का कॉन्सेप्ट है, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है, तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा कि, और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जो आप जानते हैं शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए। ये सब चीजों को मानना पड़े, तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा। खाली एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा, इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्या जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
0: कंप्लीट मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए। स्पॉटलेस जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर हर जगह जहाँ फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहाँ पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहाँ भी बैठ सकता है, कहाँ भी खड़ा हो सकता है, कहाँ भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ एयर वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गाँव हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
2: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
1: है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
2: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिए मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके सब जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितने उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करे, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है, तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी जैसे लाल किले को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
0: काम तो बहुत हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है, और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल किया जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारे चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा, हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
1: बिल्कुल लक्ष्य जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए?
0: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें, हमारा घर, हमारा दफ्तर, हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा, जितना निकले कम निकले और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
1: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो, और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गांव के लिए नहीं, मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
0: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर की कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
1: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नीयत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, विषय था स्वच्छता से सम्मान तक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
5: नमस्कार, आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। FM 102.5 MHz साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो साथी अदिति निगम। श्रोताओं, अब वक्त है फिल्म संगीत प्रोग्राम का। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा सुपरहिट गाना।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म गुरु से गाना। गाने में आवाज़ दी है हरिहरन, अलका याग्निक और साथ ही ए आर रहमान ने। गाने में संगीत ए आर रहमान का और गीतकार गुलजार। श्रोताओं, फिल्म संगीत में सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, अभी आप जो सुन रहे हैं गाना फिल्म यस बॉस से है। गाने में स्वर अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक के हैं और गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार जतिन ललित हैं। श्रोताओं, फिल्म संगीत के प्रोग्राम में फिलहाल देते हैं यही विराम। आपसे फिर होगी मुलाकात। मैं अदिति निगम आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
4: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
5: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
4: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
6: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
4: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
7: आईएमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
8: एशियाई खेलों में रोशोबीना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
9: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
8: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settle for bronze, taking overall tally to 12 medals, including one gold. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the sanctioning Russia and Iran last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister S. Jaishankar, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot participated in the India-UAE-France trilateral on the sidelines of the 81st session of the United Nations General Assembly UNGA in New York. They discussed collaboration in artificial intelligence, AI, space, health sciences, energy and culture. The three ministers reviewed progress in trilateral cooperation across agreed areas of mutual interest, including space energy, artificial intelligence, and culture and heritage. According to the statement released by the Ministry of External Affairs, the leaders also discussed the situation in West Asia. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation Contact Group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The ministry said repeated endorsement of such motivated narratives only raises serious questions on the credibility of the OIC. It said instead of offering a platform to Pakistan to peddle its fabricated and motivated propaganda, OIC will be better advised to counsel Pakistan, which has a well-documented record of supporting and sponsoring terrorism, to look inwards and address the continuing threat of terrorism emanating from territories under its control. The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited, BDL, for the procurement of 160 satellite smart anti-airfield weapons, SAT-SAAW, along with associated equipment for Indian Air Force, IAF. The contract was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi today. The delivery of SAT-SAAW is scheduled between 2027-2028 and 2028-2029. SAT-SAAW is an air-to-ground precision-guided glide bomb which can be launched from platforms like Jaguar, Hawk and Su-30 MKI and has the capability to neutralize our enemy airfields from a long standoff range. Indigenously designed and developed by DRDO, the system will have an indigenous content of 60% along with indigenization of subsystems like initial measurement unit, long impact delay fuse and twin store carrier to further boost self-reliance in defense. My Bharat platform has crossed more than 3 crore registered youth since its launch in the year 2023. The achievement reflects the ever-expanding youth participation who takes part in learning, volunteering, leadership, civic engagement and youth-led initiatives. A platform to engage youth of the nation, My Bharat runs under the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports. My Bharat is a national platform established by the Department of Youth Affairs to help you learn, lead and serve so India can build Vikasit Bharat by 2047 together. The Ministry of Youth Affairs and Sports said in a statement that the platform crossed more than 2 crore registrations in October last year. The Election Commission has said that all the decisions, including the electoral roll revision, were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives, and undertaken many electoral reforms, including special intensive revision in the recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any institution and it is a part of the decision-making process before taking a final decision. It said every officer of the Commission is fully authorized to give his suggestions to the Commission for improving the electoral system. The Commission has recently successfully conducted major elections of Bihar, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Assam and West Bengal and election-related exercises during this period. This is Akashwani giving you the news.
11: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR

0: और न्यूज अलर्ट्स।
1: India has extended anti-dumping duty on decor paper.

0: Delhi.
1: A deep depression over the Bay of Bengal is moving towards the North Andhra Pradesh-South Odisha coast and is expected to cross tonight. The system is likely to cross near Kalingapatnam between tonight and early hours of tomorrow, bringing very heavy to extremely heavy rain and squally winds. Indian men's badminton team settled for the bronze medal after facing a 1-3 defeat to China in the semi-final in Aichi, Japan today. Indian player Lakshya Sen lost the opening match 21-16-21-18 to Shi Yuki before Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty leveled the tie with a 21-11-21-20 win over reigning world champions Liang Wei Qing and Wang Xiang. The bronze medal takes India's overall tally to 12 medals, 1 gold, 5 silver and 6 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies, heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settled for bronze, taking overall tally to 12 medals, including 1 gold. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले मुल्कों पर महसूल लगाने के अमेरिका के फैसले पर अपने मफादात और तश्वीशात को दोहराया है। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम के जम्मू कश्मीर के हवाले को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि भारत के अंदरूनी मामला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते पर दस्तखत किए हैं। बीजेपी ने सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए पार्टी के इंचार्ज और माविन इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। खलीज बंगाल में हवा के गहरे दबाव का हल्का शिद्दत इख्तियार कर गया है। साहिली ओडिशा और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश हो रही है। और एशियन गेम्स में मर्दों की भारतीय बैडमिंटन टीम ने कांसे का तमगा जीता है। तमगों की कुल तादाद 12 हो गई है, जिसमें सोने का एक तमगा शामिल है। खबरें तफसील से। भारत ने आज एक बार फिर रूस और ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक कानून के हवाले से अपने मफादात और खदशात को दोहराया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज शाम अक्वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की और मस्कूरा कानून के बारे में अपनी तश्वीशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दो तरफा ताल्लुकात, नीज खलीज और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते रूस और ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक कानून पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत उन्हें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर 100% तक महसूलात आयात करने का इख्तियार हासिल होगा। इसके जवाब में भारत ने कहा कि वह अपने माशी मफादात के तहफ्फुज़ और मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए सभी जरूरी इकदामात करेगा। जनाब जयशंकर इतवार को न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां वो अक़्वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। जनाब जयशंकर ने मुलाकात के बाद जनाब रूबियो से कहा कि भारत और अमरीका अहम इलाकाई तरजीहात पर बाहमी ताउन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक बाहमी तालमेल के जरिए कलीदी शराकतदारी और अहम इलाकाई तरजीहात और आइंदा कसीर जहती कोशिशों में हम आहंगी को फरोग दे रहे हैं। भारत ने नाम निहाद इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के राबता ग्रुप के जम्मू कश्मीर से मुतालिक मुश्तरका ऐलामिये में भारत के ताल्लुक से पेश की गई बातों को बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया है। वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक ओआईसी को भारत के अंदरूनी मामलात पर राय जनी करने का कोई हक नहीं है। वजारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर

0: लद्दाख भारत के अटूट और नाकाबिले तंसीख हिस्से हैं। सियासी मकासद के तहत चलाए जाने वाला प्रोपेगेंडा हकीकत को फरामोश नहीं कर सकता। वजारत ने कहा कि सियासी अगराज पर मबनी इस तरह के बयानिये ओआईसी की मोतबरियत पर संगीन सवाल खड़े करते हैं। वजारत ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को एक मनघड़त प्रोपेगेंडा चलाने के लिए मौका फराहम करने के बजाय ओआईसी को पाकिस्तान को सही रास्ते पर चलने का मशवरा देना चाहिए। पाकिस्तान के जरिए दहशतगर्दी की हिमायत और एयानत किए जाने का बाकायदा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उसे चाहिए कि वो पहले अपने कंट्रोल वाले इलाकों से पैदा होने वाली दहशतगर्दी के मुसलसल खतरे के मामले से निमटने पर ध्यान दे। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों SATSAAW और मुतालिका साजो सामान की खरीदारी के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के साथ 810 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत का मुआहदा किया है। मुआहदे पर आज नई दिल्ली में दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। सेट SAAW की फराहमी 2027-28 और 2028-29 के दौरान की जाएगी। सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स फिजा से जमीन पर वार करने वाला इंतहाई दुरुस्त रहनुमाई के साथ ग्लाइड बम है, जिसे जगुआर, हॉक और SU-30 MKI जैसे तैयारों से दागा जा सकता है। ये तवील फासले से दुश्मन के हवाई अड्डों को तबाह करने की सलाहियत का हामिल है। DRDO के जरिए मुल्क में ही तैयार और डिजाइन किए गए इस निजाम में इब्तदाई पैमाइश यूनिट, देरपा व मौसर डिले फ्यूज और ट्विन स्टोर कैरियर जैसे जेली निजाम मुल्क के दिफा के शोबे में मजीद खुदकफील बनने की जानिब एक अहम पेशरफ्त हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के आलमी रूहानी पैलेस रिट्रीट सेंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने आलमी तजदीद प्रोजेक्ट के लिए रूहानी बेदारी का आगाज किया। उन्होंने वर्चुअल वसीले से विकसित भारत के लिए नौजवान मुल्क की तामीर से मुतालिक मुहिम के लिए अंदरूनी ताकत को बेदार करने का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसी नौजवान ताकत की जरूरत है जो सच्चाई, जिम्मेदारी, हमदर्दी, बकाए बाहम और हुब्बुल वतनी से तरगीब याफ्ता हो। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने दुनिया को योग, मेडिटेशन, अदम तशद्दुद, हमदर्दी और वसुधैव कुटुंबकम जैसे मिसाली अफकार दिए हैं।
1: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे कबल सदर जमहूरिया ने बड़ौदा की महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के 75वें जलसा तकसीम असनाद में शिरकत की। उन्होंने तलबा को गोल्ड मेडल और डिग्रियां अता किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि अटल इख्तिरा मिशन के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने 2016 में अटल इख्तिरा मिशन कायम किया, जो मुल्क में इख्तिरा और कारोबार के कल्चर को फरोग देने की खातिर एक अहम पहल है। नीति आयोग के तहत मिशन ने स्कूलों में मुश्किलात का हल निकालने के एक इख्तिराई तर्ज अमल के क्याम को यकीनी बनाने के लिए मजमूई तरीक़ेकार अख्तियार किया और यूनिवर्सिटियों, तहकीकी इदारों, निजी और MSME शोबे में कारोबार का एक इको निज़ाम कायम किया। 2016 में आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हुकूमत ने अटल इख्तिरा मिशन के जरिए नई नस्ल को साइंस और तहकीक की जानिब रागब करने के सिलसिले में इकदाम किए हैं।
3: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
2: अटल इख्तरा मिशन भारत के टूल ओवर्स में इख्तरा और एंटरप्रेन्योरशिप का एक मुतहरिक कल्चर कायम कर रहा है और इसे फरोग दे रहा है। ये इश्तराक नजरिए और जज्बे को फरोग देकर रोजगार, मसनूआत की पैदावार और इख्तराई अमल में भी इजाफा कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: माई भारत प्लेटफॉर्म पर 2023 में इसके आगाज के बाद से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान इंदराज कर चुके हैं। ये हुसूलियाबी सीखने, रजाकाराना तौर पर क्यादत, शहरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और नौजवानों पर मबनी इकदामात में हिस्सा लेने के अमल में नौजवानों की बढ़ती हुई शिरकत की अक्कासी करती है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत के नौजवानों के उमूर के महकमे के तहत माई भारत मुल्क के नौजवानों को शामिल करने का एक अहम प्लेटफॉर्म है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने अपने एक बयान में कहा कि पिछले साल अक्टूबर में इस प्लेटफॉर्म पर नौजवानों के जरिए इंदराज करने की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई थी, जो अब 3 करोड़ तक हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए पार्टी के इंचार्ज और माविन इंचार्ज मुकर्रर किए हैं। साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ और हरियाणा के लिए बीजेपी इंचार्ज मुकर्रर की गई हैं, जबकि हरीश द्विवेदी बिहार की जिम्मेदारी संभालेंगे। विनय सहजबुदे को दिल्ली का इंचार्ज का चार्ज दिया गया है, जबकि जामयांग सेरिंग नामग्याल और दर्शनबेन जरदोश को माविन इंचार्ज बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है और जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को माविन इंचार्ज बनाया गया है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि वोटर फहरिस्तों की नजरसानी समेत सभी फैसले मुत्तफिका तौर पर किए गए हैं। कमीशन ने मुतला किया कि उसने मुतादित फैसले किए, तकरीबन 40 नए इकदाम मुतारिफ कराए और मुल्क भर में हालिया महीनों में वोटर फहरिस्तों के खसूसी तफसीली नजरसानी समेत कई इंतखाबी असलाहत अंजाम दी। कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी इदारे में नजरियात और मुशाहिदात का अलग अलग होना एक मामूल की बात होती है और कतई फैसला करने से पहले फैसला साजी के अमल का ये एक हिस्सा है। उसने कहा कि कमीशन का हर अफसर इंतखाबी निजाम को बेहतर बनाने के खातिर कमीशन को अपनी तजावीज देने के लिए पूरी तरह मजाज है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कल मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, विदर्भ और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे ने अंडमान और निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम और माहे और मराठवाड़ा में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। उधर खलीज बंगाल के ऊपर हवा का गहरा दबाव शिमाली आंध्र प्रदेश, जनूबी ओडिशा साहिल की जानिब बढ़ रहा है और इसके आज रात साहिल पार करने का इम्कान है। हवा के दबाव का आज रात और कल सुबह सवेरे के दौरान कलिंगापट्टनम के नजदीक रुख करने का इम्कान है, जिसके नतीजे में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। ओडिशा इंतजामिया ने सूरत हाल से निमटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। आफा से निमटने की टीमों को तैनात कर दिया गया है और सैलाब के खतरे वाले मुतादिद जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट।
4: जनूबी और साहिली ओडिशा के कई इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। कोरापुट, गंजाम, गजपति, नवरंगपुर और मलकानगिरी मुतासर इलाकों में शामिल हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने जनूबी ओडिशा के कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आला तरीन सतह की तैयारी करने की हिदायत दी है। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई हैं। हसास इलाकों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज को बंद कर दिया गया है, जबकि मुतासर इलाकों में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: माहौलिया, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के आबोहवा में तब्दीली और तवानाई के वजीर क्रिस बोविन से मुलाकात की। जनाब बोविन तुर्की में इस साल 9 से 10 नवंबर के दरमियान होने वाली COP31 मुजाकरात के सदर भी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने फिजी में अनकरीब होने वाली कॉप से पहले के मुजाकरात और तुर्की में होने वाली COP31 के कलीदी मामलों पर अहम तबादला ख्याल किया। मकानात और शहरी उमूर से मुतालिक वजारत ने आज नई दिल्ली में 11वां यौम आयुर्वेद मनाया। ये तकरीब आयुष की वजारत की जानिब से

भर में मनाए जा रहे यौम आयुर्वेद के हिस्से के तौर पर मुनाकिद की गई। आज जापान के आईची एशियन गेम्स 2026 में मर्दों की भारतीय बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में चीन से 1-3 से हारने के बाद कांसे का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन इफ्तिताही मैच में शियुकी से 21-16, 21-18 से हार गए। इससे पहले सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दिफाई आलमी चैंपियन लियांग वी केंग और वांग शेंग को 21-11, 22-20 से हराया। इस तरह कांसे का तमगा जीतने के बाद भारत के कुल 12 तमगे हो गए हैं, जिनमें सोने का 1, चांदी के 5 और कांसे के 6 तमगे शामिल हैं। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने दावा किया है कि उनके अवाम अमरीका की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासिर रहे हैं। सदर पजिश्कियान ने मरहूम रहबरे आला अली हामनई और जंग के शुरुआती दिनों में हलाक हुए 150 से ज्यादा स्कूली बच्चों की तस्वीर ले रखी थी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले मुल्कों पर महसूल लगाने के अमरीका के फैसले पर अपने मफादात और तशवीश को दोहराया है। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम के जम्मू कश्मीर के हवाले को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि भारत के अंदरूनी मामला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए 160 सेटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रूपये से ज्यादा के समझौते पर दस्तखत किए हैं। बीजेपी ने सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए पार्टी के इंचार्ज और माविन इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आयुष्मान भारत को शुरू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के विस्तार के साथ अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 8 साल में आयुष्मान भारत ने आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के खर्च को किस हद तक बदला है और आगे इसकी दिशा क्या रहेगी, इन्हीं मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को 8 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की बात कर रही है, इनमें से आप क्या मानते हैं कि असल में फायदा कितने लोगों को, कितने परिवारों को हुआ है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है?
3: अभी तक के जो आंकड़े हैं जो 8 साल पूरे होने पे उपलब्ध हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा अधिकतर लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार देश की आबादी के बॉटम 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए की प्रति परिवार प्रति वर्ष हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है और आज तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो 13 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं हमारे 38,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, जहां इनका इलाज हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इसके इलाज हुए हैं, तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर इसे मनी के टर्म्स में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत इन 13 लाख लोगों के परिवारों को हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
2: आम आदमी के लिए सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख रुपए तक का एक कवर मिलता है उसे, तो ये कवर वास्तव में काम कैसे करता है और किन किन बीमारियों के इलाज में फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा भी है जहां ये कार्ड काम नहीं आता है?
3: देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड काम ही करता है जहां जो सूचीबद्ध अस्पताल है। तो जो 38,000 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और 20,000 करीब सरकारी अस्पताल हैं। दूसरा, ये जो कार्ड है ये केवल इंडोर पेशेंट के लिए कार्य करता है। ये सर्दी खांसी के इलाज की तरह आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए एडमिट होना होता है। भले ही वो एडमिशन केवल एक

0: दिन भर के लिए ही हो, जैसे एनिमल बाइट है या फिर डायलिसिस है, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 24 घंटा एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन लेना होता है, आईपीडी पेशेंट के रूप में ही इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, ये कार्ड जिनको मिला है, जो लाभार्थी की सूची में है, इन्हें एडमिशन के समय, रादर रजिस्ट्रेशन के समय, अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से, वो चाहे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो, फेस ऑथ के माध्यम से हो, और जहां कहीं नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाता है, इवन ओटीपी के माध्यम से हो, परंतु उसे ऑथेंटिकेट होना पड़ता है कि ये जेन्युइन पेशेंट है जिसकी पहले से लाभार्थी की सूची में नाम है और इन्हें उस इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये जैसे ही इलाज की जरूरत है, अगर वो सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, तो उससे संबंधित कागजातों को अपलोड करना होता है एनएचए के आईटी सिस्टम पे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इन्हें उस इलाज की जरूरत है। और तभी जब प्लेटफॉर्म से हम उसे ऑथराइज करते हैं, जिसे प्री ऑथराइजेशन कहा जाता है, जब ऑथराइज करते हैं तब वो ट्रीटमेंट शुरू होता है। इमरजेंसी के मामलों में जहां पे ट्रीटमेंट शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एडमिशन ले लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसके बाद आप प्री ऑथराइज कर दें, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 3 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो लाभार्थियों का सही आइडेंटिफिकेशन हो सके, दूसरा एक्सेस या अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो, तीसरा ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो जितने पैकेजेज हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और अभी तक जो हमारा लेटेस्ट पैकेज है उसके अनुसार 1961 लगभग 2000 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो कि इसके तहत एडमिसिबल हैं, और इसमें अधिकतर बीमारियां शामिल हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, इवन जो फीवर होते हैं जिसमें एडमिशन कराना होता है, डायलिसिस, ये सारे अधिकतर पैकेजेस शामिल हैं। कैंसर के ही काफी सारे पैकेजेस हैं जिसमें है, इसमें शामिल है। कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी पैकेजेस हैं, कैटरैक्ट है, नी ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी पैकेजेस इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है, जिस बीमारी की इलाज गरीब आदमी कभी सोच नहीं पाता था, और रीजन ये था कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई न कोई चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती थी, चाहे वो जमीन बेचना होता था या बच्चों की पढ़ाई छोड़नी होती थी, और कई बार तो बुजुर्गों के लिए इलाज छोड़ ही देना होता था और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए। इसके साथ ही साथ कई बार महिलाओं का इलाज पोस्टपोन होता रहता था, जो कि इस योजना के आने के बाद से, और योजना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि लगभग 50% इलाज महिलाओं के द्वारा लिया गया है। तो ये शो करता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि दबा दी जाती थी, पोस्टपोन कर दी जाती थी, उनका इलाज इस योजना के आने के बाद संभव हो सका है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और हमारी सिस्टम भी ऐसी है जिसमें कि आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे ट्रांजेक्शन संभव हो पाते हैं।
1: सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ही इमरजेंसी होती है, उसे अंदाजा नहीं होता है कि हम सही अस्पताल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आयुष्मान में कवर है ये हॉस्पिटल नहीं, तो ये वो कैसे पता कर सकता है?
0: इसके लिए हम लोगों ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए एक अच्छे पुख्ता व्यवस्था किया है, जो रोबस्ट सिस्टम है, और इसके 4 मेजर चैनल है जिससे ये सारी जानकारियां मिल सकती है, न केवल अस्पताल की और बीमारी की, इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ली जा सकती है। सबसे पहला तो जो सिटीजन के लिए सबसे आसान भी है, 1-4-555 टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए, और इस नंबर पे फोन करने से हमारा कॉल सेंटर जो 24/7 काम करता है, इसके माध्यम से योजना की सारी जानकारी ले सकते हैं, कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, कौन सी बीमारी कवर्ड है, किस अपने जहां उपस्थित हैं उसके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है, ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिटी वाली कौन सी सूचीबद्ध हॉस्पिटल है, तो ये सारी जानकारी उससे ली है। सिमिलर जानकारी ये पोर्टल पे भी उपलब्ध रहती है, तो जिनको पोर्टल का एक्सेस है, खास करके नए जनरेशन के लोगों को जो देख पाते हैं, वो आसानी से उस पे भी सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने एक आयुष्मान ऐप बनाया है, जो आयुष्मान ऐप को अपग्रेड करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है, अपने नियर बाय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दे सकता है। और सेम चीज हम लोगों ने व्हाट्सएप जो है चैटबॉट के माध्यम से एक आयुष्मान सारथी भी शुरू किया है कि अगर चैटबॉट पे जैसे ही हाई करेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा।
1: तो आइए सुनते हैं आयुष्मान भारत के 8 साल पूरे होने पर ये खास रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं तो भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अपनी यात्रा में एक बड़ा पड़ाव पार कर रहा है। नगद रहित अस्पताल उपचार से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तक यह योजना लाखों लोगों के इलाज तक पहुंचने के तरीके को बदल रही है। 8वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का नगद रहित अस्पताल उपचार कवर देती है। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश की लगभग 33% आबादी शामिल है और 21 सितंबर 2026 तक 48 करोड़ 51 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए ABPMJ अब तक 13 करोड़ 25 लाख अस्पताल भर्तियों को कवर कर चुका है जिनकी कुल लागत 2.03 लाख करोड़ रुपए है। इससे कमजोर तबके के परिवारों पर पड़ने वाला निजी स्वास्थ्य खर्च काफी कम हुआ है। योजना 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं को कवर करती है और अब आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी स्टाफ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य वंचित समूहों को भी शामिल करती है। लेकिन आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल कवर नहीं है, यह 4 स्तंभों पर टिका है जो मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाते हैं जहां मुफ्त दवाएं, जांच और डेली परामर्श उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर अब तक 540 करोड़ से अधिक फुटफॉल और 50 करोड़ टेली परामर्श दर्ज किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 97 करोड़ 61 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है जिनसे लगभग 120 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं ताकि अस्पतालों में कागज रहित और सुचारू इलाज संभव हो सके। वहीं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में लैबों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इन सभी पहलों के जरिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक सतत देखभाल प्रणाली तैयार हो रही है जो भारत को सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। 8 साल बाद आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बीच चुनाव न करना पड़े।
1: कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि योजना का दायरा तो उन्हें पता है लेकिन अस्पताल में उनसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या मैकेनिज्म हमने बनाया है कि उनकी शिकायतों को का निपटारा हो सके या शिकायतें सही जगह पहुंचे कैसे?
0: 4 माध्यम रखा है जिससे कोई भी व्यक्ति न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि शिकायत भी कर सकता है, तो शिकायत के लिए भी ये 4 चैनल्स ओपन है। दूसरी बात कि ये जो शिकायत स्पेसिफिक केस है जिसमें किसी व्यक्ति को एलिजिबल रहने के बावजूद ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया या फिर पैसे मांगे गए या कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम लोग SOS कैटेगरी में रखते हैं और इन केसेस को 5 घंटे के अंदर ही निपटारा करना होता है क्योंकि अगर ये ज्यादा समय लगेगा तो वो एक तरह से जो शिकायत है वो चाहे उसका रिजल्ट आउट मतलब ऑलरेडी हो जाएगा, चाहे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा या फिर पैसे दे देगा या कुछ इस तरह का होगा, तो इसलिए इन्हें SOS कैटेगरी में रखा गया है और 5 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना है। और ऐसे केसेस को हम लोग न केवल ये IT सिस्टम में रखते हैं बल्कि हम डायरेक्टली नेशनल लेवल से स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को कॉल करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल को भी कॉल करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह का कंप्लेन आया है। और हमने देखा है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। और ये मैं नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है, जहां भी आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद एक रुपए की भी मांग की जाती है तो वो पहले तो उनसे रसीद मांगे ताकि ये पता चला किस चीज के लिए उन्होंने पैसे मांगे हैं।

0: वो इलाज अगर आयुष्मान भारत में कवर्ड है तो एक रुपए भी नहीं लगने चाहिए। और अगर वो रसीद दिए बिना पैसे की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पे शिकायत की जाए और इसका निपटारा 5 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पूरी टीम है कॉल सेंटर और ये लग करके करती है और हमें अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है।
1: आज के दौर में तकरीबन कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं और क्या ग्रामीण और छोटे शहरों में इसे और बढ़ाने की योजना है हमारी?
0: देखिए, ये जो अब तक की स्थिति है 38,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध है, इम्पैनल्ड है। इसमें से 18,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CHCs ये सारे इम्पैनल्ड है। ये 38,000 हॉस्पिटल पूरे देश में स्प्रेड आउट है। जाहिर सी बात है कि शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल है, परंतु इस योजना के माध्यम से जिसको सरकार फंड कर रही है, हमने इवन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ाई है। मतलब लोग जो है अब इलाज करने आ रहे हैं जो पहले इलाज नहीं कर पा रहे थे, और जब इलाज करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस क्षेत्र में डिमांड है वहां हॉस्पिटल स्थापित करें। तो इस योजना के माध्यम से रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई खुलने की भी प्रक्रिया में है। शायद ही कुछ जिले बचे हों जहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक ना पहुंचा। सरकारी अस्पताल तो निश्चित रूप से सरकार की योजना के तहत ही खुल रही हैं, परंतु ये सुविधा इस योजना के आने के बाद से बढ़ी है। इवन सरकारी अस्पताल जो इसमें सूचीबद्ध है वो ऐसे तो निःशुल्क इलाज सभी लोगों की करते हैं, लेकिन वो आयुष्मान कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड मांग करके इलाज करना है, ताकि इलाज तो उन्हें निःशुल्क मिलेगा लेकिन सरकारी अस्पताल को बाद में इस योजना के तहत राशि मिल जाएगी, क्लेम अमाउंट मिलेगा, और इसका उपयोग करके सरकारी अस्पताल अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। जो आकांक्षी जिले हैं उसमें जो हॉस्पिटल स्थापित हैं, वहां अगर कोई इलाज करता है तो जो क्लेम अमाउंट होता है उस पे हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं, ताकि वो वहां पे न केवल सर्वाइव करे, वो बेहतर कार्य कर सके।
1: इन अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी इलाज के लिए, उसकी मॉनिटरिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस तरह से करती है?
0: देखिए, हम लोग जब भी किसी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध करते हैं, इम्पैनल करते हैं, तो उसके विभिन्न क्राइटेरियाज रखे हैं, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, ज्यादातर स्पेशलिटी में 20 बेड है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए वो इम्पैनल कर रहे हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल में 4 स्पेशलिटी है तो उन्हें चारों के लिए इम्पैनल होना पड़ेगा, एक चूज नहीं कर सकते कि जिसमें ज्यादा फायदा है, जिस बीमारी के इलाज में उसको चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो स्पेशलिटी है सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशलिटी जैसे ही डालेंगे उन्हें बताना पड़ेगा डॉक्टर्स कौन कौन है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, ये जो डॉक्टर्स हैं ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। और ये चीज हम लोगों ने अब इवन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे उन डॉक्टरों का रजिस्टर होना मैंडेटरी किया है, ताकि वहां से हम सारे इन्फॉर्मेशन निकाल पाए कि जो डॉक्टर की ये नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सच में वेरीफाइड है, वो डॉक्टर और कहां कहां है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे भी उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिन राज्यों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, फायर की जो क्लियरेंसेस हैं, बिल्डिंग लॉज के क्लियरेंसेस हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के क्लियरेंसेस हैं, ये सब मैंडेटरीली जो रिक्वायर्ड है वो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस वर्ष अब नए हॉस्पिटल इम्पैनल करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसे भी मैंडेटरी किया है।
1: सर, इस योजना में रोज आपने बताया कि किस तरह से 70-80 हजार का आंकड़ा रहता है जहां पर इलाज चल रहा होता है, दावे आ रहे होते हैं आप लोगों के पास में क्लेम्स में, तो ऐसे में एक आशंका ये भी रहती है कि कहीं ये दावे फर्जी तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अनावश्यक इलाज तो नहीं किया जा रहा है।
0: अच्छी बात है इस आयुष्मान भारत PMJ में कि हर इलाज को बंडल्ड पैकेज के रूप में बनाया गया है। मतलब अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है तो उसमें दवा का कॉस्ट अलग और कंज्यूमेबल्स का अलग, ऑपरेशन का अलग नहीं है, वो सब मिला करके एक बंडल्ड कॉस्ट है। नी ट्रांसप्लांट का बंडल्ड कॉस्ट है, डायलिसिस का बंडल्ड कॉस्ट है। तो अगर आपने ज्यादा इलाज कराया तो भी आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई

0: हॉस्पिटल सोचता है कि इसे ज्यादा इलाज करा दें, ज्यादा दिन रख लें, तो उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके कॉस्ट फिक्स्ड हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब वो क्लेम सबमिट करते हैं तो ऐसे कई शिकायतें आई और कई ऐसे पाए भी गए जिसमें हॉस्पिटल्स ने क्लेम गलत सबमिट किए, एक्स्ट्रा सबमिट किए, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें तीन कैटेगरी आता है। एक तो है जिसमें एरर्स मिल जाते हैं, दूसरा है जिसमें एब्यूज हुआ है, मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए था थोड़ा सा, उसको और दो तीन पैकेज बुक करके ट्रीटमेंट कर दिया, इलाज एक चीज के लिए गए थे साथ में दो और इलाज कर दिए, एक्स्ट्रा बुक कर दिए, इस तरह के एब्यूज हैं। थर्ड है फ्रॉड है, जिसमें पेशेंट कोई और है, ऑथराइजेशन किसी का है, फोटो किसी और का लगाया है, डॉक्यूमेंट जो लगाया है कैटरेक्ट में लेंस या नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगाया है वो पता चला कि वो लगा ही नहीं है, या लगा है तो एक ही इम्प्लांट चार जगह लगाए हैं या एक ही लेंस चार जगह लगाए हैं, वो पकड़ना जरूरी है।
1: जी, डुप्लीकेसी हो गई।
0: डुप्लीकेसी हो गई,
1: या कह लीजिए
0: तो
1: डबल।
0: हम लोगों ने एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया और जिस तरह से वो दिमाग लगा रहे किस तरह से चीट कर सकते हैं, हमारी टीम ने इस पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे केसेस को सबसे पहले क्लेम प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले इसे नाफू ट्रिगर से गुजरना पड़ता है, और ऐसे हम लोगों ने 61 ट्रिगर्स लगाए हैं, और इसमें वो सारे चीजें जिसमें फोटोग्राफ्स बदले गए हैं, डॉक्यूमेंट गलत लगाए गए हैं, इम्प्लांट के बार कोड मिसमैच हो रहे हैं या बार कोड कई जगह यूज हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे केसेस को पकड़े हैं और अब तक 670 करोड़ के आसपास का क्लेम हम लोगों ने प्रिवेंट किया। वो क्लेम को हम पे नहीं करके उसे रिजेक्ट किए, और ऐसे मामले को हम लगातार वॉच करते हैं। जो भी हमारा ट्रिगर जो है सस्पिशियस बताता है उनसे हम स्टेट्स को भेजते हैं कि उसे वेरीफाई किया जाए। उनके यहाँ भी स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं फिर से, या जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल इंस्पेक्ट भी करते हैं, और अगर वो फ्रॉड निकलता है तो उसे न केवल क्लेम रिजेक्ट होता है, फ्रॉड के केस में वो डी इम्पैनल हो सकते हैं, 5 times तक उस पे पेनल्टी लग जाती है क्लेम के अमाउंट पे। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, कुछ केसेस में इवन FIR भी दर्ज होते हैं। तो ये चेक्स है, अब इसमें हमारे ट्रिगर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं बिकॉज हम अब मशीन लर्निंग और AI का यूज कर रहे हैं, जिससे कि टूल भी ये समझने लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस तरह के क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं, और हम जो डॉक्यूमेंट हैं उसको OCR टेक्नोलॉजी से पढ़ पाते हैं और इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीजें और शुरू की है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, मतलब वॉल्यूम बहुत है वैल्यू बहुत कम है, तो अब हम लोगों ने AI को यूज करके ऑटो एडजुडिकेशन करना शुरू किया है कि सिस्टम ही उसको एडजुडिकेट कर देती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स देते हैं। तो ऑटो एडजुडिकेशन के बाद से लगभग 30% ऑफ द क्लेम्स इन वॉल्यूम टर्म्स अब ये ऑटो एडजुडिकेशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में और भी सारे पैकेजेस जो कि हाई वैल्यू भी हों उनको भी ऑटो एडजुडिकेशन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जाएगा, और इसके लिए हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था जिससे हमें अच्छे सॉल्यूशंस मिले और तभी हम इस चीज को लागू कर पाए हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 9th year में जा रहे हैं इस योजना के, इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।
1: सर, कोई ऐसा भी जिला या राज्य है जहां पे लग रहा है आपको कि इस योजना को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, उन जगहों पे किस तरह से काम कर रहे हैं क्या? और
0: हमारे लिए जो एक तो अब पूरा देश इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, जो अंतिम राज्य था वो पश्चिम बंगाल था जो कि 16 अगस्त को इस योजना पे आ गया है, तो अब तो पूरे देश में इसे लागू किया गया है। जो हमारी कठिनाई आती है वो किसी राज्य विशेष में ज्यादा नहीं है, बट कुछ क्षेत्र जरूर हैं जो काफी रिमोट हैं, वो ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं, हिली रीजन्स में आते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में आते हैं, जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स तो जब बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी न किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है, बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है, तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी भी सभी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लीवर, कई दूरस्थ क्षेत्रों में ये स्पेशलिटी नहीं हो पाती है, और इसलिए लोगों का डिपेंडेंस फिर दूसरे बाहर जाकर के इलाज कराने पे हो जाता है। तो ये चैलेंजेज हैं, बट इसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये बेहतर ही होता चला जाएगा। दूसरी एक ये स्थिति है कि हम डिजिटल मिशन जो रखे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके माध्यम से पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं सो दैट कि दे हैव ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन देयर मोबाइल। अब ऐसा होने से इनका लाभ ये हो रहा है कि वो कहीं भी इलाज करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल से शेयर कर पाते हैं। इससे ये बेहतर डायग्नोसिस में फायदा होता है और ये पीएमजे के भी बेनिफिशियरीज को बहुत लाभ हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु 2.0, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है जिसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रहता है और उससे हिस्ट्री भी बनती जाती है, इलाज भी बेहतर हो पाता है, डायग्नोसिस बेहतर हो पाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अभी चैलेंजेज हैं, परंतु हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी बहुत है, क्षेत्र भी अलग अलग तरह का है, चैलेंजेज अलग है, कल्चरली डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, इसलिए इस योजना में हमेशा थोड़ी बहुत तो चैलेंज रहेगी, परंतु हम उसे इतने बड़े सिस्टम में नेशनल लेवल पे काफी हद तक सॉल्व करने में सफल रह रहे हैं।
1: सर, 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को भी योजना के दायरे में लाया गया है अब, तो ये क्या मुश्किल रहा, कुछ चैलेंजेस आए यहाँ भी?
0: एक तरह से चैलेंज से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। हम 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, जबकि ऐसे उम्र में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस देना बंद कर देती है,
1: बिल्कुल,
0: कई घरों में परिवार वाले भी इलाज कराना नहीं चाहते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी छोड़ देता है कि अब हमारा समय आ गया, बच्चों पे ध्यान दो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये योजना वय वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाई है और ये अब 2 वर्ष पूरा होने को है, अक्टूबर 2024 में चालू किया गया था। 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग को इसमें लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1.36 करोड़ कार्ड लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने, 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने इलाज का लाभ भी लिया है और 5,000 करोड़ तक की राशि का उनका बचत भी हो चुका है जो सरकारें खर्च कर रही है। तो ये देख के लग रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे जरूरत है, सबसे ज्यादा, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और हमें सबसे ज्यादा क्वेरी ऐसे ही लोगों से आती है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी आय वर्ग से हो, उनको ये लाभ मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें चैलेंजेस थोड़ी आती है क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता, तो हम लोगों ने फेस ऑथ की व्यवस्था की है। इस तरह से हमें छोटे मोटे व्यवस्थाएं और इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो पहुंचते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उन्हें ऐसा सुविधा हो जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कई बुजुर्ग है, कई बार अकेले ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी है कि हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनमें भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। तो ये कार्य भी NHA कोशिश कर रहा है करने का।
1: एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि 8 सालों में क्या सीखने को मिला हमें और अगले 4-5 सालों की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
0: पिछले 8 वर्षों की जर्नी में ये पता चला कि हमें अगर इतने बड़े स्केल पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है तो IT सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए जिससे कि हम हर तरह के डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल कर सकें। अब जो आने वाले समय में हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पिछले 8 सालों में जैसे हम लोगों ने 13 करोड़ पेशेंट का इलाज कराया, इनके ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को एनोनिमाइज करके, इससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हटा करके, इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू है रिसर्च के लिए, डिजीज सर्विलेंस के लिए, पूरे देश की डिजीज मैपिंग के लिए, किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां बढ़ी है या हैं, किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारी है, किस जेंडर में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऐसी तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। और हम जल्द ही एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि जो सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें हम इन आंकड़ों को

0: बिना दिए, बिना इसका एक्सेस किए हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, टर्म्स कंडीशन ऑफ कोर्स अलग से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये डेटा पे अपने एल्गोरिदम रन करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और ये फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने में फायदा आएगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से नए नए टूल्स, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, डायग्नोसिस का हो, डेवलप करने में भी सुविधा होगी। तो आने वाले वर्षों में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही डेटा ड्रिवन आईटी एक्सपर्टीज हासिल करेगा और इसका उपयोग इस योजना के बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी में कर पाएगा।
1: जाहिर है इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: इंटेंसिटी, इंटेग्रिटी एंड इंटेलिजेंस, these are the three eyes which the Indian contingent needs at the Asian Games, and they have been displaying these attributes with their tremendous performances. Hello and welcome to the Asian Games Aichi Nagoya 2026 report on Akashvani. My name is Abhinav Punchi and I'll be taking you through all the action from the Asian Games today. And here are the headlines. It was another exciting day as our nation won 5 medals. Mirabai Chanu starting with the silver, ending her Asian medal drought. While 4 bronzes came from Jayameena in soft tennis, the men's badminton team, the women's skeet shooting team and the men's skeet shooting team. There was disappointment though as the star-studded 10-meter women's air pistol contingent ended medalless. However, Wushu athlete Roshabina Devi meanwhile is on the cusp of history as she looks to convert her 2023 Asian silver to gold tomorrow after winning her semi-final today. In Kabaddi, there were wins for both the men's and women's teams. While the Indian women's hockey team continued their goal-scoring spree by thrashing Thailand. The best moment for India came from the weightlifting arena. So let's hear what Vijeta Chaturvedi had to say.
3: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगझाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेटलिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
2: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
4: Roshabina Devi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
2: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jayameena won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Meena's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Meena's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
5: बिल्कुल भरोसा था। और सबसे बड़ी चीज की हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में हम जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी इससे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने, तो सुदेश सर और हमारा सपना था सर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: टाइम नाउ टू हेड टू द शूटिंग रेंज वेयर शाहिद आजमी हैज अ रिपोर्ट फ्रॉम अ मिक्स्ड डे फॉर द इंडियन कंटिंजेंट।
6: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्की टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्की टीम की, राजा ढिल्लोन, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्की टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, महराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राइजा ढिल्लोन भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राइजा ढिल्लोन, अनंतजीत सिंह नरूका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
2: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Navneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena. शाहिद आजमी।
6: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के

0: Man of China, while Dia and Manish will face Wong Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
2: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटम सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्ट्योम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं के व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नौरेम और आशिता स्टेलिनराज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गयी।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे। Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
0: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yukui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16-21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19-21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16-17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
2: भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से हुआ और भारतीय टीम ने ये मैच 37-23 के अंतर से अपने नाम कर लिया। मुकाबले के पहले हाफ में भारत 19-15 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की। पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया। पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा। वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है।
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Manwal has a report.
0: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictin Beniston had finished fourth in the heats with the timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
2: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया। भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे। इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं, यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया।
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Manwal will tell us how they fared.
0: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Echi Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5

0: 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
2: Rowing से भारत के लिए अच्छी खबर है. Asian Games में भारतीय rowers ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है. पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6:52.84 के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6:15.63 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची. लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई. क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई. अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं. डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा.
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे. साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड.
0: India's men's kayak 4-500 meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh, Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oynam combined for a timing of 1:29.447 in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500 meter heats with 2:02.538. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500 meter heats, Chempa Dale, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1:41.141 and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot with a timing of 2:08.713 and qualified for the semi-finals.
1: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
3: फुर्ती, संतुलन और किक के खेल सेपक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ. भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था. भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया. पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी. उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया. लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा. फिलीपींस ने वापसी करते हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया. इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया. भारत का टीम रेगु अभियान यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सेपक टैक्रो के अन्य इवेंट्स में अभी संभावनाएं बाकी हैं.
1: Well, you've heard all the special reports. So, where is India in the medal standing? Well, Vijeta Chaturvedi will just tell us.
3: भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं. क्रिकेट में 1 स्वर्ण पदक, शूटिंग में 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, वेटलिफ्टिंग में 1 रजत, बैडमिंटन में 1 कांस्य, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज और सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है. इस तरह आज के मुकाबले खत्म होते होते भारत ने पदक तालिका में 13वां स्थान प्राप्त किया.
1: So 24th September Thursday, what does that have in store for us from Japan? Well, Rosha Bina Devi is going to go for gold in Wushu. She's going to be in action against Zhang Zhao in the women's 60kg Wushu Sando competition. And don't count out our rowing contingent. They are all in action. There's men's single sculls finals, men's double sculls finals. We have women's four finals as well in rowing, as well as lightweight men's double sculls finals and men's quadruple sculls finals. All gold medal events. Our shooting team will be hoping to put the women's contingent 10 meter air pistol disappointment behind them. The men, can they do the needful tomorrow in their individual and team competition? As well, our skeet mixed team competition is also happening and hopefully they get us a medal. We also have athletics action where Asha Ilango and Niharika Vashisht are in the women's triple jump final and Seema is in action the women's 10,000

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है जतिन ललित का।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आनंद लीजिए कीर्ति दुबे की आवाज में उपशास्त्रीय गायन का। पेश किए जाएंगे राग झूला, ठुमरी मिश्र खमाज और चैती मिश्र पहाड़ी। सबसे पहले आनंद लीजिए राग झूला का।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रचनी में अब सुनिए राग ठुमरी मिश्र खमाज।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MV केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई है। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुनेत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L.69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform, along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said, the OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited for the procurement of 160 satellite smart anti-airfield weapons SAT-SAAW along with associated equipment for Indian Air Force. The contract was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi today. The delivery of SAT-SAW is scheduled between 2027-2028 and 2028-2029. SAT-SAW is an air-to-ground precision guided glide bomb which can be launched from platforms like Jaguar, Hawk and Su-30 MKI and has the capability to neutralize enemy airfields from a long standoff range. Indigenously designed and developed by DRDO, the system will have an indigenous content of 60% along with indigenation of subsystems like initial measurement unit, long impact delay fuse and twin stow carrier to further boost self-reliance in defense. The Election Commission has said that all the decisions including the electoral roll revision were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives and undertaken many electoral reforms including special intensive revision in the recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any institution and it is a part of the decision-making process before taking a final decision. It said every officer of the Commission is fully authorized to give his suggestions to the Commission for improving the electoral system. In Rajasthan, a major fire broke out at a chemical factory in Jodhpur today evening, with at least 13 fire brigade personnel injured in an explosion during firefighting efforts. The fire spread rapidly as drums of an inflammable chemical stored at the premises caught